गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

0: लगे हैं दो गुलाब,
1: एक तो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: यूं ही तुम मुझसे

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे। पूजा नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, सभी को मेरा नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मौसमी विधि विधान के साथ गणपति बापा की मूर्ति स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही शुरू पूजा पाठ आरती और भक्ति का सिलसिला पूरी रात श्रद्धालु बापा की आराधना में लीन रहेंगे। पूजा और आरती के साथ पारंपरिक झांकरी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। भक्तिमय माहौल में गणपति बापा की जयकारों से वातावरण गूंज उठेगा। मराठी समुदाय के लिए गणेश चतुर्थी केवल मात्र एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और सामुदायिक एकता से जुड़ा एक खास अवसर है। कल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणपति बापा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त बापा को भावभीनी विदाई देते हुए उनसे अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करेंगे। आज है हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। मॉरिशस में भी हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ हिंदी भाषा साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदी ने समय के साथ खुद को बदला है। आज ये रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। मामी गावातुमांग से जुड़े मामले ने एक नया मोड़ लिया है। एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद जिसे भ्रष्टाचार और प्रभाव के कथित गंभीर आरोपों से जुड़ा बताया जा

0: रहा है, इस पर विस्तार 6:30 बजे की बुलेटिन में। और प्रवीण जगनाथ से आज सुबह सीसीआईडी में पूछताछ के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पूछताछ मिसे मुस्तास नाम से चर्चित फोन टैपिंग कांड की जांच के सिलसिले में होगी। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला उस समय हुआ जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद ये घटना हुई। और मौसम का हाल, दक्षिण की ओर से ठंड हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा और शाम को भी। रात को बादल कुछ घिर आएंगे और देश के दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर हल्की वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 21 से 23, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:07 पर और सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा। मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और नई शुरुआत के साथ आप सभी का दिल से स्वागत है और आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। चलिए मुस्कान के साथ दिन शुरू कीजिए और हर हाल को खूबसूरत बनाइए। चलिए सुरों के साथ इस सुबह को यादगार बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले चलिए सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: जागृति प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। मैं आचार्य मोहन आर्य, श्रुत बंधु, आप सभी के मध्य ऋग्वेद के 9वें मंडल के 66वें सूक्त के 20वें मंत्र को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, मंत्र आप सभी लोगों ने सुना होगा, अग्नि ऋषि पौमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमी महे महागयम्। मंत्र में बड़ी अच्छी प्रार्थना है, तमी महे महागयम्, जो वो महान स्तुति करने योग्य परमात्मा है। हम सब लोगों को उसकी महान स्तुति करना चाहिए। बंधुओं, वो महान स्तुति करने योग्य क्यों है? क्योंकि उसकी महानता बड़ी अपरंपार है। जब आप ईश्वर की महानता को देखने के लिए चलेंगे, अति उत्तम और अति महानता आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर के हम चलें और एक व्यक्ति को कहा जाए कि जी आपको 500 मीटर की दौड़ लगाना है। अब वो एक 500 मीटर की दौड़ का जो परिचक्र लगाएगा तो वो लगभग 5 मिनट में लगा ले या 2 मिनट में लगा ले। बंधुओं, उसी व्यक्ति को दोबारा कहा जाए

कि अब आपको पुनः 500 मीटर की दौड़ लगानी है। उस समय वो 2 मिनट से आगे पीछे दौड़ पूरी कर पाएगा। अर्थात हम यदि 500 मीटर का भी एक चक्कर लगाएं तो हमारे समय में हेर फेर हो जाती है, लेकिन ईश्वर की महत्ता देखना, कितनी बड़ी महत्ता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और जब वो चक्कर लगाने के लिए चलती है तो विचार करना, पृथ्वी से दूरी, सूर्य की दूरी लगभग 15.2 करोड़ है, और इतने करोड़ों किलोमीटर दूर होकर जब वह सूर्य का चक्कर लगाती है तो लगभग 94 करोड़ किलोमीटर का एक चक्कर सूर्य का होता है। अब विचार करिए, पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है 94 करोड़ किलोमीटर का, तो हर बार वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूर्ण कर लेती है। अब आप विचार करना, थोड़ा बहुत अंतर, 4 साल का ये परिचक्र चलता रहता है, तो जब भी वो चक्कर लगाती है इतने ही समय में, इतने ही मिनट में, इतने ही सेकंड में पूर्ण करती है। तो कितनी महानता उस ईश्वर की होगी। इसीलिए इस मंत्र में कहा गया कि तमी महे महागयम, वो जो महान स्तुति करने योग्य परमात्मा है, हम सब लोगों को उसकी महान स्तुति करना चाहिए। मंत्र कह रहा है अग्नि ऋषि पौमानः, हे अग्निदेव, आप ऋषियों को पवित्र करते हैं, आप ऋषियों को पवित्र करने वाले हैं। बंधुओं, प्रश्न यहाँ खड़ा होगा कि क्या परमात्मा हमें पवित्र नहीं करेंगे? बंधुओं, परमात्मा सबको पवित्र करते हैं, लेकिन विशेषतः जो व्यक्ति ऋषि होता है परमात्मा उसे पवित्र करते हैं। वेद मंत्र कह रहा है अग्नि ऋषि पौमानः, परमात्मा ऋषियों को पवित्र करने वाला है। अब ये ऋषि कौन होगा, तो जब हम शास्त्र उठा करके देखेंगे पता लगेगा ऋषियों की जो परिभाषा है, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्र का दृष्टा होगा, मंत्र को जानने वाला होगा, मंत्र के अनुसार चलने वाला होगा, वह व्यक्ति ऋषि होगा। ऋषि दर्शनात्, जो सही प्रकार से देखता हो अर्थात आत्मदृष्टा हो, वह व्यक्ति ऋषि कहलाएगा। तर्प ऋषि, जो तर्प विचार सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने वाला व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति ऋषि कहलाएगा। हमें सामान्य जगत में देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति ने बड़े बाल कर लिए, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख ली, भगवा वस्त्र पहन लिया, खड़ाऊ पहन ली, वो ऋषि बन गया। ऋषि वह नहीं होता है। हमारे शास्त्र कह रहे हैं ऋषियो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्र का दृष्टा होगा, जो आत्मदृष्टा होगा, जो तत्वदृष्टा होगा, वह व्यक्ति ऋषि कहलाएगा। तो बंधुओं, हमें समझने की आवश्यकता है, जो व्यक्ति अपने आप को देखता है वह व्यक्ति ऋषि कहलाता है। जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक हमारे जीवन के दोष दूर नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहला अर्थ ऋषि का निकलता है ऋषि दर्शनात्, आत्मदृष्टा, जो व्यक्ति अपने आप को देखता है। विचार करना, हमारे ऋषि मुनियों ने पंच महायज्ञों का वर्णन किया। इन पंच महायज्ञों में जो सर्वप्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, वैसे ओम का जाप करना, उपासना करना, संध्या के मंत्रों का पाठ करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ में आते हैं। परंतु ब्रह्म यज्ञ का एक अर्थ और होता है आत्मनिरीक्षण करना। और विचार ये करिए कि इन 5 यज्ञों में बाकी के जो 4 यज्ञ है इनमें कुछ न कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। देव यज्ञ करते हैं तो सामग्री, घृत, समिधा आदि की आवश्यकता होती है। यदि पितृ यज्ञ करें तो माता पिता की सेवा के लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होती है। अतिथि यज्ञ करो तो सत्कार के लिए वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। बलिवेश्य देव यज्ञ में भाग निकालने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ब्रह्म यज्ञ ऐसा है जो बिना वस्तुओं के पूर्ण होता है। फिर भी सबसे कठिन ब्रह्म यज्ञ है, व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करने में पीछे हो जाता है। हमें अपने आप का आत्मनिरीक्षण करना होगा। दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की बातें तो हम करते ही रहते हैं। संसार में देखा जाता है व्यक्ति दूसरों की बुराई करता तो उसे ऐसा लगता है कि मन बड़ा हल्का हो गया, लेकिन वो आत्मनिरीक्षण करने के लिए कभी नहीं बैठता। और जो व्यक्ति ऋषि होता है वो जब आत्मनिरीक्षण करता है, संध्या करता है, तब उसे लगता है कि मेरा मन बड़ा हल्का हो गया। तो बंधु, हमें जानने की आवश्यकता है कि जब तक हम आत्मदृष्टा नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा हमें पवमान नहीं करेंगे, हमें शुद्र पवित्र नहीं करेंगे। तो हमें अपने आप को जानने की

0: की आवश्यकता है। और जब व्यक्ति आत्मदृष्टा होगा, अपने आप को जानेगा, तो वह अपने दोषों को दूर करेगा। जैसे विचार करिए, एक उदाहरण लेकर के हम देखें कि हम बाहर से अपने घर पर आए और हमारी चप्पलों में या पैरों में कुछ गंदगी लग गई और उस गंदगी को लेकर के हम अपने घर में चले जाते हैं, तो हम देखते हैं घर भी गंदा कर देते हैं। कारण क्या है कि हमने उस गंदगी को देखा नहीं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति देख लेता है कि मेरे पैरों में गंदगी लगी हुई है, तो वो व्यक्ति उस गंदगी को साफ करके अपने घर में जाता है। बस ऐसे ही जब तक हम अपने आप की गंदगियाँ, दोष, बुराइयाँ इनको देखेंगे नहीं, तब तक ये दूर नहीं हो सकते। और हमारे शास्त्र कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत्पादम, हम अपनी दृष्टि को अच्छी प्रकार से देखते हुए चले। तो हमें यदि अपने दोषों को दूर करना है, ऋषि बनना है, तो अपने आप को देखना होगा। बंधुओं, देखने वाला यदि अच्छे प्रकार से अपनी दृष्टि को देखेगा तो उसके विचार भी अच्छे होते चले जाएंगे। और विचार, यहाँ पर जो शब्द कहा गया तर्पो ऋषि, जो सत्य असत्य का विचार कर सके, सत्य असत्य को जान सके, वह व्यक्ति ऋषि कहलाता है। और सत्य असत्य को जानना क्या, सत्य का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लेना, ये यथार्थ ज्ञान होता है और इसको समझने की आवश्यकता है। बंधुओं, ऋषिवर देवदयानंद जब सर्वप्रथम पाखंड खंडनी पताका लहराने के लिए चले, तो उस चांदापुर के उस मेले में ऋषिवर ने जब पाखंड खंडनी पताका लहराई, तो वहाँ सब लोगों को इकट्ठे करके वो कहते हैं कि हम सबको अपना एक अलग समुदाय धर्म मानना होगा, सब लोगों को एक ही धर्म मानना होगा। बोले जी कैसे माने, हम सबके अलग अलग नियम हैं, अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं। ऋषिवर कहते हैं ऐसी चीज़ों को एकत्रित किया जाए जो एक हो, जो सब जगह रहने वाली हो, सब जगह सत्य जानने वाली हो और हर कोई व्यक्ति उसे माने। तो बोले जी वो क्या होगा, तो ऋषिवर कहते हैं सत्य बोलना। सत्य बोलना प्रत्येक व्यक्ति मानता है। जैसे आप दूसरे धर्मों के पास जाएंगे, वो भी यही कहेंगे ट्रूथ इज़ गॉड, सत्य ही ईश्वर है। हमारे यहाँ भी आओगे तो सत्यम शिवम, कि सत्य ही सब कुछ है। और कहीं देखो तो देखा जाएगा कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। तो सत्य की महिमा सब जगह गाई जाती है। तो हम एक जैसे होकर के एक धर्म को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सत्य आएगा। उस सत्य को जानने की आवश्यकता है। बंधुओं, एक तो सत्य कहा जाता है सत्यम यथार्थ जानत्वम, कि यथार्थ रूप यथार्थ जान को जानना सत्य है। दूसरा कहें हम सत्यत्वम त्रिकाला बाधित्वम, कि जो तीनों काल में बाधित नहीं होता वह सत्य कहलाता है। और यदि एक और सत्य का हम यदि परिभाषा करें तो सत्य हितम सत्यम, जो है उसके उपकार के लिए कार्य करना, ये सत्य कहलाता है। तो ये बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी, मैं अपने मंत्र की ओर बढ़ता हूँ। मंत्र कह रहा है तमी महे महागयम, कि हम उस महान स्तुति करने वाले परमात्मा की स्तुति करें जो अग्नि ऋषि पौमाना, हाँ, जो ऋषियों को पवित्र करता है। और जो व्यक्ति ऋषि हो जाता है, आगे कह रहे हैं पांचजन्यः पुरोहितः, वो पांचजन्य भी होता है, वो व्यक्ति पुरोहित भी होता है। पांचजन्य किसे कहें, पांचजन्य कहा जाता है जो पांचों इंद्रियों को जीत लेता है, अर्थात घ्राण रसना चक्षु श्रोत्र त्वचा, इनको जीत करके जो कार्य करता है वो व्यक्ति पांचजन्य कहलाता है। और अंत कहते हैं पुरोहितः, वो ईश्वर पुरोहितों को भी पवित्र करता है। और पुरोहित किसे कहा जाता है, तो हम पुरोहित का यदि एक अर्थ देखें, पुरतः हितम चिंत्यति यस्य सः पुरोहितः, पुरहितम करोति यस्य सः पुरोहितः, जो दूसरों के हित की भावना से प्रत्येक कार्य को करता है वह व्यक्ति पुरोहित होता है। तो जो व्यक्ति ऋषि होगा, जो व्यक्ति आत्मदृष्टा होगा, जो व्यक्ति मंत्रदृष्टा होगा, जो व्यक्ति तत्वदृष्टा होगा, वह व्यक्ति पांचजन्य भी होगा, अपनी पांचों इंद्रियों को जीतने वाला भी होगा, वह व्यक्ति पुरोहित भी होगा, तो उसको ईश्वर पवित्र करेगा। और उस हम सबको पवित्र करने वाले परमेश्वर तमी महे महागयम, उस महान स्तुति करने वाले परमात्मा की हम सब लोग स्तुति किया करें। आप सभी लोगों ने श्रवण किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

जी हाँ श्रोताओ, बहुत ही प्यारा गाना लता जी की आवाज़ में। लेकिन अभी के लिए हम सुनने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी पर विशेष कार्यक्रम और खूबसूरत गीतों का सिलसिला हम जारी रखेंगे समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:30 बजे है। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापना की जाएगी। भक्त पूरी रात भक्ति में लीन और पूजा आरती के साथ पारंपरिक झांकरी नृत्य रात जागरण कर श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच बाप्पा को विदाई देंगे। हिंदी सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है। भारत से लेकर मॉरिशस और दुनिया के कई देशों तक हिंदी ने अपनी जड़ों को संभालते हुए बदलते समय के साथ खुद को नई पहचान दी है। आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष 3 बड़े मामलों की सुनवाई शुरू। इनमें रिवॉर्ड मनी, इको डियापार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद हुआ। टापू के उत्तर में रहने वाले एक व्यक्ति ने हाल ही में अपनी छत पर एक गिलहरी को केला खाते हुए देखा। इस जानवर का वीडियो भी बनाया गया और मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने पुष्टि की है कि ये वास्तव में एक गिलहरी ही है। दुनिया के कई देशों में गिलहरी की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, खासकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। कुछ गिलहरियां जंगलों में रहती हैं जबकि कुछ पार्कों और यहाँ तक कि शहरों में भी पाई जाती हैं। गिलहरियां मुख्य रूप

0: से फल, मेवे, अनाज और फूल खाती है। कुछ प्रजातियां कीड़े मकोड़े, अंडे या छोटे जानवरों को भी खाती है। लेकिन मॉरिशस में ये जानवर अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है। मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि अगर ये कोई अकेला मामला नहीं है और कई गिलहरियां यहाँ प्रजनन करना शुरू कर देती है तो वे कुछ स्थानीय प्रजातियों के साथ भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है। खास तौर पर वे ऐसे फलों का सेवन कर सकती हैं जो स्थानीय पक्षियों के लिए भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मॉरिशस वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन से विकास ततया को सुनते हैं, उनसे बात की आद्रियन वालियर ने विवरण रचनी भी कर का।
1: Certains écureuils et n'ont certaines maladies qu'ils ont portées. Donc, il y a aussi un problème de santé envers d'autres animaux, mais aussi santé publique aussi.
2: कुछ ऐसे गिलहरी हैं जिनके भीतर कुछ बीमारियां पाई जाती हैं, अतः वे मनुष्य और अन्य जानवरों के लिए भी एक खतरा बन सकता है। अब हमारी क्वारंटाइन प्रक्रिया की विफलता को दर्शाती है। कई सवाल उठाए जा रही हैं कि ये जानवर पेट ट्रेड के माध्यम से आया है, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी, या फिर दूसरे देशों से आयात किए गए माल या पदार्थों के साथ गलती से गिलहरी आ गई। इसीलिए हम नेशनल इन्वेजिव स्पीशीज स्ट्रेटजीज को लागू करने की मांग करते हैं, क्योंकि ये अभी तक अंतिम रूप और तैयारी में है, परंतु इसे जल्द से जल्द अपना दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट से जुड़े सभी सिफारिशों को जल्द से जल्द सुपुर्द कर देनी चाहिए ताकि मॉरिशस में इस प्रकार के जानवर, यहाँ तक कि विदेशी पौधा न लाए जाएं, क्योंकि इस प्रकार के विदेशी प्राणी हमारे स्थानीय एंडेमिक जीव प्राणियों पर असर कर सकेगा।
0: आज गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर मॉरिशस में विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना की जाएगी। पूरी रात श्रद्धालु बप्पा की आराधना में लीन रहेंगे। पूजा और आरती के साथ पारंपरिक झांकरी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। भक्तिमय वातावरण में गणपति बप्पा के जयकारों से वातावरण गूंज उठेगा। मराठी समुदाय के लिए गणेश चतुर्थी मात्र एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और सामुदायिक एकता से जुड़ा एक विशेष अवसर है। कल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त बाप्पा को भावभीनी विदाई देते हुए उनसे अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करेंगे। अभी उदय की विशेष रिपोर्ट।

गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर यानी कि आज का दिन अत्यंत उत्साह, श्रद्धा और उल्लास से परिपूर्ण है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही गणेश भगवान के स्वागत की तैयारियां आरंभ हो गई हैं और वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच विधि विधान के साथ गणेश मूर्ति की स्थापना की जा रही है। बप्पा के इस अलौकिक आगमन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज गूंजने लगी।

संध्या के समय मंदिर और पंडालों में भी विशेष रूप से आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु भाव विभोर होकर भगवान गणेश की आराधना करते हैं। इस दौरान बप्पा को उनके अति प्रिय मोदक और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाता है, जिनसे उत्सव की मिठास और बढ़ जाती है। इस पावन अवसर पर महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति की झलक विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां परोसे गए विशेष पारंपरिक मराठी भोजन पूरण पोली और ओरा सभी का मन मोह लेता है। आज रात पारंपरिक मराठी वेशभूषा यानी कि काष्टी में सजे भक्तगण उन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य झाकरी उत्सव में

चार चांद लगा देंगे। ढोल ताशों की थाप और पारंपरिक धुनों पर थिरकते कलाकारों की ऊर्जा से हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस प्रकार आस्था, संस्कृति और उल्लास का यह संगम गणेश स्थापना के इस पर्व को सभी के हृदय में अमर कर देंगे। आज घरों, मंदिरों एवं पंडालों पर गणपति पापा मोरिया की गूंज गूंजने लगेंगे। समाचार विभाग की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामना।

आज है हिंदी दिवस। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में हिंदी बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। मॉरिशस में भी हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ हिंदी भाषा साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदी ने समय के साथ खुद को बदला है। आज ये रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही है। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि अपनी भाषा का सम्मान करना, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान का सम्मान करना है। हिंदी है तो एहसास है, हिंदी है तो पहचान है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी उदय की रिपोर्ट।

प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह एक उत्सव ही नहीं है अपितु हमारी सांस्कृतिक चेतना, अस्मिता और प्राणवायु का महोत्सव है। हिंदी भाषा विज्ञान की कसौटी पर खड़ी उतरने वाली एक अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है, जिसकी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि उच्चारण के पूर्णतः अनुरूप है, यानी कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है।

वैश्विक पटल पर आज हिंदी अपनी मिठास, सुगमता और व्यापकता के कारण विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में शुमार है, और जहां लगभग 60 करोड़ लोग इसे बोलते व समझते हैं। व्यापार और डिजिटल मंडी के इस युग में हिंदी का आर्थिक आयाम भी तेजी से उभरा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उपभोक्ता मंडी अब हिंदी को अपनी समृद्धि का माध्यम मान रही हैं। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड ने भी तो वैश्विक सीमाएं लांघकर हिंदी को सुदूर और दूर दराज देशों तक पहुंचाया है, जहां विदेशी नागरिक भी हिंदी गीतों एवं संवादों से मंत्रमुग्ध हैं। प्रवासी भारतीयों ने मॉरिशस, फिजी, सुरिनाम जैसे देशों में इसे अपनी अमूल्य थाती के रूप में जीवित रखा है। विशेष रूप से मॉरिशस की धरती पर हिंदी का स्थान अत्यंत ही गौरवशाली है, जहां यह हमारे पूर्वजों के संघर्ष और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। मॉरिशस में हिंदी भाषा के पठन पाठन, धार्मिक अनुष्ठानों, विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी स्पीकिंग यूनियन, हिंदी प्रचारिणी सभा और बैठकें इस बात का प्रमाण है कि यह भाषा भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सांस्कृतिक सेतु है। इसी कड़ी में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक मंचों पर लगातार हिंदी में संबोधन देकर इस भाषा को कूटनीति एवं वैश्विक संवाद का सशक्त माध्यम बना रही है। अतः हिंदी वह सामर्थ्यवान भाषा है जो संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की

0: पत्र में पिरोकर एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। सभी हिंदी प्रेमियों को समाचार विभाग की ओर से हिंदी दिवस की मंगल कामना।
1: मामी गावातुमांग से जुड़े मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद जिसे भ्रष्टाचार और प्रभाव के कथित गंभीर आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है। शुक्रवार शाम घोंबुआ में एमएसएम के नेता प्रवीण जगनाथ ने दो लोगों के बीच हुई एक कथित बातचीत जारी की, जिन्हें कॉल और डेविड के रूप में पेश किया गया है। इस बातचीत में 300 मिलियन और 500 मिलियन रुपये की रकम का जिक्र किया गया है, लेकिन फिलहाल इस रिकॉर्डिंग की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। और सभा से एक दिन पहले नासेर बिकी ने एफसीसी के एक शपथ पत्र और एक यूएसबी ड्राइव सौंपी थी, जिसमें एक ऑडियो विजुअल मौजूद है। उन्होंने जांचकर्ताओं से इसकी जांच करने का अनुरोध किया है। हालांकि उन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि उनके पास इस बात का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से किसी अवैध भुगतान का अनुरोध किया था या उसे मंजूरी दी थी। अब ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन गया है कि क्या ये रिकॉर्डिंग असली है, क्या इसमें कोई बदलाव किया गया है या फिर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया हो सकता है। आधुनिक वालिया को सुनते हैं।
0: आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सचमुच बहुत यथार्थवादी सिंथेटिक आवाजें बनाना संभव बनाती है। किसी व्यक्ति की पर्याप्त रिकॉर्डिंग के साथ कुछ उपकरण उसकी आवाज, लहजे, लय और यहाँ तक कि कुछ खास उतार चढ़ाव यानी कि इंटोनेशंस की भी नकल कर सकते हैं। और मॉरिशस की क्रियोल भाषा खुद में कोई सुरक्षा कवच नहीं है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑडियो उदाहरणों के आधार पर किसी भाषा या लहजे की नकल करना सीख सकती है। छवियों और वीडियो के साथ भी यही बात लागू होती है। डीप फेक तकनीक चेहरे को बदल सकती है, नई आवाज के साथ होठों को सिंक कर सकती है या ऐसे दृश्य बना सकती है जो बेहद वास्तविक लगते हैं। और यह समस्या मॉरिशस से काफी आगे तक फैली हुई है, यहां तक कि अमेरिका में भी। अदालतें अभी भी इस बात पर काम कर रही है कि इस तरह के सबूतों से कैसे निपटाया जाए। अमेरिकी न्यायिक अधिकारी मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वीडियो, छवियों और ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इसका मतलब ये है कि अदालत में केवल ये कह देने वाला एक साधारण सॉफ्टवेयर कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, हमेशा पर्याप्त नहीं होता।
1: तो अभी आप आद्रियन वालिया की रिपोर्ट पर अभी उदय को सुन रहे थे। उधर प्रवीण जगनाथ से आज सुबह सीसीआईडी में पूछताछ के लिए पहुंचने की उम्मीद है। ये पूछताछ मिसिय मुस्ताक नाम से चर्चित फोन टैपिंग कांड की जांच के सिलसिले में होगी। उनके लिए एक नई तारीख तय की गई है, जबकि वो इससे पहले 1 सितंबर को सीसीआईडी पहुंचे थे। उनके वकील मेगाफ गुलबुल और आइवान कोलंडावेलू ने पूछताछ को स्थगित करने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें समन जारी किए जाने के समय इस मामले से संबंधित पक्की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। याद रहे कि इस जांच के सिलसिले में सीसीआईडी की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख लीलराम डील को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ता एक ऐसे कोड की तलाश में थे जो काउंटर टेररिज्म यूनिट में उनके कार्यालय में रखे गए एक उपकरण से संबंधित था। रिवॉर्ड मनी जांच में गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पूछताछ के दौरान कहा था कि उन्हें वो कोड याद नहीं था। लीलराम डील ने बताया था कि हालांकि वो उपकरण उनके कार्यालय में मौजूद था, लेकिन वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं करता था। उनके अनुसार पुलिस की एक अन्य इकाई नेशनल सिक्योरिटी सर्विस उस उपकरण का इस्तेमाल करती थी।

राज्य सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष तीन बड़े मामलों की सुनवाई शुरू हो रही है। इनमें रिवॉर्ड मनी, इको डियर पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है। डीपीपी ने पिछले 11 अगस्त को संबंधित लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोप दाखिल किए थे। इन तीनों

0: लील राम दियाल पर अपने पद का दुरुपयोग करके लाभ उठाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच मुख्य रूप से 4.5 मिलियन रुपए की उस रिवॉर्ड मनी से जुड़ी हुई है जो पुलिस मुखबिरों को देने के लिए थी। ये राशि उनकी पत्नी के साथ एक संयुक्त खाते में जमा की गई थी। पूर्व उच्च अधिकारी और उनकी पत्नी की 3 संपत्तियों के साथ साथ टोयोटा गावकाता को जब्त करने का आदेश दिया गया है। याद दिला दें कि रिवॉर्ड मनी मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर अनिल कुमार दीप सहित अन्य उच्च अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर अभी भी अस्थायी आरोप लगाया गया। इको डिया पार्क एसोसिएशन मामले में पूर्व मंत्री मनीष गुबिन, पूर्व सांसद गाजाना दालिया और एसआईटी लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हरिदत्त रामनारायण कटघरे में है। ये मामला गांववासी इलाके में शिकार और मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए कृषि और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय से सरकारी जमीन का लीज हासिल करने से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व सीईओ नामा सिवायन पुनुसामी, जिन्हें केन पुनुसामी के नाम से भी जाना जाता है, उन पर ईडीबी की वेबसाइट के डिजाइन और विकास के लिए एक ठेका देने के वैदे फ्रांसिया सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है।
1: विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद हुआ। और आपको बता दें कि याहूदीन में हुए इस हमले में ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन के जोनाथन पोवेल समेत यूरोपीय देशों के अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इसी रेलवे मार्ग से एक अलग ट्रेन में यात्रा कर चुके थे। वे कीव में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। रूस ने कहा है कि उसने पश्चिमी यूक्रेन में रेलवे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। हालांकि यूक्रेन की सरकारी रेलवे कंपनी यूक्रेजाली जिनसिया ने कहा कि काफ़ी संभव है कि इस ड्रोन का निशाना राजनयिकों को ले जा रही ट्रेन रही हो। अरब मौसम का हाल, दक्षिण की ओर से ठंड हवाएं बह रही है जो आज रात को हमारे स्थानीय मौसम पर जिसका असर आज रात को हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय मौसम अच्छा रहेगा और शाम को भी, सिवाय रात को बादल कुछ घिर आएंगे। देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर हल्की वर्षा होगी और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 अधिकतम 21 से 23 हाल इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:07 पर हुआ, सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बापा की मूर्ति स्थापना, भक्त पूरी रात भक्ति में लीन, पारंपरिक झांकरी नृत्य के साथ रात जागरण। कल श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बापा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त ढोल नगारों और जयकारों के बीच बापा को विदाई देंगे। हिंदी सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है।

0: आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष तीन बड़े मामलों और की सुनवाई शुरू हो रही है। इनमें रिवॉर्ड मनी, इको डिया पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद हुआ। 6:53 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार और फ्रेंच विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए। 51 मील बुबा समय 86 साल की 86 years old श्रीमती सौभाग्यवती रामजियावन पैदाशी नाम चतु और जिन्हें लोग रानी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान 51 मील बुबा सह से उठाकर शिवर कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 8:00 PM। कबीरदास स्ट्रीट रोष्टिया में 68 साल की 68 years old श्रीमती देवंती सुकन पैदाशी नाम गोपाला और जिन्हें लोग देवंती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे राकेश सुकन के मकान कबीरदास स्ट्रीट रोष्टिया से उठाकर डाकुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 8:11 AM। श्रीमय मायावरम सुयाक में 100 साल की 100 years old की श्रीमती गोइंदामा रामासामी पैदाशी नाम रंगासामी और जिन्हें लोग अमाई नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे इनकी बेटी पुष्पावादी सुब्रमण्यम श्रीमय मायावरम सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शामुनी कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:10 AM। डिप्रेविट्स रोड लॉन्ग माउंटेन में 88 साल के 88 years old श्री गोविंदत्त दुमन जिन्हें लोग पंडित जयलाल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा में पंडित पुरोहित थे। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे सुभाष दुमन के मकान डिप्रेविट्स रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। रॉयल रोड बुबासे में ला शापेला ओडोंट इलियनसन रॉयल रोड बुबासे में 78 साल के 78 years old श्री प्रकाश देवी जिन्हें लोग प्रकाश नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे रोजहिल स्थित मगाजे देवी के मालिक थे। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे ला शापेला ओडोंट इलियनसन रॉयल रोड बुबासे से उठाकर शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रकाश देवी नंबर 9 शॉल लीज स्ट्रीट रोजहिल के रहने वाले थे। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटबोन में 84 साल के 84 years old श्री अद्वैत रंगदुआ जिन्हें लोग अद्वैत नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटबोन से उठाकर त्वामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 8:00 PM। और लीबिया टू पंडामनिकम लेन वाक्वा में विनर्स सुपरमार्केट के पास

0: 75 साल के 75 years old श्री विजय रामा जिन्हें लोग जयसेन नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल मंगलवार को दिन के 2 बजे इनकी पत्नी इंदिरा रामा के मकान लिबेतो पंडामनिकम लेन वाकुआ से उठाकर थामामेल कृष्णशान भूमि ले जाए जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सोमवार 14 से 20 सितंबर को गणेश चतुर्थी के संदर्भ में ग्लेनपॉक वाकवा के मराठी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर द्वारा प्रेमोत्सव चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मेलरोज के श्री गजानन सरस्वती मंदिर मोका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मॉरिशस मराठी मंदाली फेडरेशन के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को 6 बजे गणेश मूर्ति स्थापना, रात के 8:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 5 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में पाल्मा कैथोबोन के देवानंद और अविनाश गनक परिवार द्वारा मंगलवार 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गौरी पूजा का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में बोबासा स्वस्तिका कमेटी द्वारा सोमवार 14 सितंबर को शाम 3:30 बजे कलश स्थापना और मंगलवार को 15 सितंबर को 11:30 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में सोमवार 14 सितंबर को रात्रि के 7:30 बजे गणेश पूजा और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 3 बजे सैमोत्य सुल्फेरिनो में विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में कौगाबो के सनातन और कौगाबो काली माता मंदिर के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को शाम 4 बजे मूर्ति स्थापन और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 4 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है।
3: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैनचेस्टर यूनाइटेड पर वॉ का वार और विवादास्पद कंट्रोवर्शियल हार, गोल अर्लिंग अलोन ने स्कोर किया, रेफरी माइकल ओलिवर का फैसला था ऑफसाइड, वॉ ने फैसला बदला मतलब गोल अलाउड। पर मैच के बाद प्रोफेशनल रेफरी एसोसिएशन ने कहा वॉ का फैसला गलत था, ऑन फील्ड रिव्यू करना चाहिए था। वॉ के अनुसार पैट्रिक डोगू का जूता अलोन के आगे था, प्लेड ऑन साइड बाय द बूथ, पर इससे पहले मैनचेस्टर सिटी का एंजो फर्नांडेज ऑफ साइड पोजीशन पर था, उसने गेंद को छुआ नहीं पर डिफेंडर मार्टिनेज पर असर पड़ा, फिर जाकर अलोन ने स्कोर किया। फुटबॉल नियमों के अनुसार गोल नहीं देना चाहिए था पर वॉ का वार और यूनाइटेड की हार। मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर डर्बी जीत गया, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में और 10 खिलाड़ियों के साथ। 25वें मिनट पर फोडेन को रेड कार्ड दिखाया गया पर इसका फायदा नहीं उठा पाया मैनचेस्टर यूनाइटेड। इस सीजन ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की दूसरी हार है जबकि मैनचेस्टर सिटी के लिए 4x4 जीत ही जीत। आर्सेनल के साथ 12 अंक, केवल गोल डिफरेंस पर आर्सेनल आगे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी 13वें पोजीशन पे है, 13th पोजीशन 4 अंकों के साथ। कल के पहले मैच में ब्राइटन के लिए ब्राइट ही ब्राइट, उसने कोवेंट्री सिटी को 5-0 से पछाड़ा। आज लीड्स यूनाइटेड का मुकाबला न्यूकासल यूनाइटेड से होगा। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में शेफील्ड यूनाइटेड 0 वुल्व्स 1, स्कॉटिश लीग कप के क्वार्टर फाइनल

0: में कल सेल्टिक की हार हुई, उसको हराया ग्लासगो रेंजर्स ने 3-0 से। वुमेन सुपर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 चेल्सी 5। स्पेन के ला लीगा में लेवेंटे 2 बार्सिलोना 4, लामिन यमाल का डबल। सेल्टा विगो 1 मालागा 1, रेताफे 1 डिपोर्टिवो 1, रियल सोसेडा 0 एटलेटिको मैड्रिड 3। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख 2 एल्वेबर्ग 1, आरबी लाइप्ज़िग 5 हैमबर्ग एसवी 0। इटली के सीरी आ में यूवेंटुस की हार, सासुओलो ने उसे 3-2 से हराया। लेचे 3 मोंजा 2, नापोली 1 बोलोनिया 0। फ्रांस के लीग 1 में लील 2-3-0, ले मंस 2 लांस 2, पेरिस सेंट जर्मेन ने एवजाकर ब्रेस्ट को 1-0 से हराया। टेनिस, यूएस ओपन का चैंपियन बना अलेक्जेंडर वेरेव, फाइनल में उसने होम फेवरेट शेल्टन को हराया। फ्रेंच ओपन के बाद यूएस ओपन भी जीत पाया वेरेव। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के स्पैनिश ग्रैंड प्री में किमी अंतोनेली की जीत। लैंडो नोरिस वर्चुअल सेफ्टी कार पीरियड में लीड खो बैठा और अंतोनेली ने इसका फायदा उठाया। अंतोनेली अब चैंपियनशिप में 81 अंक 81 पॉइंट्स अहेड। क्रिकेट, विमेन्स एशिया कप भारतीय टीम के नाम। फाइनल में कल भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को 72 रनों से हराया। ये टीम इंडिया का 8वां टाइटल है। लड़कियां चैंपियन तो लड़के भी कम नहीं। टीम इंडिया ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर रहा 82 रनों के साथ। मॉरिशस में भी क्रिकेट, आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा के 4th एडिशन का चैंपियन बना कैंपस अब्रॉड लायंस। फाइनल में कैंपस अब्रॉड लायंस ने कॉन्टिनेंटल चीटास को हराया। मापू के एसएस साउ नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में कल धूमधाम के साथ फाइनल खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए कैंपस अब्रॉड ने 123 रनों का टारगेट रखा, पर कॉन्टिनेंटल चीटास केवल 79 रन पर ऑल आउट हो गए। इस साल का आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा खास रहा क्योंकि मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल मेंबर बन गया है और ओलंपिक कमेटी का भी सदस्य बन गया है। बॉक्स फ्रांसेज में फ्रांस में लगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मॉरिशस 4 मेडल जीत पाया। एक सिल्वर मेडल ग्रेगोरी टोमासू ने जीता, फिर फ्लोरियन सुबदुराली, जेसिका नोबर्स, चनिष्ठा जोशी ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। और कल रात ISPL डेमिल की टीम का शानदार स्वागत किया गया। सरजू गारुशंकर के जवानों ने इतिहास रचा, एवे जाकर क्वालिफिकेशन ले पाए। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे लीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: रेडियो मॉरिशस सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह के 7:07 हो गए हैं श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आज सोमवार 14 सितंबर 2026 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 9 बजे तक, आप भी साथ निभाइएगा। और जैसे कहते हैं ना, कल की फिक्र छोड़ो, आज की सुबह को खुल कर जियो और हर सुबह जिंदगी का एक नया मौका होती है, इसे बहकर बेकार में मत जाने दो। तो चलिए आज के लिए हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर गाने, आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। अभी के लिए चलिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर लक्ष्मी जुम्मन जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

कर्म से केवल मन की ही शुद्धि होती है, तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए मुख्य उपाय ध्यान है।

7:54 हुए हैं। या श्रोताओं, 7:24 हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। चले बढ़ते हैं आगे और अगला गाना जो है उन तमाम सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं,

सुबह के 7:31 हुए हैं। चले श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं रेडियो सुर्खियाँ। आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और आप सुनेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों के बाद आपकी राशि और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ 9 बजे संक्षिप्त समाचार। समाचारों के बाद नीतू शाह की प्रस्तुति में आज की चर्चा कार्यक्रम और 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम और 11 बजे आप सुनेंगे संक्षिप्त समाचार। इसके बाद सायदा सुबह की प्रस्तुति में उर्दू प्रोग्राम शामी फरोजन, जी हाँ मराठी प्रोग्राम दिन के 12 बजे से साढ़े बारह बजे तक और दोपहर के 1 बजे, जी हाँ आरएसी के साथ तमिल प्रोग्राम और 1:45 रंगारंग प्रोग्राम गुजराती प्रोग्राम रत्ना की प्रस्तुति में, 2 से 2:30 बजे तक चाइनीज़ प्रोग्राम दाविद के साथ पूजा द्वारा आप सुनेंगे आपकी पसंद प्रोग्राम, 4 बजे तक क्षितिज कार्यक्रम 4 से 4:15 और 4:15 बजे वंदना के साथ तेलुगु प्रोग्राम, 5:30 बजे आप सुन पाएंगे बच्चों का कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में और शाम के 6 बजे समाचार 6:30 चाइनीज़ प्रोग्राम जिनके साथ 7 से 9 बजे तक 7 से 7:30 तक युवा

सन के साथ तमिल प्रोग्राम तेलुगु प्रोग्राम वंदना के साथ 7:30 और 7:50 पर नितिन बापू के साथ आप सुनेंगे गीत गंगा प्रोग्राम। 8:10 पर बछले पर प्रभु का नाम कार्यक्रम आप सुन पाएंगे देवीना के साथ और 8:40 पर महफिल शब प्रोग्राम। जी हाँ 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी तर का प्रोग्राम किरण जानकी की प्रस्तुति में और 8:11 सुनहरे पल प्रोग्राम की निशा प्रस्तुत करेगी और 12:00 से कल सुबह के 6:00 तक आप सुन पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। तो ये थे आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियाँ।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

यह दोस्तों, बहुत सारे लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है। जी हाँ, अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी हम आपको याद करते हैं। जन्मदिन सिर्फ एक बार आता है और इस ख़ास मौके पर उन सभी लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं इस समय, ये अगला गाना आपके नाम और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको।

0: चलिए 7:52 हुए हैं, चलिए इसी के साथ ये खूबसूरत गाना सुनते हैं और आप 8 बजे सुन पाएंगे भोजपुरी समाचार। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।
1: या हबीब।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: फजर के 8 बजल बा सब कोई के नमस्ते भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको की स्वागत करत है जा आज गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या के मॉरिशस में विधि विधान संगे गणपति बापा के मूर्ति स्थापना होई पूरा रात श्रद्धालु बापा के आराधना में लीन होयन स पूजा आरती संगे पारंपरिक झाकरी नृत्य भी आकर्षण के केंद्र में रही भक्तिमय वातावरण में गणपति बापा के जयकार से वातावरण गूंज उठी मराठी समुदाय खातिर गणेश चतुर्थी खाली एगो धार्मिक पर्व ही नहीं बकिर परंपरा संस्कृति और सामुदायिक एकता से जुड़ल एगो विशेष अवसर है काल पूरा उत्साह और श्रद्धा संगे गणपति बापा के विसर्जन करल जाए भक्त बापा के भावभीनी विदाई दियन जा और बापा के आवत बरी सफीनों से आई के पूजा करियन जा आज हिंदी दिवस मनावल जात बा हर बरिस 14 सितंबर के हिंदी दिवस मनावल जाला हिंदी खाली एगो भाषा नहीं बकिर हमनी के भावना विचार और संस्कृति के एगो एक दूसरे से जुड़े होला एगो मजबूत करी है भारत खाली भारत में नहीं विश्व के कई अन्य देश में हिंदी बोले और समझे होला लोग मौजूद बातें मॉरिशस में भी हिंदी के अपने गो विशेष स्थान बातें यहाँ हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति शिक्षा और मीडिया के माध्यम से जनता के जीवन से जुड़ल है हिंदी समय संगे खुद के बदल दिले बा आज ई रेडियो टेलीविजन सिनेमा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपन मजबूत मौजूदगी दर्ज कर ले बा हिंदी दिवस हमनी के याद दिलावेला कि अपन भाषा के सम्मान करे के अपन संस्कृति और अपन पहचान के सम्मान करे के हिंदी बात एहसास बा हिंदी बात पहचान बा हिंदी दिवस के सब कोई के हार्दिक शुभकामना बातें मामी खवा तुमांग से जुड़ल मामला एक गुनावा मोर ले ले बा एगो ऐसा रिकॉर्डिंग सामने आईला के बाद जिके भ्रष्टाचार और प्रभाव के कथित गंभीर आरोप से जुड़ल बतावल गल बा सुख के सांझ के घोंबुआ में MSM के नेता प्रवीण जगन्नाथ दू जना के बीच होल एगो कथित बातचीत जारी करलक जेके काल और दैविद के रूप में पेश करल गल बा ई बातचीत में 300 मिलियन और 50 मिलियन रुपया के रकम के जिक्र करल गल बा मगर अभी खातिर ई रिकॉर्डिंग के प्रामाणिकता के पुष्टि नहीं होल बाती आर प्रवीण जगन्नाथ से आज फजीर के CCID में पूछताछ करल जाए ये पूछताछ मिसिय मुस्तास नाम से चर्चित फोन टैपिंग कांड के जांच के सिलसिला में हुई ओकर खातिर एगो नवा तारीख तय करल गल बा जबकि उ एकर से पहले 1 सितंबर के CCID आल रहल आज सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष 3 बड़का मामला की सुनवाई शुरू होता एकर में रिवॉर्ड मनी इको डियर पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ल मामला शामिल बाते DPP गल 11 अगस्त के संबंधित जना के खिलाफ औपचारिक आरोप दाखिल कर ले रहल ई 3 मामला के जज लक्ष्मी प्रसाद उजायब के समक्ष पेश करल जाए दूसर देश के खबर में यूक्रेन पोलैंड सीमा के भीड़ी एगो ट्रेन के रूसी ड्रोन निशाना बनैले बा ई हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के

0: शीर्ष सुरक्षा अधिकारी के उ रेलवे मार्ग से गुजरे के कुछ ही समय बाद पेश आया। तैखरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त हो। तू लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आठ बजकर चार मिनट होलबा मरनी के खबर सुने जा। सिमिट्री रोड लासू जिन लिस्कालिये में 82 बरिस के काथोवै दिसों के श्रीमती बुदनी कोमल जिनकरा सबको लीलो नाम से जस्ती जानत रहलन जा गुजर गढ़वन उनकर माती आज दिन के 2:15 उनकर बेटा मनोज रामलोगन के घरे सिमिट्री रोड लासू जिन लिस्कालिये से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर बासे काहोंग लिस्कालिये के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 2:30 PM। सैकिया मिल बोबा सैमे 86 बरिस के कातोवै सीजों के श्रीमती सौभाग्यवती रामजियावन पैदाशी नाम चतू और जिनकरा सबको रानी नाम से जस्ती जाना टोलन जा गुजर गढ़ हवन उनकर माती आज दिन के 2 उनकर घरे सैकिया मिल बोबा सैसे उठावल जाए और शिबैल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 2 PM। कबीरदास स्ट्रीट रोश्तिया में 68 बरिस के 64 के श्रीमती देवंती सुकन पैदाशी नाम गोपाला और जिनकरा सब कोई देवंती नाम से जस्ते जान रलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 11 उनकर बेटा राकेश सुकन के घरे कबीरदास स्ट्रीट रोश्तिया से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर दाहूची के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 11 AM। श्रीमय मायावरम सुयाक में 100 बरिस के 100 के श्रीमती गोइंदामा रामासामी पैदाशी नाम रंगासामी और जिनकरा सबको अमाई नाम से जस्ती जान ठलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज भजिर के 10 उनकर बेटी पुष्पावादी सुब्रमण्यन के घरे श्रीमय मायावरम सुयाक से उठावल जाए और शामुनि के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 10 AM। डिप्लेविट्स रोड लॉन्ग माउंटेन में 88 बरिस के 88 के श्री गोविंदत दोमन जिनकरा सबके पंडित जयलाल नाम से जस्ती जान टलन जा गुजर गर हवन उ पहले आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा में पंडित रहलन उनकर माती आज दिन के 2:15 उनकर बेटा सुभाष दुमन के घरे डिप्लेविट्स रोड लॉन्ग माउंटेन से उठावल जाए आर थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे एट 2:30 PM। La chapelle ardente Eliensen Royal Road Bobassem mais 78 बरिस के 78 अंके श्री प्रकाश देवी जिनकरा सबके प्रकाश नाम से जस्ती जान रलन जा गुजर गर हवन उ रोज हिल के मगाजे देवी के मालिक रहलन आर नंबर 9 शॉल ली स्ट्रीट रोज हिल रहे उनकर माती आज दिन के 2:15 लाशा पेलाउ दौत एलियनसन रॉयल रोड बुबा सैसे उठावल जाए और शिबैल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 2:30 PM। नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटोबोन में 84 बरिस के 84 के श्री अद्वैत रंगटुआ जिनकरा सबको अद्वैत नाम से जस्ती जान टलन जा गुजर कर हवन उनकर माती आज दिन के 2 उनकर घरे नंबर 73 एवेन्यू कोरियोलिस कैटोबोन से उठावल जाए और थ्वा मामेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टूडे 2 PM। और लिबेटो पंडामनिकम लेन वाकुआ में विनर्स के पास 75 बरिस के 75 के श्री विजय रामा जिनकरा सबको जयसन नाम से जस्ती जान रहलन जा गुजर गर हवन उनकर माती काल मंगल के दिन के 2 उनकर पत्नी इंदिरा रामा के घरे लिबेटो पंडामनिकम लेन वाकुआ से उठावल जाए और थ्वा मामेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुमरो 2 PM। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने के सहानुभूति बातें।
2: Radio Mauritius
3: 800 kilohertz par ye hai Radio Mauritius
2: Radio Mauritius
3: Radio Mauritius
4: Subah ka nazrana laaye khushiyan hazar Radio Mauritius par

0: 8:25 हुए हैं श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो मॉरिशस और प्रस्तुत है आपका साप्ताहिक राशिफल। और जी हाँ, आइए जानते हैं कि ये हफ्ता आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, साथ ही जानेंगे आपका शुभ अंक और शुभ रंग।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस पर। एरीज, मेष राशि।
0: इस सप्ताह आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा, रुके हुए काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं और नौकरी करने वालों को अपने परिश्रम का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में नए अवसर सामने आ सकते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन बातचीत से समस्या सुलझ जाएगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए आराम और समय पर भोजन जरूरी है। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: यह सप्ताह आपके लिए स्थिरता और प्रगति लेकर आ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ संकेत है। पुराने धन से जुड़ा कोई काम पूरा हो सकता है। काम के क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। बेवजह खर्च से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लकी नंबर है 6, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: इस सप्ताह आपकी बात रखने की कला आपके बहुत काम आएगी। काम के स्थान पर आपकी प्रशंसा हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है। व्यापार करने वालों को सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। प्रेम के मामले में पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। मानसिक थकान से बचने के लिए थोड़ा विश्राम जरूर करें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: यह सप्ताह भावनाओं से भरा रह सकता है। आप किसी पुराने काम को पूरा करने में सफल हो सकते हैं। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी का विचार आ सकता है। पैसा संबंधी मामले में सावधानी रखना जरूरी है। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। घर के किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव, सिंह राशि।
0: आपके लिए ये हफ्ता सम्मान और सफलता लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत लोगों की नज़र में आएगी। काम के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग है, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा निर्णय ना ले। परिवार में आपका मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेगी। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। लकी नंबर है 1, लकी कलर है नारंगी।

0: वर्गो कन्या राशि।
1: इस सप्ताह आपको अपने काम को लेकर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका अच्छा फल मिलेगा। पैसा संबंधी रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में सोच समझकर कदम उठाना लाभदायक होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। पेट और नींद से जुड़ी परेशानी को नज़रअंदाज ना करें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
0: लीब्रा तुला राशि।
1: यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। काम के क्षेत्र में किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य के से बेहतर रहेगी। किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य और आराम पर ध्यान दें। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी रंग।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: इस सप्ताह आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उनका सामना कर लेंगे। काम में अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसा कमाने के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं। किसी पुराने मित्र और मुलाकात हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए खुलकर बात करें। लकी नंबर है 9, लकी कलर है पीला रंग।
0: सजिटेरियस धनु राशि।
1: यह सप्ताह आपके लिए उत्साह और आगे बढ़ने का समय है। काम के सिलसिले में यात्रा का योग बन सकता है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में अच्छा लाभ होने की संभावना है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में अपने साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: मकर राशि सप्ताह आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। काम के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति सुधारने के योग है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचे। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी। पुरानी चिंता कम होगी और मन को सुकून मिलेगा। अपने शरीर को थकान से बचाएं। लकी नंबर है 8, लकी कलर है नीला रंग।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: ये सप्ताह नए विचारों और नए प्रयासों के लिए अच्छा है। आपके किसी विचार को काम में सराहना मिल सकती है। पैसा संबंधी मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। नए लोगों से संबंध बनेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर आपको समझौता करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में पुरानी नाराजगी दूर हो सकती है। आपकी दिनचर्या को नियमित रखें। लकी नंबर है 4, लकी कलर है बैगनी।
0: Pisces, मीन राशि।
1: मीन राशि आपके लिए सप्ताह भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। काम के क्षेत्र में अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक रूप से समय अनुकूल रहेगा। परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। किसी धार्मिक या शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। अपने मन को शांत रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी नंबर है 7, लकी कलर है पीला रंग।
0: ये थी आपकी राशि रेडियो मिशन। रेडियो मिशन पर
1: तो श्रोताओ, ये था आप सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल। याद रखिए, राशिफल केवल सामान्य ज्योतिषीय संकेत है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा सोच समझ कर ही लें।

पौने नौ बज चुके हैं श्रोताओ, और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। ये प्यारा सा गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद आप सुन पाएंगे किरण द्वारा हमारी धरोहर कार्यक्रम।

0: 819 kilohertz.
1: लेकिन हिंदी एगो ऐसन भाषा है जोन अधिकतर भारतीय लोग के एगो डोर में जोड़ के रखेला। यही नहीं, हिंदी भारत के राष्ट्रीय भाषा भी है। आज के समय में भले ही जस्ती जना के झुकाव अंग्रेजी की ओर बा, फिर भी भारत के राजभाषा, नेशनल लैंग्वेज और आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी के ही पहचानल जाला। हिंदी भाषा भारत के संगे संगे विदेश में बसल भारतीय लोग के भी अपने को अलग पहचान देवेला। विदेश में और सब भारतीय डायस्पोरा देश में भी ई दिन पर विश्व हिंदी दिवस मनावल जाला और एकर में मॉरिशस भी शामिल बा। बल्कि मॉरिशस एकर में बहुत विशेष है, कहे कि यहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करल गल बा। ई मॉरिशस खातिर एगो बहुत बड़ा और गर्व के बात है। हिंदी भाषा आज दुनिया भर में बोलल जाय होला पांचवा सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। मतलब कि पांच भाषा में से जोन सबसे महत्वपूर्ण बा ई एगो है। दुनिया भर में आज करोड़ों जना हिंदी बोलेलन जा। फिजी में हिंदी के आधिकारिक भाषा के दर्जा देवल गल बा। मॉरिशस में गिरमिटिया शर्तबंद प्रणाली के समय भारतीय आप्रवासी लोग हिंदी भाषा के संगे संगे भारतीय सांस्कृतिक मूल्य भी मॉरिशस में अनले हवन जा। बैठका में हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू होल और आज पीएचडी तक हिंदी के पढ़ाई होवेला। हिंदी भाषा लगभग सब मॉरिशन वासी लोग समझेलन सा। बॉलीवुड के प्रभाव भी मॉरिशन लोग के हिंदी के प्रति रुचि, हिंदी बोले और समझे में बहुत बड़ा भूमिका निभावेला। विश्व आर्थिक मंच के गणना के अनुसार, स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, हिंदी विश्व के 10 को शक्तिशाली भाषा में से एगो है। साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बड़ा दिन, बच्चा, अच्छा, सूर्य नमस्कार जैसन शब्द के जोड़ लेबा। इसे ई बात प्रमाणित होवेला कि हिंदी भाषा अब विदेश में भी लोकप्रिय हो गल बा। विदेश में रहे होला लोग भी अब हिंदी के महत्व के पता लगावत हवन जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

चले इसी भोजपुरी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। भूलिएगा नहीं 9 बजे संक्षिप्त समाचार और समाचारों के बाद नीतूषा के साथ आप सुन पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे है। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे। पूजा नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतूषा, सभी को मेरा नमस्कार। विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापना की जा रही है। भक्त पूरी रात भक्ति में लीन और पारंपरिक झाकरी नृत्य के साथ रात जागरण कल श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त ढोल नगारों और जयकारों के बीच बाप्पा को विदाई देंगे। हिंदी सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है। भारत से लेकर मॉरिशस और दुनिया के कई देशों तक हिंदी ने अपनी जड़ों को संभालते हुए बदलते समय के साथ खुद को नई पहचान दी है। आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के समक्ष दिन 3 बड़े मामलों की सुनवाई शुरू हो रही है। इनमें रिवॉर्ड मनी, इकोडिया, पॉक

0: एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल है। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद पेश आया। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv, NBC Radio, हर पल आपके साथ। Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India. Namaste to the adventurous millennials and brave moms. Et à tous ceux qui aiment manger de délicieux plats indiens sans avoir à les préparer. Avec les plats Haldiram's, la marque renommée de l'Inde, manger indien is as easy as egg dhoti. Vous voulez un aloo paratha ou un tandoori garlic chili naan? No more kitchen battles. It's ready in a flash. Un bon curry, un dal makhni ou un paneer tikka masala? Haldiram's is in your fridge and ready to eat. Alors quand vous êtes hungry, no worries avec Haldiram's. Haldiram's, the authentic taste of India in no time. Back, back.

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में सब कोई के स्वागत बाते। हाँ आज हा लेंदी के दिन तो चले शुरुआत बप्पा के नाम लेके हमने करब जा सब कोई के गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। तो तुहर स्वागत बाते यार बा तुहरा गल हला गल लेंदी के हमने एगो ऐसन पिलवा के बारे में हमने बात करत रही जा जोन हमने के पलदामून और उकर जोन परिवार के आफिकते करत रहल ऊहा अभी ले करता टूटा आपसोलूटा जोन खुला मैदान और ग्रीन हाउस माने कि जोन हाइड्रोपोनिक्स जस्ती ढेर जना आजकल हाइड्रोपोनिक्स में अपन पैदावार रुपायु सब करत हवन जा। तो आज यही पर हमने जारी रखब जा पर कैसे उ लोग जोन पेस्टिसाइड जोन कीटनाशक उ लोग इस्तेमाल करत हवन जा ग्रीन हाउस में हाइड्रोपोनिक्स में उकर इस्तेमाल कैसे होला कैसे चाहेला करे के कौन प्रैक्टिस चाहेला अपनाए के नहीं चाहेला वो सब करे के जस्ती जानकारी आज के चर्चा कार्यक्रम में हमने बतियाब जा। और फिर से हमने के मेहमान हवन फागे के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी। तो चला इनकर हमने स्वागत करी ला जा। बाय शंभू प्रणाम, गणेश चतुर्थी के मंगल कामनाएं तोहरा।
1: धन्यवाद आपको भी,
0: बहुत धन्यवाद। तो हाँ आज हो हमने बात करब जा जो हाइड्रोपोनिक्स गथला हमने के बतियाला कि कैसे जो टूटा आपसोलूटा बा पिलुआ जो हमने के पलदामून सब खासतौर से ओकरा अफेक्टिव सब करता। तो अभी जब बार हमने करत है जब बीमारी पिलुआ बैक्टीरिया सब तो एक एगो सोल्यूशन हो हमने बोली ला सा पेस्टिसाइड एबिसिड बातें कीटनाशक बातें। तो हाइड्रोपोनिक्स में खास तौर से एक इस्तेमाल कैसे होला और कौन चीज़ के जो हमने के किसान लोग चाहेला ध्यान में देवे के जब पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होला हाइड्रोपोनिक्स में।
1: जहाँ तक जब हाइड्रोपोनिक्स के जैसे प्रयोग होला तो वो गो लासिया में रहला गो ग्रीन हाउस में रहला तो लासिया के जब दिख तो ऊपर में तो एगो कवर रहला प्लास्टिक के और साइड में सकेला प्लास्टिक भी रहे सकेला इंसेक्ट प्रूफ नेटिंग भी रहे
0: जी।
1: लेकिन कोनो प्रकार के हो बात लगभग एगो एनक्लोज स्पेस बोलब सा यानी कि एगो गन्ना एगो बंद कमरा कहते बा। हालांकि आज नेटिंग बात तनी सुनो कमे वी लाशों रहेला आयरे रहेला लेकिन एगो एनक्लोज स्पेस की तरह बा। तो बाहर में जब देखब सा ओपन फील्ड जोन बोला सा जब एक जना पेस्टिसाइड के जब प्रयोग करेला तो ओपन फील्ड में तो खुला बा ना जब एगो स्प्रेइंग करेला तो गन्ना खुला में बात हो पेस्टिसाइड के प्रभाव ओकर पर उतना नहीं पड़ेला क्योंकि तनी सुन हवा रहेला सब चीज़ खुला बा तो सब चीज़ गन्ना ऐसे फाने हो जाला। भीतर में एनक्लोज स्पेस में जब एगो एगो एगो किसान पेस्टिसाइड के प्रयोग करी तो क्योंकि एगो एनक्लोज स्पेस में बा शायद वी लाशों उतना नहीं बा और ऊपर से तो प्लास्टिक बा जो घमाओ सबके आए उतना आए कुवे कर देवेला उतना रियों जैसे बेला से यूवी लाइट है नहीं नहीं आवेला तो वो कारण पेस्टिसाइड के प्रभाव अंदर में ज़्यादा होला।

0: अब क्योंकि ज़्यादा होला तो वो कारण से परिला जस्ती परिजस्ती प्रिकॉशन लेके अजय बाहर में परता प्रिकॉशन लेके तब भीतर में अंदर में ओकर से ज़्यादा बिछाला प्रिकॉशन लेके।
1: तो जब हमने प्रिकॉशन की बात करत है जा तू बोला था वो प्रिकॉशन चाहे ला लेवे के तो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बा कौन सी इस्तेमाल होला।
0: जब पेस्टिसाइड के प्रयोग होला तब जब कर खरीदारी करब तो कर जन लोजमा बा कम एगो लेबल रहेला। अब लेबल में देखब तो एक आध गो चित्र रहेला कि जब पेस्टिसाइड के ओकर मैनिपुलेशन करब ओकर प्रिपरेशन करब या फिर जब ओकर स्प्रेइंग करब तो चित्र में लिखेला कौन कौन प्रिकॉशन चाह लेके। जैसे कि रही आज एगो चित्र रही लेगों के तो चला लेगों पहने के, एगो चित्र रही ओवरऑल के तो चला ओवरऑल पहने के, गूगल के एगो चित्र तो चला गूगल पहने के। लेकिन हमार अनुभव से हम किसान लोग के एगो मांग करती कि देखो आज चित्र में नयो लिखल बा मांस डाले के। एगो उदाहरण देता है तो लासेयर में जब पेस्टिसाइड के प्रयोग करब तो चला मैक्सिमम प्रिकॉशन लेके मैक्सिमम प्रिकॉशन लेके। जैसे शुरू में बोलनी वो बाहर के लिए सिचुएशन नहीं बात नहीं बातें अंदर में अलग ही स्थिति बा जहाँ पर जब स्प्रे करब तो जन मोलिक्यूल जन बा हो स्प्रे के जन हो बल्ब से हो छोटा छोटा ड्रॉपलेट जन बा लावापे कहते बा तो वो लटकल रहेला
1: जी
0: सस्पेंडेड रहेला इन एयर गति गति से अगला गिरे फाने होला। और क्योंकि एनक्लोज स्पेस में बात महकी जैसी ना तो महक कौन सी है वो तो अगर अति है पोजुए है को परफेक्ट नहीं है पोजुए महक तो तुम्हारा सेहत कहते नहीं अच्छा है। वो कहते हम बोलती लेबल पर कोनो भी प्रिकॉशन लिखल हो छोटा मोटा तो ओकरा चलना ओकरा से जस्ती प्रिकॉशन लेके।
1: तो हमने के बतावा भाई शंभू जब ग्रीन हाउस हाइड्रोपोनिक्स की बात हमने करे तनि सुन हाइड्रोपोनिक्स के तनि सुन उकर इतिहास आज हमने जैसे जानी ला जा ढेर जगह पर हमने देखा था जा कई जना कई जिन किसान होवन जो उ लोग हाइड्रोपोनिक्स के स्थापना कर ले होवन तो उकर शुरुआत कब से होल और उकर फायदा कौन सी है।
0: अच्छा शुरुआत सकेला लगभग सन 2000 के तनि सुन आगे खुल रहा तब शुरुआत में जब तनिए सुन इधोपनिक रहा तनिए सुन उपेगाते इधोपनिक रहा दो तीन जना खाली कर तलन जा तब गनला हुआ से जब निकलल तब उतना गनला कैसे बोला पॉपुलर नहीं रहा
1: जी
0: तक अमी लोग इतना अपनावत नहीं रहा जा। बाद में कौन सी होला कैसे हो सन 2008 में एगो इकोनॉमिक क्राइसिस आवेला जैसे बोला सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका से शुरू होला तो ढेर चीज महंगा हो गया रहल फैच चीज हो सब खाद सब मोती हो गया रहल। तब जाके एगो गन्ना तनि सुन एगो आवेला कि सकला इधोपोनिक करे तब में गति गति गति गति तब मोती होला गन्ना ओकर प्रोडक्शन ओकर सर्फेस एरिया जितना जितना जितना यूनिटी बा इधोपोनिक पर गन्ना मोती हुई जला। लेकिन हमार अनुभव से सबसे बड़का दिक्लिक जैसे बोला सा ट्रिगर होला कोविड के साथ। अब कोविड आवेला तो ढेर कोई जैसे बोला सा ले ऑफ काम में से या तो काम गवा दिलन सा या फिर परता घर पे रह के तो ढेर कोई अपन जन सेविंग्स बातें या फिर लोन लेके वगैरह वगैरह सोचलन सा काहे ना चला अपन खातिन एगो एगो अंतरप्रिज खड़ा करे तो एगो आगो अंतरप्रिज हो गए तब इधोपोनिक में डुकलन सा। तो सकेला हाउ लेपुक में हाउ समय में देखा हम बोले शुरुआत सन 2000 के लगभग आगे आगे आगे तनि सुन आगे से होला हुआ से आवत गन ला सन 2020 तक 20 साल में उस सकेला हमने आल ऐसा नहीं आते एग्जैक्ट मैंने याद बा लेकिन सकेला 600,000 मीटर स्क्वेयर टोटल इधोपोनिक छः साल में 2020 से 2026 आए खाते वो 600,000 से 700,000 800,000 900,000 अभी आज ऐसे बेला सा एन मिलियन में कागज से जस्ती इधोपोनिक बातें। अब ओकर फायदा कौन सी बा इधोपोनिक में सब चीज जन रोपल डला तो भीरी रोपल डला ओकर में

0: सब चीज पौधा जो खड़ा रहेगा बाहर में, जब एक टमाटर के पौधा लगेब तो वो नीचे में गंदा फैलल रहेगा तो जगह लेवेला, तो कैसे बोला सा गंदा एक जना आज टमाटर की खेती करी तो उस अकेला 1.8 मीट पर 0.8 मीट पर गंदा रुपाई करत हुए स्पेसिंग है सोचला 1.8 मीट यहाँ से तोहर लगी गिरा था
1: जी,
0: तो इतना दूर में रुपाई होता, लेकिन इडोपोनिक में तो उस अकेला 30 सेंटीमीटर सटे 30 सेंटीमीटर पर लगभग चाहे सकेला में रोपाई करे और पौधा नीचे में तो नहीं माना जैसे रस्सी से खड़ा करल बा। तो कारण देख बात एगो एगो छोटा सुनी दो पोनिक में 500 मीटर स्क्वायर के ओकर में
1: ढेर चीज सब बचा
0: रोपाई करे, नहीं ढेर पौधा का में डूब चला और जन उत्पादन होला जन प्रोडक्शन निकले ला तो वो एक बीघा के प्रोडक्शन जन ओपन फील्ड में रहेला तो सकेला जस्ती कर दी
1: जी।
0: तो एक हमें फायदा गनला जितना प्रोडक्शन होता रौनमा बा पर मित कागे गनला एक हमें जस्ती फायदा बात है और आमदनी हुई तो ज़्यादा मिला ना, लेकिन एक हमें हमने के चला ये भी सोचे कि जे जे ओपनिंग में ढुका था ओके चला सोचे कि क्वालिटी ढेर कोई सोचला ओपनिंग के क्वालिटी सबसे बेहतर है क्योंकि कैसे बोला था तुम्हें बोला जोली जोली लोकेला ना, हाँ तो हम बोलते देखा जोली जोली से वो कालीते नहीं बनेला, हाँ तो ये सब चला सोच समझ के निमन से हाय हाय एक हमें ठुके के और निमन से आज कर सब चीज जितना कैसे बोला बन पाँच कागे कोयल अपना ही वगैरह तो निमन निमन पोजिशन मिली।
1: निमन बात बोले हवा और वहाँ भी जितना जना हमने संगे जुड़ल हवा जा जैसे हमने जाने ला जाए गो गीत एग्रीकल बातें गो पुस्तक बातें जे खेती बाड़ी वो सब करत हवा तो ये जो गीत एग्रीकल बातें ओकरा निमन से देखब पहड़ब समझब तो सकब जा अपन प्रोजेक्टिविटी के अपन जो पैदावार निमन से करी। तो हमने बात करत है जब पेस्टिसाइड ग्रीन हाउस में हाइड्रो हाइड्रोपोनिक्स में तो अभी लेता हूँ जो बातें अभी सौजे हुआ था कल ही हमने गर्मी के मौसम ले पहुँच आप जा अंदर माने कि हाइड्रोपोनिक्स में जो टेम्परेचर बातें जो गर्मी बातें जब पेस्टिसाइड कर इस्तेमाल होला एगो कौन काटिव के फैक्टर है जो ओकर इस्तेमाल होला से वो अफेक्ट करेला साइड इफेक्ट्स कुछ कौन चीज़ होला
0: एक में ढेर चीज जुड़ल बातें जो प्रश्न पूछला बहुत चीज़ का में जुड़ल बातें पहला तब तापमान टेम्परेचर
1: जी
0: बाहर के आज तापमान करत हुए गनला 30 डिग्रीज तो अंदर एगो एगो इडोपोनिक में सकेला 7-8 डिग्रीज ज्यादा करे हम करे डिपेंड कहाँ पर ही हो आज आज गर्मी इलाका में तो सकेला जस्ती ये करी तो गंदा 7-8 डिग्रीज जस्ती करी तो सबसे पहला पेस्टिसाइड के भुला जा सबसे पहला तू आज एगो किसान हो तोहरा अपन एगो एगो तू एगो लासिया में काम कर रहे हो तो एगो चीज़ चला समझे कि इडोपोनिक में जस्ती गर्म करेला भीतर में और क्योंकि जस्ती भी गर्म करेला भीतर में तो जब अंदर तू काम करत हो आज दिन में जब धूप बातें काम करब तो अंदर और गर्मी करी
1: हाँ।
0: तोहरा जस्ती थकान महसूस हुई क्योंकि फाची गई तो ना उतना प्याचे बातें तापमान बातें प्यास लगी वगैरह वगैरह तो सकी फेप भी लगे तब सकी को ऑक्सीडेंट भी हो जाए तो ये सब चला सोचे कि रिस्क
1: डबल प्रिकॉशन तो चाहे
0: ये वो रिस्क है तो जो भी कहना इडोपोनिक में काम करेला लासिया में काम करेला ओके चला सवेरे जब धूप नहीं बा उतना तब काम करे के नहीं तो शाम के काम करे के ऐसे दिन के गन्ना उतना हो टेंशन नहीं रही स्ट्रेस नहीं रही
1: जी
0: है एगो चीज। अब पेस्टिसाइड के बात कर ला तो अब एक पर जुड़म आज दिन के काम कर रहे तो तापमान ज़्यादा बा और तू कहना फेब होते हो तो पेस्टिसाइड से काम कर रहे तो अब ओके लेके महकत हो गनला महकत हो तो थोड़ा ज़्यादा फेब लगी और हाँ। पेस्टिसाइड के प्रभाव ज़्यादा रही सकबा
1: कपार घूमी
0: सब हुई तो देखा दोनों मिला के जब तापमान ज़्यादा रहेला तो दिन है लासिया में चला है पेस्टिसाइड है दिन में नहीं डाले के
1: जी अच्छा
0: आए तो किसान की सेहत खातिर नहीं चाह लासे में आज थोड़ा पेस्टिसाइड के प्रयोग करके बाद

0: शाम के करिए ज़्यादा अच्छा बात है हाई एगो। अब शुरू में जन बात कर लिया करनी सा वह क्या मैं जोड़ी ला सा क्योंकि अब तक तापमान भी मानना है कर में
1: जी
0: शुरू में बनी सा एगो एनक्लोज स्पेस है। जब लेके पेस्टिसाइड अंदर प्रयोग करा तो कभी बोली ना महक सब रही था महक वाक मुझे महक वा तो वही हो पेस्टिसाइड के मोलिक्यूल है आजे आजे महक तो एक एगो संकेत है कि तुम्हारा तो मास्क उतना एफिकास नहीं बा क्योंकि महक था तो ये भी तो पेस्टिसाइड पर असर करी। अब बातें हाइजन एनक्लोज स्पेस पर हमने बोलनी था कि पर यूनिट एरिया के हमें ढेर प्लॉट ढूकेला ढेर पौधा सब लगाए तो आज बाहर में पेस्टिसाइड डालता टमाटर के पौधा एन पॉइंट लिमिट पर बातें तो एक कुछ पेस्टिसाइड स्पॉट यहाँ डाल एक कुछ वहाँ पर ही डाल दूर में बातें तो एगो लेस पास भी बा हाई लेस पास गंदा जो पेस्टिसाइड बा डिसिपेट करके खाते काम में आवेला एगो एनक्लोज स्पेस में एगो हाइड्रोपोनिक में हाउ सब पौधा इतना ले भीरी भीरी बा तो तोरा आज आज पेस्टिसाइड डालता तो सगड़ो डलते जाता यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर पर तो पौधा बाते और जब बड़ा हो गल बाता तो नहीं बुझाला कहाँ शुरू ला कहाँ कहाँ समाप्त होला समाप्ति कहाँ होला वो तक कहना कोई दीवार के तेलोगे ला एगो हरियाली दीवार के तेलोगे ला तो तू स्प्रे करते जाते हो कौन ची होता हो पर यूनिट एरिया जैसे बोला सा तो हर स्प्रेइंग जन बा ज़्यादा बात है तो हो लोड अब कोई टेक्निक्स बोला था एक टेक्निकल वर्ड के प्रयोग करता है हो जो लोड बा पेस्टिसाइड के पर यूनिट एरिया एगो लासे में वो
1: जस्टी
0: बाहर की तुलना से बहुत ज़्यादा बात है तब यानी कि हर जन कॉन्सेंट्रेशन बा भीतर में वो ज़्यादा बातें तो जब ये सब जब देख बहुत शुरू में बोलनी चला और ज़्यादा प्रिकॉशन लेके क्योंकि यहाँ पर ही कॉन्सेंट्रेशन पे से ज़्यादा बातें और उतना हवा वेंटिलेशन यानी कि अंदर में नहीं बातें तो वो कहते जब स्प्रे करा तो हाल ही से डिसिपेट नहीं होता वो गंदा गति गति गति वहाँ पर ही बा तो और तू भीतर में हुआ
1: जी
0: तो हर पर जस्टिस की असर करे तो हाई सब चलना पर कुछ हो लेके और एक आध गो चीज़ बा जैसे लिमिटेड जोन बा एगो जब स्प्रेइंग करा तो जब स्प्रेइंग करा तो हाई एगो लासे हमें तने बोले हरियाली दीवार कहते बा जब स्प्रेइंग कर ला तो स्प्रे ड्रॉप ले तो पतरा पतरा नहीं बात छोटा छोटा नहीं बात तो जब डाला तो कहते कहना लासे में वो लिमी जीते कहते मोते हो जब लिमी जीते कहते मोते हो तब वो कैसे और जो सर कॉम्प्लिकेशन से किया है
1: मैंने कि जब काम करत हुआ हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक में तब बहुते चाहेला प्रिकॉशन लेवे के जैसे बोले तो वह मास्क चाहेला पहने के जिन कॉम्बिनेजों अपन सेहत वे के चाहेला ध्यान में रखे के तो अभी जितना जना हमने के सुनत हवन जा हमने जानी ला जा ढेर जना अपन खेत में हवन जा हाइड्रोपोनिक में भी काम करत हुआ तो अपन प्रिकॉशन लेते चाहिए
0: भाई सब अच्छा बात बोला क्योंकि ढेर कोई हमने के करना दिमाग में
1: जी
0: सकेला कोई सूचित हो कोई जानत हो मैं ढेर कोई सकेला ऐसे सूचित हुई कि बाहर बाहर जैसे कंडीशन बातें जैसे काम करीला तो हमारे को हाइड्रोपोनिक बात हम भीतर भी में औसन ही काम करब तो गलिए दिन के वो पेस्टिसाइड डाल देनी भीतर भी औसन कहते हैं आलेज है ऐसे डालते हैं नहीं होने
1: बिल्कुल नहीं
0: नहीं नहीं ऐसे नहीं चला करके चला समझे कि तू एगो ऐसा एगो जगह में हुआ जोन में वेंटिलेशन कम थी बा जोन में एनक्लोज बातें जोन में और जितना पौधा बातें ज़्यादा बातें वो कहते पेस्टिसाइड के लोड जो डाला तो जस्ती बातें तो ये सब चलना सोचे के
1: तो पेस्टिसाइड के बात भी करत है जाए तो हमने के बताओ पेस्टिसाइड खाली एक कालीते नए बातें एक माने कि हर जो चीज़ डालत हुआ अपन हाइड्रोपोनिक में जो रुपाई करत हुआ तो हर चीज़ खातिर एक के जो सोल्यूशन हमने नाम ब्रांड सबने बोलत है पर उकर चुनाव माने कि उकर चुनाव कैसे चाहेला करे कि कौन सब्जी खातिर कौन पेस्टिसाइड पलडामून खातिर ई चाहेला हौ खातिर हौ चाहेला कैसे होला चुनाव कौन कौन बात के ध्यान भी चाहेला रखे के
0: सबसे पहला तो गन्ना एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग ही करके बा तो वो जैसे बोला जा वो अंतिम एगो योजना हाँ। अगर गन्ना जो
1: इंटीग्रेटेड
0: वगैरह वगैरह तब एगो समस्या आल तब प्रयोग कर बने तो ऐसे चला प्रयोग नहीं करे के

0: आप गन्ना प्रयोग करे के बाद सबसे पहला तो चाला आइडेंटिफाई करे के कि जोन पिलुआ बाटे वो कौन पिलुआ है
1: जी,
0: जोन बीमारी बाटे वो कौन बीमारी बाटे, तब ओकर आधार पर एगो निर्णय एगो एगो जांच करे के, या जैसे शुरू में बोला हमने के गिदाई कोलबा देमिल जीसेफ के पुस्तक, तो ओकर में देखे के कि ई पिलुआ या ई बीमारी खातिन कौन कौन गन्ला अल्टरनेटिव बाटे। ठीक, अब जब इतना अल्टरनेटिव बाटे तब ओकर में थोड़ा चाहला सबसे जोन सेफेस्ट बाटे, जोन सबसे गन्ला लेस टॉक्सिक बाटे, तो ओकर ओकर चुनाव करे के ओके चुनिया। अब जब लेस टॉक्सिक बोलता है तक फिर से हो एनक्लोज स्पेस में है ऐसा, तो लेस टॉक्सिक के मतलब नहीं है कि वो पॉइजनस नहीं है, लेस टॉक्सिक गन्ला उतना पॉइजनस नहीं बाटे, लेकिन एक वो तो एफिकास हुए रही तो हर समस्या तो सुलझाए खाते, लेकिन दूसर पौधों के तुलना से गन्ला उतना किसी वजह से उतना दौजरे नहीं बाटे, लेकिन एक मतलब किसी ने बताया कि दौजरे नहीं बा relatively speaking ganla utna dans zgane
1: bate
0: dans sa grube ab itara hal ganla less toxic e lekin ibi chala dikhe ke ki ego chala dikhe ke ki hai samasya khatin ego dusra alternative bate jon bio hoy kyunki bio ke poji sab bio nahi kono kono bio ke poji wo bhi khatarnak rahela
1: acha
0: ha lekin aaj alternative ba bio ke ta bio ke chala ta ओके अपना बच्चा ज़्यादा अच्छा बा
1: जी,
0: हाँ खासकर जैसे जो इन ब्यू रहेला प्लांट एक्सट्रैक्ट के नेचुरली नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट के ये सब करना ज़्यादा अच्छा रहेला
1: जी,
0: कम टॉक्सिक रहेला
1: जी,
0: तो आज हाई सब श्वावन बा तो हम बोलती लेस टॉक्सिक पर जाके और आज अल्टरनेटिव बा एगो पोजी ब्यू के जो प्लांट एक्सट्रैक्ट वगैरह के बातें तो वो सकल लाए चुने।
1: अच्छा, जब से बात कर रहा था पेस्टिसाइड के बारे में बोला था चाहेला हाई प्रिकॉशन वाले हुए के तोहर देखे में धरला हमू एगो किसान है खेतीहर है तो हमार खातिर कौन चीज जोन बातें कौन पहलू के चाहेला हमरा प्राथमिकता देवे के और माने कि प्रायोरिटी जोन बातें कौन चीज चाहेला हो के अरे काहे
0: लासे में काम करे पेस्टिसाइड खाते हैं। देखा सबसे आवश्यक बात है स्वयं के सेफ्टी
1: जी,
0: अपने आप के नियमन से देख रेख करे के, तब अभी गन्ना आज ऐसे हाई नजरिया से समझ देखे कि पेस्टिसाइड के भुला जा
1: जी,
0: चहला किसान के अपन अपन सेफ्टी देखे के या फिर कैसे बोला सा वर्कर सेफ्टी या वर्कर वेलफेयर ऐसे चला सोचे के, क्योंकि एक पर कानून भी बा कैसे एगो एगो कानून बा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट आज ओका में देख बा तो में अनेक प्रोविजन बातें कि चला पहला वर्कर सेफ्टी देखे कि यानी कि स्वयं के भी हुई में गिरा
1: जी
0: उस समय तक तू भी काम कर रहे थे ना, तो पहला बात है वर्कर सेफ्टी, तब सेफ्टी जब देखब तो जैसे बोलने कैसे अब दिन दहाड़े जब धूप बहुत बात तब ने बोला हमार कम करवा के जाके मैं काम करे के या हम इंटर नहीं जा काम करे के, हाँ एगो चीज। दूसर चीज कि माफ कीजिएगा, दूसर चीज बाकी भीतर काम करे के बा सेफ्टी तब बोलनी हम तो समय देख नहीं सा दिन सुबह बाकी दिन बा, लेकिन दूसरा चीज कौन सी बा PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हाँ तो अब चाहला आज सेफ्टी ही पर है लेकिन एक दूसरे लेवल पे तो चाहला हमके नियमन से इक्विप रह के ताकि हम सकम नियमन से प्रिकॉशन ले, और जैसे आगे में बोलनी भी अंदर तो एनक्लोज स्पेस पर चाहला ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन ले के। हाँ, अब सेफ्टी बगल हमने देख लेनी सर, अब दूसरी चीज बा अब आए हमने के जो कार्य जाते से करे तो कार्य चाहला जल्दी से कर दे के ताकि ढेर घड़ी कम से कम समय भीतर में बिताएबा स्प्रेइंग खातिन कम से कम समय, तो वो लेके कर दिया तो स्प्रेइंग के जब बात बोलनी तो जैसे जैसे बोलनी सा चला लेस टॉक्सिक पेस्टिसाइड चुने के और आज हो सके तो आज मिली तो चला से बीओ के प्रयोग करे के तो अपन सेहत खातिन ज़्यादा अच्छा रही।
1: अच्छा, अभी एक शब्द इस्तेमाल कर ला स्प्रेइंग। आजकल हमने जहाँ देखा था, जहाँ कारों में हो कि हाइड्रोपोनिक्स में, ढेर जो खेतिहर हुआ वो लोग ड्रिप इरीगेशन करत हुआ, जहाँ ड्रिप अब जो ड्रिप गुता गुत करत हुआ ऊ में अपन पेस्टिसाइड वो सब डालत हुआ जा, एक बारे में कौन चू बोलबा ई रिकमेंडेड है?
0: नहीं, ये एगो बहुत
1: भोजन से तो गुतागुत निमन प्रैक्टिस है, तो वही में हम अपन पेस्टिसाइड डालत है, तो कौन कौन लावताज कौन डिजावताज बाते?
0: नहीं, लावताज नहीं बाते क्यों? लावताज अकेला एक आदमी गन ला वो अपन लावताज दिखता और कौन लावताज नहीं बाते। गुतागुत बनल बाते सबसे पहले तो गुतागुत निकला रहल ओकर ओकर आविष्कार जब हो रहल तो ऊ रहल गन ला पानी के जड़ी लगे पहुँचाए के
1: जी,
0: ये रहा गुतागुत। तब पानी तो जाता, तब बाद में गनला ऐसा ऐसा फैचिलीजों के निर्माण होल जो सकबा फैचिलीजों तभी जड़ी लगी डाल ला ना, तो पानी में मिला के तो फैचिलीजों सकबा भेज दे तो गल फैचिगाशो, तो गुतागुत ये पानी और फैचिलीजों दोनों के पहुँचाए खातिर ना जड़ी लगे, एक से जस्ती करे खातिर नहीं। अब जैसे बोला कोई कोई सकेला ऐसे ऐसा मोवेज प्राचिक बोला सा मारू जो योजना बातें अपना होता है इन बिल्कुल नहीं अच्छा बातें, एक अनेक कारण बातें
1: मान कि फायदा नहीं से कुछ ने बोला गल बातें कि पैसे से चाहे ला डाले के नहीं, वो लोग अपन से गलत हवन सा।
0: हाँ,
1: तो कोनो चेक होला फायदा नहीं से कोनो ऑफिशियल जालन सा देखे लन सा कि कैसे
0: कैसे जानवा कुछ कतवन जा,
1: जब एगो सर्वे कुछ करल जाला
0: आज गेते का जब रास्ता में जब चालक हो मोटर के लेके जाते हो आज 60 किलोमीटर पर ए लिमिट बाते 100 किलोमीटर पर ए करत हो वहां एगो रडार नहीं होता कोई नहीं जाने 100 किलोमीटर पर ए करत हो ना, तो हम यो के जन हमने के जन ऑफिशियल लोग हो जा जालन जा आई जैसे बोला सा एडवाइजरी विजिट्स करे प्लांटे लोग के एनकाडरे करे समझाए वो लोग के जो समस्या बा सुलझाए ये सब कह लन जा, लेकिन जब एगो इडोपोनिक में जाइबा तो तोरा वहाँ कौन सी लौकी तोरा लौकी या तो अगर एगो पौधा में कोई समस्या बातें तो सिम्पटम द्वारा तोरा दिखी या तो तोरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लौकी तो तू नहीं जानबा कि ओकर सिस्टम गुतागुत में कौन सी जाता। अब जो किसान ऐसे करता वो भी तो कहने आ तो आके नहीं बोली, जहाँ तो ढंडोरा नहीं पिटी की हम देखा ऐसा नहीं मोबाइल बातचीत करते हैं कबू नहीं बोली, तो हाई बिल्कुल नहीं चाह क्या है नहीं चाह देखा हम तो अनेक अनेक अनेक हम तोरा सकब अनेक
1: कारण
0: कारण बोले, हम तोरा एगो बोली ला जो सबके चला समझे कि खासकर ग्राहक लोग के गुतागुत बनल बाद जैसे बोलनी पानी के पहुँचाए के जरी लगी
1: जी,
0: बाद में जब फैचिलीजों सोल्यूब के ओकर में डलनी जा तो फैचिगाशो होगा, लेकिन फैचिलीजों भी खाद भी तो जरी हुई लगे डाल ना
1: जी।
0: जब गुतागुत में एगो आदमी आज ओकर में पेस्टिसाइड मिलावा था तो वो पेस्टिसाइड कहाँ जाता जरी लगे, तो जो हमने जो जरी बा वो तो जितना चीज बा अपन जरी द्वारा सोल्यूशन के रूप में ही ची
1: जा,
0: तो अभी कुछ था पेस्टिसाइड के कुछ हो कहाँ गल पौधा के ओकर शरीर में अंदर में अभी कुछ बा, जब स्प्रेइंग हुआ तब बाहर से स्प्रेइंग हुआ तब जब अनेक प्रकार के पेस्टिसाइड है कोनो कंटैक्ट के है एगो दीवार गए थे कहना चिपकल रहला कोनो सिस्टेमिक है कोनो लोकल सिस्टेमिक है, हमें जब सिस्टेमिक हो रहा था जहाँ तहाँ लेके ढुकेला सा डिपेंड कौन निर्भर केला कौन कौन पौधी है, लेकिन हबी जन जन हो जन जैसे जैसे जंतु उदाहरण दिला उसे हो पेस्टिसाइड हो पौधा में चारों ओर जाए
1: वहाँ दे उखरा
0: माने नहीं गंदा एगो अंदर में गंदे गंदा जब बा तब एक में समस्या कौन सी बा जब विशिष्टता को अंदर बाते तब जब एगो चीज के नाम प्री हार्वेस्ट इंटरवल, तब जब अपन फल गंदा टमाटर के होकर फसल कर ला तो विशिष्टता को में बाते तो प्री हार्वेस्ट इंटरवल ला जो जो ओकर ओकर कैलकुले है कब से स्प्रिंग कर ला वो कैलकुलेट नहीं कब से तू फैचिगाशो में डाल
1: ला,
0: हाँ बहुत फर्क बातें तही तो क्या बोले
1: लॉजिक
0: लॉजिक बात है कि जब एगो आदमी औसन औसन टमाटर के फसल करी तो भीतर में होकर में पेस्टिसाइड हो
1: जी,
0: तो ये तन को नहीं चाहते
1: जी। तो हमने यही मांग करब जा कि जितना कभी खेतीहर हवन जा ऊ जो प्रैक्टिस बाटे ऊ नहीं करे

0: करके ड्रिप इरिगेशन करत हुआ तो खाली पानी हुए डाले के और जब फैसिलिजम यानी कि जो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करत हुआ कीटनाशक तो इस्तेमाल दूसर तरीका से कर दिया। अभी भाई शंभू हमें सोशल मीडिया पर एक चीज देखा था जा फोगर्स एकर इस्तेमाल हुआ था ग्रीन हाउस में कैसे होला हाइड्रोपोनिक्स में एकर इस्तेमाल होता ई कौन सी है एकर बारे में तनी सुन बताओ।
1: ई फैशन चल रहा ना लेकिन ई भी हम अपन अनुभव से हम कोई के नहीं कमोदे करब कि एगो ग्रीन हाउस में फोगर के प्रयोग करे के ई भी एगो मारू प्रैक्टिस बात है काहे नहीं चलना प्रयोग करे के
0: कौन चीज ऑपरेट करे लवंसा
1: दो प्रकार के है एगो है जोन बैटरी से चलेला और एगो हो जोन डीजल से चला चलते हुई फ्यूल से चलते हुई।
0: अच्छा
1: दो काहे ने चला हम स्प्रेयर ने बताए मोटोराइज स्प्रेयर हमने फोगर के बताए सब अंदर में फोगर काहे ने चला प्रयोग करे के देखा शुरुआत में बोलनी कि एगो एनक्लोज स्पेस है
0: जी
1: स्प्रेइंग ही करा तो नो जन एगो एगो स्प्रेयर नॉर्मल बाते या एगो मोटोराइज स्प्रेयर हो हवे से गन्ना ढेर मोलेक्यूल सकेला सस्पेंडेड रहे एयर में क्योंकि एनक्लोज स्पेस पर वहाँ से लाशों कम थी बा और तो के रिस्पिर कर बा एगो फोगर जन है ओकर जन ड्रॉपलेट साइज ड्रॉपलेट यानी कि जब स्प्रेइंग तो हो जन निकला था नजर में से ओकर ड्रॉपलेट साइज एकदम से पतला रहेला लावा पे कहते रहेला एगो फोगर प्रयोग करब लावा पे से धुआं के लिए अंदर में रहे हो जन मास्क डालत हो प्रयोग करत हो है ज्यादा तक जितना किसान लोग प्रयोग कर एक ऐसा मास्क वन ये फोगर खातिर नहीं बनल बा तो जब सांस लेते हो लेते हो अभी ग्राहक लोग के भुला जा अभी हम जे जे जे स्वयं जे काम करता ग्रीन हाउस ओकर हित में हम बात करते हैं
0: जी
1: तो जब सांस ले होते हो तो कौन चीज रेस्पिरे करे तो हवे रेस्पिरे करे तो ई नहीं छा बात है। दूसर चीज है जन जन इतहोल स्वास्थ्य सेहत के बारे में दूसर चीज हाउ जन ड्रॉपलेट साइज बोली लावा पे कहते बा तब वो लासेया में गन्ना रही तब गते गते गिरती रही तो लासेवा में अभी कोई लिमिजिते कहते हो जाए
0: जी
1: तो तू स्प्रेइंग करे तो गन्ना सकेला एगो एगो बीमारी के खिलाफ या एगो पिलुआ के खिलाफ ओका ओका मैनेजमेंट करे खातिर अभी कुछ कौन चीज होता जब लिमिजिते जब बढ़ जाता तो सकेला दूसरा समस्या के बुला होता
0: जी मानी कहाँ हमने कहाँ कौन चीज करे जाता है ऐसा और कहाँ हमने एक बीमार हुआ था ऐसा तो कौन रुपाय कर सा कौन पैदावार कर सा कौन पॉजिटिविटी हमने आगे बढ़ा जाता
1: है ये सब ये मारू प्राचीन अरे वो चीज बा तू जब एगो फोगा के प्रयोग करता है डीजल के मान ला डीजल के तो गाड़ी आज चला गाड़ी चलावे ला ना लाइसेंस कौन चीज की गाड़ी बात है
0: लाइसेंस
1: पीछे में बोले साफ में है ना काहे पास के सिस्टम कॉम्बिशन है तो कॉम्बिशन जब होला एगो बोला था एग्जॉस्ट पाइप तो एग्जॉस्ट में से हवे जब धुआं वगैरह निकलेगा कभी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तो कोई लासे में हो एनक्लोज स्पेस में हो डीजल जरावट हो या फिर सकेला गैसोलीन के हुई जरावट हो तो हाउ जन फोगा बा ओकर में को एग्जॉस्ट नहीं बाते हाउ एग्जॉस्ट में से कौन चीज निकलता हाउ एग्जॉस्ट में से तो हवे निकलता ना कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह तो तोरे प्रेशर में डाली तोहर सेहत खातिर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं अच्छा तो एगो एनक्लोज स्पेस में हो और सक बोले जेजेल गाजोलिन के जरावत हो तो ओकरो गनला लिफे परेला है जब फोगा के प्रयोग करत हो तो हो जेजेल गाजोलिन सकेला है डिपोजिट होत हुई है सब पौधा फल वगैरह पर वो भी नहीं चाह
0: जी
1: देखा कितना चीज
0: कबो कबो जो चीज बोलत हुआ डरावत हुआ पर
1: नहीं हम डरावत नहीं है
0: सच बात बा
1: हम संकेत करते हैं सूचित करावत है
0: जी तो चाहे ला निमल से
1: पूछो हाई सब चीज ढेर चीज ढेर कोई नहीं बोलेला
0: जी
1: हम बोलते हैं अब जेके मन होई हम तो बोलते हैं सब के सुने के
0: जी
1: लेकिन जेके मन होई सुने के तो सुना जा
0: अच्छा एगो एगो प्रश्न आबा है जा परी एगो कहावत आजकल बोलल जाता कि कई जना के कैंसर की बीमारी हुआ था जो हाइड्रोपोनिक्स में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल हुआ था एकर पर कौन मत बातो हर
1: देखा अभी तक मॉरिशस में ऐसा नहीं को डाटा नहीं बाते स्वास्थ्य मंत्रालय के ओर से जो इन सकी स्पष्ट रूप से बोले कि देखा जो कौन से होता

0: आ उ पेस्टिसाइड से होता लेकिन लेकिन सब कोई जाने ला जे जे जे इसेक्टिया में हा जे जे जे इंडक्टिया बा जे कोई भी साइंटिस्ट सब कोई जाने ला कि ढेर ऐसा ने पेस्टिसाइड हा जो या तो सस्पेक्टेड हा कार्सिनोजेनिक या तो फिर कार्सिनोजेनिक प्रूवन हा ता एकर अर्थात कुछ होल कि पेस्टिसाइड एकाद गो पेस्टिसाइड ऐसा बात है जो सकेला ये सब गंदा बीमारी के आगमन कैसे बोला बढ़ावा दे
1: जी
0: हाँ कॉन्ट्रीब्यूशन और लोग के नहीं बोलते हैं कि डायरेक्टली लिए बात है डायरेक्टली कैंसर क्रिएट करेला लेकिन ऐसा ऐसा प्रोड्यूस बात है जो सकेला अपन कॉन्ट्रीब्यूशन अलर्ट हुई ऐसा ऐसा बीमारी पर
1: जी
0: चाहे ऐसा ऐसा जो प्रोड्यूस नए प्रयोग करे के ढेर ऐसा प्रोड्यूस मार्केट में जो सस्पेक्टेड कार्सिनोजन है चाहला निमन से देख रहे के सोच समझ के ऐसा ऐसा चीज के प्रयोग करेंगे
1: अच्छा हमने बात कर रहे थे जा जिन खेतिहर होवन जा खास और उ लोग जो टमाटर के पैदावार रुपायु सब करे थे होवन जा अक्सर उ लोग देखे लन जा कि टमाटर पर डामोन के जो लापुआ बाते उकरा तनी सुन भूरा भूरा रंग के कोनो दाग कुछ हो रगल बाते एक बार में तनी सुन बतावा
0: हाँ एगो पाच कहते हैं दिखाई दे ला लेकिन एगो बीमारी नहीं है क्योंकि एगो बीमारी आज रात देखा एगो साधारण से साधारण रूप से एगो एगो एगो टेक्निक देला जाने खाते हैं बीमारी है कि नहीं आज बीमारी हो तो एगो लुगा लेके भेजा के ऊपर पर पासे कर
1: फोटे
0: कर तब जाके दूसरा टमाटर में छुआब तो एक दो दिन के बाद ओकरो में बीमारी चलाए था एक टेक्निक खोल जाने खातिर बीमारी है कि नहीं लेकिन जो तू बोला तो आज हम ठीक से समझाता है तो ये को बीमारी नहीं है एक एकाद गो तरह की कोई कोई के लाशे में जो हो जो पाच कहते दिखेला वो कौन जो था उस अकेला वो किसान को कोकटेल के प्रयोग करत हुए या फिर पेस्टिसाइड के डोज ज़्यादा मात्रा में डालत हुए तो वो जब स्प्रे कर ले बा तो अंदर में गर्मी रिएक्शन होला से एगो फिटोटॉक्सिसिटी होला फिटोटॉक्सिसिटी से जैसे बोला केमिकल बर्न तो केमिकल बर्न से तब पाच होला लेकिन जैसे बोली कोई भी किसान के ऐसा एगो चीज दिक्कत हुई तो एगो सिफोन लेके भिंजल सिफोन लेके खाली इधर से उधर कर दिया फोते करके बीमारी हुई तो उधर भी हो जाए नई आज बीमारी नहीं लोकल उधर हो तो इस संकेत करता तू जन जैसे तू पेस्टिसाइड डाला तो
1: तरीका वा बाते
0: अच्छा वाले मारू बाते चला निमन से पीछे देखे कि कैसे करते हो
1: अच्छा भाई शंभू हबिया
0: या तो फिर हमने के कोनो कॉपिक सेंशन के ऑफिसर जी से बोलिया कुछ बा आगे देखिए
1: अभी तू एगो एगो बात बोल रहा प्री हार्वेस्ट इंटरवल अभी एगो और शब्द बा री एंट्री इंटरवल ये दोनों के मतलब तनी सुन समझावा और ये दोनों इंटरवल्स के बारे में कौन जानकारी चाहे ला जाने के और इनकर पालन कैसे चाहे ला निमन से करे के
0: दोनों में अंतर बातें
1: जी
0: जैसे पहला के लिए सर एगो के नंबर री एंट्री इंटरवल
1: जी फिर से
0: हाँ इस तोड़ दे बाय के री एंट्री कब फिर से अंदर और इंटरवल
1: माने कि पेस्टिसाइड लगाए के आगे और बाद में कैसे
0: बाद में इंटरवल यानी कितना समय बाद री एंट्री कितना समय बाद सकलाई फिर से प्रवेश करे
1: जी
0: अब गन्ना तोहर पहला ओपन फील्ड के लासा तब हाइड्रोपोनिक में लासा गन्ना तोहर एक ओपन फील्ड बाहर में एक खेत बा ओकर में एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग कर लो तो ज़रा तक देखबा लेबल में चाहे ना रहे के ये इन्फॉर्मेशन पेस्टिसाइड के लेबल पर पढ़बा तो ओकर में लिखल रहा है री एंट्री इंटरवल अब सकेला ओकर में लिखल रहे 24 आवर्स
1: जी
0: या लिखल रहे 48 आवर्स
1: ये हर जो पेस्टिसाइड जो जो जो किनेत है इधर ला हम गए है कुछ किने हमारे पलडामुन खातिर न तो कोनो और सब्जी उस सब में लिखल बात
0: चाहे ना रहे के कैसे बोलनी कानून मानो
1: और जे धर ल नहीं निकल बाते तो हम सक्का बोले हो जो
0: एक ऑफेंस
1: है
0: क्योंकि ऑफेंस के अनेक कानून के नीचे गिरे हम खाली एक कानून बोला ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट जैसे बोलनी ओकर ओकर ओकर पर निभा कर है कानून पर तो चला वो ओकर सेफ्टी देखे के तो अब कनला एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग होलबा ओकर में चाहत रहे के 48 आवर्स लेकिन नहीं लिखल रहल तो अब पेस्टिसाइड के प्रयोग करबा तब

0: आधा घंटा के बाद जब बल्ब जे कम करवा के जा वहाँ घास निकाला तो कुंची बोला तो हाउ जन कम करवा बातें या तोहरे तू ही गैला तो कम करवा बातें तो ओकर स्वास्थ्य के तू बिगाड़त नहीं हुआ
1: जी
0: हाँ लेकिन
1: जानबूझ के
0: अब हाई इन्फॉर्मेशन तू वर्कर के नहीं दिला हाँ। कम करवा के नहीं दिला तो यहाँ पर ही कुंची हुआ तू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के खिलाफ गैला क्योंकि वर्कर सेफ्टी में फेल हो गैला
1: तो हम
0: और दूसर कानून बातें जैसे डेंजरस केमिकल्स कंट्रोल एक्ट बा जो का लेबलिंग बोलेला कैसे चलना करे कि सकेला ओकरो अब एगो ऑफेंस हो पर ही करा तो
1: कॉन्सिक्वेंस कौन सी हो लाएगो फाइन चाहेला भरे के जुर्माना
0: जुर्माना सकेला रहे हो रहेला और तब फिर से जला सकता कौन सी बजाने से आप गाना 48 आवर्स ही खलबा एक जना एगो स्प्रेइंग कर दिले बा पेस्टिसाइड के
1: जी
0: तो एक अर्थात कौन सी हो यानी कि जब स्प्रेइंग हो गल अब कितना समय बाद सकब फिर से वो खेत में प्रवेश करे
1: जी
0: 48 आवर्स आज लिखल हुई तो 48 आवर्स बाद 24 आवर्स लिखल तो 24 आवर्स बाद हाई
1: चाहेला
0: हाँ चाहेला अमल करेगी कर पर हाई ऐसे वालों में कहाँ हो चुकी है तो कि वन का था तो कि चाहेला वो खेत में नहीं डूके के आप इधर
1: जो हो पानी आए तूफान कुछ हो नहीं चाहेला
0: नहीं चाहेला तो हर अपन
1: सेफ्टी
0: खातिन अपन सेहत खातिन नहीं छाबाते
1: जी
0: अब इडोपोनिक पर ला सा वो जैसे बोले सतह वो एनक्लोज स्पेस में बात है ग्रीन हाउस जो ग्रीन हाउस में बात है तो अब री एंट्री इंटरवल कैसे अमल कर जाए तो री एंट्री तो चिकेट लेबल में तो लिखल हुआ कर में 48 आवर्स देखा ओकर में लिखल हुआ तो चाहला अमल करे के ना लेकिन हम बोलती ओकर से ज़्यादा चाहला कैसे बोला इंतज़ार करे के काहे कि जहाँ तो बाहर ओपन ओपन फील्ड में थोड़ा धूप धूप बाते जो पौधा पर कहना धूप की किरण गिराता यूवी रेज जन बाते वो भी आवता फिर बा वेंटिलेशन आए राशों तक में बाते अब अंदर क्योंकि हो प्लास्टिक कवर बा और धूप के जो किरण बा कटा जाला तनी सुन अब सकेला कोई कोई सहलों भी धावत हुए गर्मी के मौसम में तो और कटा जाए यूवी रेज जन बा हो जन प्लास्टिक जला ऊपर यूवी ट्रीटर अंदर यूवी रेज उतना नहीं आवेगा ठीक तो क्योंकि अब ये सब कंडीशन हो गल बातें अंदर में तो जन हो पेस्टिसाइड डाल बा वो हाल ही से नहीं टूटेला वो हाल ही से देगाड़े नहीं होला वो हुए रहला अब एनक्लोज स्पेस जैसे बोलनी तो निमन वॉन्च राशों नहीं बातें गति गति गति गति सेटल हुई डिसिपेट हुई तो वो कारण से आज इधोपोनिक तौर बातें लासे बातें आज चिकेट में लिखल 24 आवर्स तो हम बोलती दुबले कर देखे 48 आवर्स ये अपन से एगो एगो एगो मांग करता है चिकेट में जो लिखल बात होता है लिखल बात है हम अपन से बताएं ये सब कारण खातिन चला ज़्यादा इंतज़ार करे कि 24 आवर्स आज तक दो दिन आता कर लो दो दिन और इंतज़ार

0: करके प्री हार्वेस्ट यानी कि जब पेस्टिसाइड के प्रयोग कर देला तो कितना समय छला तोरा इंतजार करे के हार्वेस्ट करे से आगे
1: जी
0: फसल करे से आगे, यानी कि गनला एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग करला ओकर में लिखल बा प्री हार्वेस्ट इंटरवल 7 days, यानी कि 7 दिन के छला इंतजार करे के, तो ओकर मतलब कुछ होल अर्थात का होल आज एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग कर ली लेबल में खलवा 7 दिन के इंतजार करे के चाहलाम के 7 दिन के अंदर फसल नहीं करे के 7 दिन जब पूरा हो जाए तो 8वां दिन पर जाके फसल करब जा ठीक। अब इधो पुनिक के बाद होल तब लेबल पर तो लिखल बा 7 दिन तो कानूनन रूप में 7 दिन तो लिखल बा 7 दिन तो चाहला इंतजार करे के, लेकिन फिर भी हम एगो मांग करती अपन ओर से कि देखा जैसे री एंट्री इंटरवल के हम समझली भीतर में यूवी लाइट उतना नहीं आवेला धूप उतना नहीं आवेला वगैरह वगैरह, तो उस कारण से आज 7 दिन निकल हुए 3 दिन निकल हुए 4 दिन निकल तो कुछ दिन और
1: इंतजार
0: कर। हम सकब तोरा गाँव से बोले कि 7 दिन आज 7 दिन निकल हुए हम 8वां दिन पर एगो सोच ले तो कर में
1: तो इतना चीज अभी बोल ले हवा हाइड्रोपोनिक्स के बारे में तो ऐसा कोनो आप कोनो सोल्यूशन मिली बाटे जोन से जोन पेस्टिसाइड के इस्तेमाल अंदर नहीं हुई ऐसा हो सकी
0: ये निर्भर करी किसान कैसन मैनेजमेंट प्रैक्टिस आना था अपन लासे में देखा बहुत बहुत जो ऐसा पिलवा है वो आवेला क्योंकि लासे में सकेला कोनो नेट में कोनो छेद बा प्लास्टिक में कोनो छेद बा या डबल डोर सिस्टम ने बा वगैरह वगैरह जेकर जे निमन से कनला नेटिंग बाते डबल डोर बाते सकेला ओकरो होत हमने बताए नहीं लेकिन ओके कम होत हुए। फिर जो बीमारी आवेला वो ज़्यादा तक कनला हो लिमिजिते वगैरह से आवेला तो अंदर में बहुत गर्मी रहला वह चिलाशो ना निमन ने बाते आय आशो निमन बाते। अब जब डेंसिटी जन बोल जा कितना पौधा डाला तो ढेर डाला तो कैसे एगो साग को पीत में गना 4 गो टमाटर मैक्सिमम ला के 6 गो डाल देव तो 5 गो डाल देव तो बहुत पौधा हो गल ना वहाँ पर ही। और जब बहुत पौधा रहला था पौधा भी ट्रांसपीरे होला जब ट्रांसपीरे तो लिमिजिसे जस्ती हो जाला तो कारण जस्ती बीमारी के आगमन देवेला तो एक सब छोटा छोटा छोटा मोटा चीज जैसे पर जब आज अमल करब तो बीमारी और पिलवा जो ना कमती हो जाए। फिर बा जैसे बोला सा लाथाप वगैरह सानिताशों बाँचे कैसे देखा तो देर पत्ता बाते टमाटर की तो उसे जंगल कहती नहीं चलना छोड़े कितना लासे में हमने जाए लासा देख ला सा अंदर लासे गंदे को जंगल कहते हो कल बाते तो उसे नहीं चलना छोड़े कि चला प्रूनिंग वगैरह करे कि हो जन लीफ लोड बाते जन पत्ता के होकर कौचते बाते होकर चला ओके कमती करे कि तब जाके निमन जैसे आय राशन हो जैसे निमन हो जाए। अब आय राशन जाते निमन दे रहता चला एक्सट्रैक्टर के प्रयोग करेगी। फिर बा लाथाप वगैरह ये भी सकल आय प्रयोग करे अनेक प्रकार के अनेक पिलुआ खाते लाथाप बाते वो भी सकल आय प्रयोग करे। अब आखिर में आज कैसे शुरू में बोलनी कुछ पेस्टिसाइड प्रयोग ही करे के बाद तक बा जा एगो जो प्लॉट एक्सट्रैक्ट से जो बियो पेस्टिसाइड जैसे बोला सा ओकर ओकर प्रयोग सब जा करी
1: तो एकर से हमनी काजे नहीं सकेला। अब जुन जुन कंस्ट्रक्शन होला जुन स्थापित होला जुन हाइड्रोपोनिक्स तोहर देखे में चाहेला बदलाव लाने के जो नेट बाटे सकेला अभी स्कीम्स कुछ हो बाते फायदा नहीं से जैसे बोले तो आय राशो खातिर सकेला आजकल हमने देखा था ऐसा कामेगा बाते ओपन फील्ड में देखा था ऐसा अंदर आय राशो ए सी चाहेला डाले के एक्सट्राते जैसे बोला था वह कुछ हो बाते स्कीम्स
0: शेल्टर्ड फार्मिंग पर अपन एगो स्कीम बा और हमने गाइडलाइंस भी निकल ले हैं जा कि देखा चाहेला डबल डोर सिस्टम वगैरह रह के ये सब जे एप्लीकेशन करता वो गाइडलाइंस में बात है हाई एगो। अब अलग रूप से जे भी हमने लगे गनला सरकार द्वारा जो स्कीम बा कुछ लाभ उठाए के तो अब परी लोग के दुगो कोर्स करे के एगो इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोपोनिक्स ताकि जो ओपेरेशन जो जितना भी काम बा करे के हाइड्रोपोनिक के निमन से करियन ताकि जैसे बोल रहा हो सब कोई तरह नया ठगा है कि चला एन गुटागुट में जहाँ पे सिस्टम वगैरह डाले के सब चला ओकर में तब सीखब और एक दूसरा एगो

0: training ba or use of pesticides or mandatory ho ga ba obligatory ba aje khoje to scheme se la buthai ke ta chala ubi join training ba ubi chala kare ke tab side me jaise tu bola extract wagera wagera ta sab alag alag dusra scheme ma te jaise purchase of agricultural equipment ta aje हमने क्या के बोल बजे से पास देखा तो हर जो लास्ट में वॉच लाशों ने ठीक बातें तो तरह मन बाइक का गो लेकिन मत डाले के जिसका द्वारा आए लाशों के जैसे निमन हो जाए तो लास्ट में तो सब बजा उस स्कीम द्वारा उसे लाभ स्कीम के लाभ उठाए और उसका द्वारा खरीदारी ऐसा लेकिन मौके करे
1: जी
0: सक बचा कर
1: तो चला माने कि सोल्यूशन बा और वोलोंटे वो चाहेला हो के तो जितना हमने संगे जितना जना हमने संगे जुड़ल हलन आज की चर्चा कार्यक्रम है जो परी समाप्त होला
0: वोलोंटे पर समाप्त कर सके वो चीज बोलती वोलोंटे खाली ने चाहला प्रॉफिट करे के
1: जी
0: है लासे में ढेर कोई जाला गन्ना क्योंकि आमदनी को मैं ज्यादा है अच्छा ठीक बात बा एक एंटरप्राइज होगा आगो एंटरप्राइज तो आज रेवेन्यू अच्छा रही आमदनी अच्छा रही तो अच्छा बा विकास करे तो ना अपन अपन अपन घर के विकास करे तो ठीक बात है लेकिन इतना नहीं चाहे आप प्रॉफिट के पीछे भागे के कि जो अच्छा बन पाचिक आगे खोल है आप ओके तू निकारब नकारब तब जब ऐसा ऐसा मारू मारू चीज करे जो थोड़े सेहत खातिर नहीं चाह जो ग्राहक के सेहत खातिर नहीं चाह एक पर हम बोलती थोड़ा विचार भी करे के
1: चल सोच समझ कर विचार कर यही पर हमने के आज के चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ था बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शंभू जी फागी दानी से हवा सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर और आवत हफ्ता फिर से मिलाप जा तब तक सब कोई के नमस्ते प्रणाम
0: नमस्ते आज की चर्चा
2: Haldiram's vous souhaite une bonne journée. Haldiram's, the authentic taste of India.

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस में विशेषकर मराठी समुदाय में विधि विधान और श्रद्धा के साथ आज गणपति बाप्पा की मूर्ति स्थापना की जा रही है। भक्त पूरी रात भक्ति में लीन और पूजा आरती के साथ पारंपरिक झाकरी नृत्य के साथ रात जागरण कर श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन किया जाएगा। भक्त ढोल नगारों और जयकारों के बीच बाप्पा को विदाई देंगे। हिंदी मात्र शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। आज 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक पहचान को याद करने का अवसर है। आज सुप्रीम कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन के समक्ष 3 बड़े मामलों की सुनवाई। इनमें रिवॉर्ड मनी, इकोडिया पार्क एसोसिएशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में कथित पक्षपात से जुड़ा मामला शामिल। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये हमला ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोप के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के उसी रेलवे मार्ग से गुजरने के कुछ ही समय बाद पेश आया। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में शोक समाचार। मुसलमान यूआरएस गांवबुआ में 78 साल की 78 years old श्रीमती जगवंती सिबरत पैदाशी नाम उस्मान और जिन्हें लोग सोनी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे इनके बेटे गौतम सिबरत के मकान मुसलमान यूआरएस गांवबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारिशानी रोजबैल किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM और सिमिट्री रोडला सूजी ने इस कार्य में 82 साल की 82 years old श्रीमती बुधनी कोमल जिन्हें लोग लीलो नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके बेटे मनोज रामलोगन के मकान सिमिट्री रोडला सूजी लिस्कालिये से उठाकर बासेकारोंग लिस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: On NBC Play, NBC Radio.tv.
3: NBC Radio.tv. 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए छोटा 10:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। तो चलिए छोटाओ, कार्यक्रम है भक्ति धारा। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। श्रोताओ, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी भजन की धुन में, कभी शांत मन की प्रार्थना में, हर जगह प्रभु का जो है हम अनुभव करते हैं। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम भगवान गणेश जी के इस प्यारे भक्तिगान के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि इन दिनों जो है गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर हम पूजा पाठ कर रहे हैं। मॉरिशस भर में, दुनिया भर में, हर कोने में हम उनका जो है गुणगान कर रहे हैं। जो भी विघ्न है, जो भी बाधा है हमारी ज़िंदगी में, वो सब टल जाते हैं। सबसे पहले जो है हमें भगवान गणेश जी का नाम लेना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, 10:12 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए, गणेश चतुर्थी पर्व के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे ब्राह्मण महासभा की तरफ से, और ये कार्यक्रम जो है आप आचार्य रुद्रमन शर्मा जी से आप सुन पाएंगे।

तेषाङ्गपद्य क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावधि सतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री सनातन धार्मीय ब्राह्मण महासभा की ओर से आज का इस भक्ति धारा कार्यक्रम में श्री आचार्य विशाल रुद्रमन शर्मा जी का अभिवादन और सादर प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज की चर्चा श्री गणेश चतुर्थी जो सोमवार 14 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा करने से सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि प्रदाता माना जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा में माता पार्वती द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति, भगवान शिव के साथ संघर्ष, गणेश

को मिला प्रथम पूजनीय स्थान और चंद्र देव को जुड़ा हुआ प्रसंग बताया गया है। गणेश जी की उत्पत्ति, इदानीं श्वेत कल्पोक्ता गणेशो उत्पत्ति रुच्यते है। भक्तों चलो अब हम श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी की उत्पत्ति हुई सो मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। एतस्मिन् नैव काले च जया च विजया सखीं पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा भवत। एक समय पार्वती जी की सखी जया विजया तथा स्वयं पार्वती जी मिलकर के विचार करने लगी कि शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी भृंगी आदि अनेक और असंख्य गंतु हैं पर सभी शिव जी के अधीन है, शिव जी की बात को मानते हैं। इतना सोचते हुए कुछ समय के बाद एक बार पार्वती जी स्नान करने गईं तथा नंदी जी को वहां पर आदेश दिया कि आप किसी को भीतर न आने दें। इधर कुछ समय बाद द्वार पर बैठे हुए नंदी को डांट करके शंकर जी भीतर चले गए। शिव जी को असमय में आया हुआ देख करके स्नान करती हुई पार्वती जी लज्जित हो गई। उस समय पार्वती जी को सखिया के वचनों को याद करते हुए दुखी हुई और मन ही मन में कहा, यहाँ तो सत्य है, हमारा कोई नहीं है। कुछ समय बाद पार्वती जी शरीर पर उद्बटन लगाई हुई स्नान करते हुए विचार कर रही थी, मेरा भी कोई एक गण या सेवक होना चाहिए तथा अपने शरीर पर लगाई हुई उद्बटन से माँ पार्वती ने एक सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। विचारयेति च सा देवी बपुषो मल संभवाम पुरुषम निर्मतौ सा तु सर्वलक्षणम संयुक्तम सर्वावयत निर्दोषम सर्वावयत सुंदरम विशालम सर्व शोभादयम महाबलम पराक्रमम। उस छोटे पुरुष का शरीर सुंदर निर्दोष विशाल सर्वशोभामय तथा महाबली और पराक्रमी था। पार्वती उसे अपने पुत्र मानकर उनको नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से सजाया और आशीर्वाद दिया। उस समय वहाँ बालक बोला कि हे माँ शीघ्र ही कहो मेरा कौन सा कार्य है। वचन सुनते ही पार्वती जी प्रसन्नता से बोली, हे मेरे पुत्र तुम मेरे द्वारपाल बनो तथा मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर न आ पावे चाहे वो कितना ही भी हट करें। हे तात श्रीनो मद वाक्यम द्वारपालो भवाद मे मत पुत्र अस्त्वम मदीयोह। पार्वती जी ने ऐसा कह करके एक अत्यंत दृढ़ लाठी उसे दी और उस बालक के अत्यंत सुंदर रूप को देख करके हर्षित हो गई। इस प्रकार वह महावीर पुत्र माता जो है की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लेकर के द्वार पर पहरा देने लगा। उस समय जा करके अब पुत्र को द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त करके पार्वती जी सखियों को बुलाती हैं और सखियों के सहित स्नान करने लगी। उसी बीच भगवान शंकर द्वार पर आ पहुँचे तथा पार्वती पुत्र ने उसको रोका और कहा कि अभी आप भीतर नहीं जा सकते हैं, माँ स्नान कर रही हैं। शिव जी क्रोधित होकर के वहाँ से चले जाते हैं। शिव जी अपने गणों को भेजता है वहाँ पर, आज्ञा दिया जाओ उस बालक को समझाओ कि मैं कौन हूँ, चाहे आप लोगों को कोई भी साम दाम डन या भेद नीति अपनाना पड़े वो करूँ। मूर्खो असी त्वम न जानसी शिवो अहम गिरिजापति। शिवगण वहाँ तुरंत गए तथा शिवगण पूछे कि तुम कौन हो बालक। गिरिजापुत्र निडर होकर के हाथों में लाठी लिए बोली, आप लोग कौन हैं। तो उस समय शिवगणों और गिरिजापुत्र के बीच जब कोई बात न बनी तो युद्ध प्रारंभ हुआ तथा शिवगणों जब हारने लगे तो शिव जी वहाँ स्वयं आते हैं और युद्ध में आने तथा अपने त्रिशूल से बालक के सिर को धर से अलग कर दिए।
इधर जब माता पार्वती को पता चला कि उनके प्राणनाथ

गणेश जी का मस्तक काट डाला तो माता क्रोधित होकर के महाकाली का रूप धारण करके धरती का नाश करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शिव को कहा, यह सब गणेश पुत्र के सर कटने पर ही हो रहा है, सो हे शिव, आप बालक को पुनः जीवित करो, नहीं तो यह संसार प्रलय में चला जाएगा। शिव जी उस संकट को टालने के लिए अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ उत्तर की दिशा में, और जो भी प्रथम प्राणी का बच्चा माँ की पीठ करके सो रहा हो उसके सिर काट लाओ। उत्तरस्याणाम पुनः यातः प्रथमम यो मिहे दिह। तुरंत शिवगण उत्तर दिशा की ओर चले गए। मार्ग में सर्वप्रथम उन्होंने एक दंत वाला हाथी मिला और देवताओं ने उसी का सर काट करके ले आते हैं, तथा त्रिदेवों ने जल को अभिमंत्रित करके उस हाथी का सिर गणेश के धर पर जुड़ दिया और इस प्रकार गणेश जी को पुनः जीवन दान मिला। प्रेम और भक्ति के साथ बोलिए गणपति महाराज की जय। समस्त देवतागण माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं और गणेश जी को वहाँ पर आशीर्वाद तथा उनका अभिषेक करवाया गया। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हर्षित होकर के गजानन को इस प्रकार वर दिए, त्रयो वये सुखश्च यथा पूजया जगतये तथा च गणेश चैव सकले प्रति पूजयवाम। हे गजानन, जैसे त्रैलोक में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं वैसे ही तुम्हारी पूजा होगी तथा सर्वप्रथम पूजनीय होगी, तथा जो कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी। इदम सुमंगल ख्यातम च श्रीनोती सुसंस्यत सर्वमंगल संयुक्त साभवेन मंगलाय। गणेश जी का अद्भुत स्वरूप। गणेश जी का माथा बड़ा ही नाजुक होता है, जैसे अन्य पशुओं में भैंसा मंडा एवं बकरा इत्यादि का माथा बड़ा ही कठोर होता है, इसलिए ये आपस में भिड़ते ही रहते हैं। अतः हाथी के माथे में हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सुख और शांतिमय जीवन चाहिए तो किसी से झगड़ा मत करो, अपने माथे को शांत रखो। इसलिए गणेश जी को हाथी का मस्तक दिया गया, हाथी की दांत, हाथी की आँखें। तो हाथी की आँखें दूरदर्शिता का प्रतीक है। हाथी की आँखें बड़े दूर दृष्टि रखती हैं। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में संकुचित विचारधारा नहीं बल्कि दूरदर्शी विचारों को रख करके जीवन को सफल बनाओ। हाथी के कान बड़े तो होते हैं, बड़े कान का तात्पर्य है कानों का पक्का होना। हम किसी की भी निंदा चुगली आदि सुन करके कानों को दूषित न करें। हाथी की नाक, अन्य जीवों की उपेक्षा हाथी का नाक बलशाली होती है, वैसे ही बड़ी नाक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। कहावत है हर चीज़ में नाक डालना सही नहीं है, यानी कि नाक सम्मान का प्रतीक है। यदि कोई बुरा काम करता है तो उसका नाक कट जाता है, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। वैसे गणेश जी के असंख्य अवतार हुए हैं पर उनमें से मुख्य 8 अवतार माने गए हैं। वक्रतुंड, इस अवतार में गणेश जी ने मत्सरा असुर का वध किया, वाहन शेर था। एक दंत, इस अवतार में गणेश जी मदासुर का वध करते हैं, वाहन मूषक होता है। महोदर अवतार है, इस अवतार में गणेश जी मोहसुर का वध करते हैं और वाहन मूषक ही होते हैं। गजानन, इस अवतार में गणेश जी लोभासुर का वध करते हैं और वाहन मूषक ही होते हैं। लंबोदर, इस अवतार में क्रोधासुर का वध करते हैं और वाहन मूषक ही होते हैं। विकट, इस अवतार में कामी सुर का संहार करते हैं और वाहन मयूर होते हैं। विघ्नराज, इस अवतार में ममतासुर का नाश किया और वाहन शेष नाग। धूम्रवर्ण, इस अवतार में अभिमान सुर का नाश किया और वाहन मूषक ही था। अब चलो गणेश जी के चतुर्भुज है उसके बारे में कुछ सुनते हैं। गणेश जी 4 प्रकार की सृष्टि करते हैं, अंडज, पिंडज, स्वदज

उद्बीज, इसी कारण से वे चतुर्भुज हुए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ के दाता, इससे चतुर्भुज हुए। देव, नर, असुर और नाग, इन चारों की रक्षा करने से चतुर्भुज हुए। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में लीला करने से चतुर्भुज हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों में वर्णित होने से चतुर्भुज हैं। अब चलो हाथों के आयुध के बारे में सुने। पाश, संसार की माया और पापों से छुड़ाने वाला। अंकुश, पिछले जन्मों के कर्मों का नाश करने वाला। वरदहस्त, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला। मोदक, भक्तों को आनंद प्रसन्नता प्रदान करने वाला। अब चलो गणेश जी के परिवार के बारे में हम सुने। गणेश जी के पिताजी शिव जी सभी लोग जानते हैं, माता पार्वती जी, भ्राता कार्तिकेय स्वामी, पत्नियां ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि। दो पुत्र हुए क्षेम और लाभ, पुत्री संतोषी माता। वैसे तो वर्ष भर में चतुर्थी व्रतों का महत्व है, पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी की इस सिद्धि विनायक व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गणेश जी को मध्यांत में प्रकट हुआ था, सो आज के दिन 21 नामों से और पत्तों से उनकी पूजा करें, दुर्वा, मोदक तथा फल चढ़ाएं, लेकिन तुलसी न चढ़ाएं। मंत्र, सुमुखाय नमः, गणाधीशाय नमः, उमापुत्राय नमः, गजमुखाय नमः, लंबोदराय नमः, हेरम्म सुनये नमः, शूर्पकर्णाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, गुहाग्रजाय नमः, एकदंताय नमः, हेरम्बाय नमः, चतुर्हत्रे नमः, सर्वेश्वराय नमः, विकटाय नमः, हेमतुंडाय नमः, विनाकाय नमः, कपिलाय नमः, वटेश्वराय नमः, भालचंद्र राय नमः, सरागजाय नमः, सिद्धिविनकाय नमः। तो गणेश चतुर्थी से जुड़ी यहाँ एक दो बात मैंने आप लोगों को सुनाई। भक्तजन, आप लोग अवश्य गणेश चतुर्थी व्रत को अच्छी तरह से मनाएं, अपने घर में गणेश जी की पूजा करें तथा आपको आशीर्वाद, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विशेष करके भक्तजन, आज की चंद्रमा कलंकित है तो कृपया आज न देखें। धन्यवाद।

चलिए श्रोताओ, इस स्टूडियो की घर में 10:30 बज रहे हैं। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए सुनते हैं मानस का मंथन कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप डॉक्टर विनु अरुण जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनु अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनु अरुण आप सबका सादर व

वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोतों, रामचरितमानस के बाल कांड के सोरठा 261 यानी 261 सोरठा के नीचे की चौपाइयाँ आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपको याद होगा कि बहुत समय से इस बात की प्रतीक्षा हो रही थी कि शिव जी के धनुष पर कौन प्रत्यंचा चढ़ाएगा, किसके साथ सीता जी का विवाह होगा। और फिर श्री राम ने धनुष उठाया, इतनी फुर्ती से उठाया कि कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कब धनुष टूट गया ये किसी को पता भी नहीं चला। यानी पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे कम समय में श्री राम ने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया और उसकी ध्वनि से सारे लोक थरथरा उठे, कांप उठे, धरती कांप उठी। दिग्गज जिन्होंने दिशाओं को, वे हाथी जिन्होंने अपने कंधों पर दिशाओं को धारण कर रखा है, पृथ्वी को धारण करने वाले वाराह, कच्छप, शेषनाग, सभी चंचल हो उठे, सभी कांप उठे, क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं था। उसके टूटने से जो ध्वनि हुई, जो एक तरह का एक पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ने वाला जो वातावरण था, उसके कारण सब कांप उठे। और फिर जब सबको ये लगा कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है, तो सब उनकी जय जयकार करने लगे। और उसके बाद तुलसीदास जी ने एक सोरठा लिखा, संकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है, राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है, धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका तुलसीदास जी कहते हैं पहले वर्णन कर चुके हैं। और वहाँ तुलसीदास जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, कड़िहारु, जिसका एक तरह से अर्थ होता है केवट या कर्णधार। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग करके पहले ही यह संकेत दे दिया था कि अब संसार की कोई शक्ति शिव धनुष को टूटने से नहीं बचा सकती। जब भगवान की लीला का समय आ जाता है, तब संसार की सारी आशंकाएं, सारे अभिमान, सारे संशय उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे बिना कर्णधार का जहाज समुद्र में टिक नहीं सकता, टूट जाता है और उस पर सवार सभी लोग डूब जाते हैं। अब प्रभुदो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाजे नब गह गहे निशाना, देव बधु नाचहि करि गाना। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगीं, आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगीं। आइए इन पर थोड़ा विचार करें। पहली बात कि प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। उन्होंने धनुष उठाया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमज़ोर सी कोई चीज़ है। कभी कभी हमारे साथ होता है, कोई टूटी सी चीज़ है, हमने देखा नहीं, हाथ में उठाया और वो टूट गई, हमें पता भी नहीं चला। बिल्कुल उसी तरह वो धनुष टूट गया और उसके दोनों टुकड़े मानो राम जी के हाथ में थे। और तब राम जी ने उन दोनों टुकड़ों को धरती पर, पृथ्वी पर रख दिया और लोगों ने ये देखा कि दो टुकड़े हो गए हैं उस धनुष के, जिसको कोई उठा नहीं पा रहा था। और ये देखकर सब लोग परम प्रसन्न हो गए कि आखिरकार ये जो धनुर्प्रसंग चल रहा था ये समाप्त हुआ, श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और अब तो सीता जी का विवाह हर हाल में होगा। ये सोचकर सब लोग परम प्रसन्न हैं। और सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कौशिक रूप पयो निधि पावन। बाकी लोग तो हैं, लेकिन अभी तक तुलसीदास जी

ने किसका वर्णन किया था? राजा जनक का, सीता जी की माँ का, सुनैना जी का, सीता जी की स्थिति का वर्णन किया था। लेकिन विश्वामित्र जी पर क्या बीत रही है या विश्वामित्र जी क्या सोच रहे हैं, वे प्रसन्न हैं या वो चिंताकुल हैं, इसका एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ था। अब यहाँ पर तुलसीदास जी विश्वामित्र जी की मानसिक स्थिति का, उनकी प्रसन्नता का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आइए जरा हम इस पर ध्यान दें। कह रहे हैं कि कौशिक रूप पयोनिधि पावन। विश्वामित्र जी क्या हैं? पवित्र समुद्र हैं। आपको मालूम है तुलसीदास जी अपने दोहों चौपाइयों में किसी भी बात का वर्णन करने के लिए इतने सुंदर रूपकों का प्रयोग करते हैं। रूपक क्या है? अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? कवि लोग अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, ताकि भाव अच्छी प्रकार अभिव्यक्त हों, तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और ये अलंकार काव्य में होते हैं। बहुत सारे अलंकार हैं, जैसे उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। तो यहाँ पर रूपक का प्रयोग, और तुलसीदास जी अपने रूपकों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे महाकवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी की उपमाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी अपने रूपक अलंकार के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ भी देखिए कितनी सुंदर रूपक की छटा है कि विश्वामित्र जी क्या हैं? मानो एक समुद्र है। लेकिन कैसे समुद्र? पवित्र समुद्र। अभी इस पर विचार करेंगे कि क्यों केवल समुद्र नहीं कहा, क्यों कहा पवित्र। और समुद्र में क्या होता है? जल भरा होता है। तो विश्वामित्र जी चूंकि समुद्र हैं, तो विश्वामित्र जी के हृदय में भी जैसे समुद्र में जल भरा है, तो विश्वामित्र जी चूंकि समुद्र हैं तो उनमें भी जल भरा होना चाहिए। अब आप बोलेंगे भला विश्वामित्र जी में जल कहाँ से भर जाएगा? तो तुलसीदास जी ये बोलना चाह रहे हैं कि विश्वामित्र जी के हृदय में प्रेम का अथाह जल भरा हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र जी का हृदय क्या है? पवित्र समुद्र की तरह है। और उस हृदय में क्या है? प्रेम समाया हुआ है। किसके लिए? श्री राम के लिए। तो कह रहे हैं विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी अथाह जल भरा है। क्यों कहा पवित्र और क्यों कहा अथाह? पहले इन दो शब्दों पर विचार करते हैं। विश्वामित्र जी का हृदय पवित्र है। यदि विश्वामित्र जी का हृदय पवित्र नहीं होता तो वे राम जी को जनकपुरी अपने साथ लेकर क्यों आते? और ले भी आए थे तो उन्हें धनुर्यज्ञ में क्यों ले गए? और यदि वहां ले भी गए थे तो केवल देखने के लिए ले जाते। लेकिन ये विश्वामित्र जी ही हैं जिन्होंने राम जी से कहा कि उठहु तात भंजहु भवचापा, उठो और इस शिव धनुष को तोड़ दो। उन्हीं के आदेश का पालन करके श्री राम ने धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। और दूसरी बात है कि जो ऋषि मुनि होते हैं उनका हृदय तो बिल्कुल पावन पवित्र होता है। किसी के प्रति कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक भावना नहीं होती। और उस पर से विश्वामित्र जी जो श्री राम को इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उनका हृदय तो पवित्र समुद्र की ही तरह होगा। दूसरी बात कहा अथाह जल भरा। अथाह मैंने समुद्र है, तो समुद्र में थोड़ा सा जल नहीं होता है। झील होगी तो उसमें थोड़ा जल होगा, हम उसकी थाह ले सकते हैं कि अच्छा इसमें एक मीटर गहरा पानी है, दो मीटर गहरा पानी है। लेकिन समुद्र में कितना पानी है इसे कोई नाप नहीं सकता, इसीलिए हम उसे कहते हैं अथाह। यानी जिसकी थाह लेना बहुत कठिन है, जिसे जांच पाना, जिसे माप पाना कठिन है। तो जैसे समुद्र के जल को

हम माप नहीं सकते, हम नहीं जान सकते कि उसमें कितना जल है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी के हृदय में श्री राम के प्रति कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, इसे जान पाना किसी के भी वश की बात नहीं है। मानो उनका हृदय समुद्र की तरह है और उस समुद्र में श्री राम के प्रति अपार स्नेह भरा हुआ है। अब आगे देखिए और कितना सुंदर लिख रहे हैं, राम रूप राके सुनिहारी। आपको मालूम होगा कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। जब शुक्ल पक्ष होता है और जब चंद्रमा धीरे धीरे उसकी कलाएं बढ़ती हैं और फिर 15वें दिन पूर्णिमा आती है, तो समुद्र पूर्णिमा के चांद को देख करके, ऐसा कवियों की कल्पना है, कि वो बहुत प्रसन्न होता है और उसकी लहरें मानो चंद्रमा को छूने के लिए ऊपर उठती हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र की लहरें बहुत ऊपर ऊपर उठती हैं। तो कवियों की कल्पना है कि वो ऐसा क्यों होता है कि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उछलती हैं, तो उन्हें लगता है कि आकाश में चंद्रमा को, इतने सुंदर चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को देख करके समुद्र की लहरें अत्यंत प्रसन्न होती हैं, अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करती हैं उछल उछल करके। तो बोल रहे हैं यहाँ पे किसको देख करके समुद्र उछल रहा है, यानी समुद्र यानी विश्वामित्र जी का हृदय, वो उछल रहा है किसको देख करके, राम रूप राके सुनिहारी, राम जी रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर। यानी राम जी किसकी तरह है, पूर्णिमा के चांद की तरह है। ऐसे राम जी को देख करके विश्वामित्र जी का, जो हृदय रूपी पावन समुद्र है, उसमें प्रेम का अथाह जल भरा हुआ है, और वो जल अभी तक थोड़ा शांत था लेकिन अब वो जो लहरें हैं वे हिलोरे ले रही हैं। और क्यों ले रही हैं, श्री राम के चंद्रमा रूपी मुख को देख करके। और आकाश में, ये तो हुई स्थिति विश्वामित्र जी की, अब बाकी लोगों की स्थिति क्या है, तो कह रहे हैं बाजे नभ गह गहे निशाना। आकाश में अब जब देवताओं को पता चल गया कि अच्छा ये जो शोर हुआ था, ये जो इतनी ज़्यादा तीव्र गति से टंकार हुआ था, ये तो शिव जी का धनुष टूट गया और तोड़ा किसने, राम जी ने, तो सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं और आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए। और देवांगनाएं यानी देवताओं की पत्नियां नृत्य करके अपने हर्ष को, अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट कर रही हैं। ब्रह्मा दिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रसन्न सही देही असीसा, बरी सही सुमन रंग बहुमाला, गावहीं किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं। सबका वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। पहले विश्वामित्र जी की प्रसन्नता का वर्णन किया, फिर आकाश में नगाड़े बजने लगे और जो देवांगनाएं हैं वो नृत्य करने लगीं। ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं, सिद्ध मुनि, जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, वे श्री राम की मन भर के प्रशंसा कर रहे हैं कि कोई जो कार्य इस कार्य को नहीं कर सकता था वो श्री राम ने कर दिया, और आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि सब प्रसन्न हैं। सबको लग रहा है कि एक असंभव कार्य आज संपन्न हुआ है और किया है श्री राम ने, इसलिए सब हृदय से उन्हें स्नेह दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करते हैं, फूलों को छिड़क करके और नृत्य करके, गीत गा करके, किसी की आरती उतार करके। तो यही सब हो रहा है कि जो देवता लोग हैं, रंग बिरंगे फूल और मालाएं ऊपर से बरसा

रहे हैं, जो किन्नर लोग हैं वो रसीले रसीले गीत गा रहे हैं, रसीले यानी खूब मन को मुग्ध करने वाले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनी जात न जानी, सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई है, यानी सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया है। जहाँ भी जो है, किन्नर हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, देवांगनाएं हैं, जो भी जहाँ है वहीं से वो श्री राम की जय जयकार कर रहा है। और मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी, भंजउ राम शंभु धनु भारी। ये तो हुई आकाश की बात, ये तो हुई देवताओं की बात, ये तो हुई गंधर्वों की, यक्षों की, किन्नरों की बात। अब जनकपुरी में क्या हो रहा है कि जितने स्त्री पुरुष हैं सब प्रसन्न होकर एक दूसरे से कह रहे हैं, तुमने सुना ना, तुमने देखा ना क्या हुआ है, राम जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है। जो कभी नहीं किसी ने सोचा था कि ये राजकुमार जो अभी किशोरावस्था का है, अभी बालक सा दिखाई देता है, जो इतना हिष्ट पुष्ट भी नहीं दिखाई देता, वो इतना बड़ा काम कर देगा। तो सभी जो जिसके मन में आ रहा है अपने अपने उद्गारों को सब एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। बंदी मागद सूतगन बिरुद बदई मतिधीर, करहि ना निछावरी लोग सब, हय गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागद और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सबके मन में अपार हर्ष है, अपार प्रसन्नता है। और अपनी अपनी प्रसन्नता को लोग कैसे प्रकट कर रहे हैं, तो कुछ लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं और श्री राम की पूरी बिरुदावली, उनके पूरे वंश का कीर्ति गान कर रहे हैं, उनके पिताजी का, उनके दादाजी का, उनका, लक्ष्मण जी का, तो सबका गान कर रहे हैं कि ये लोग कितने महान हैं, कितने वीर हैं, इनका पूरा वंश कितना श्रेष्ठ है। और जो जिसके पास है वो निछावर कर रहा है। निछावर करने का मतलब किसी को, जो दीन लोग हैं या जो जिनको आवश्यकता है उन्हें, उनके पास जो है वो दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ नहीं, हाथी घोड़े धन मणि वस्त्र, जो जिसके पास है वो निछावर कर रहा है कि आज इतना बड़ा काम हो गया। इससे ये भी पता चलता है कि राजा जनक को कितना लोग प्रेम करते थे, उनकी पुत्री सीता जी के प्रति लोगों के मन में कितना स्नेह था। अन्यथा यदि राजा जनक अच्छे राजा नहीं होते या लोगों के मन में सीता जी के प्रति स्नेह नहीं होता, तो किसी को क्या आवश्यकता थी हाथी घोड़े रत्न धन ये सब दान करने का, निछावर करने का। लेकिन सभी राजा जनक के हितैषी हैं। इसका अर्थ है कि राजा जनक बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे और सीता जी बहुत ही गुणवती कन्या, इसीलिए ये राम जी द्वारा धनुष तोड़े जाने का अद्भुत कार्य देखकर सब अपनी अपनी प्रसन्नता को अपने अपने ढंग से प्रकट कर रहे हैं। और श्रोताओं, आइए हम एक भजन सुने और उसी भजन के माध्यम से हम अपना भी हर्ष प्रकट करें, हम भी प्रसन्न हों कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और अब जल्दी ही सीता जी उन्हें जयमाल पहनाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। सोमवार का दिन है आज, और का आज का दिन जो है समर्पित है भगवान शिव को। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है आप सभी सुनने वालों के नाम, कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे, समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। तो चलिए हम भगवान शिव पर आधारित जो है ये प्यारा सा भक्ति गान जो है आप सभी सुनने वालों के नाम कर रहे हैं। वैसे आपको पता है कि भगवान शिव शांति, शक्ति और त्याग के प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी शांत रहकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद। आप सभी को शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा से। पूजा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। समस्त हिंदू खासकर मराठी समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी पर्व मना रहे हैं। आज सुबह से मंदिरों, सभा संगठनों और भक्तों के घरों में गणेश जी की पूजा विधि, स्थापना विधि की जा रही है और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना आज कई घरों में की जा रही है। आज रात भर जागरण किया जाएगा और कल विसर्जन समारोह लगेगा। मूर्तियों को तालाब, नदियों और समुद्र

0: में विसर्जित किया जाएगा। गणेश भगवान सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है और किसी भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले उनका नाम लिया जाता है। कल मतलब आज सारी रात भगवान गणेश जी की पूजा की जाएगी। भक्तों भक्त माता पार्वती और शिव जी के पुत्र विनायक को समर्पित भजन कीर्तन करेंगे। गणेश विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, उनकी कृपा पाने के लिए आज पूरी रात जागरण किया जाएगा। हर साल की तरह आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि हमारी भावनाओं विचारों और संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ने वाली मजबूत कड़ी है। मौर्य समय भी हिंदी का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ हिंदी भाषा साहित्य संस्कृति शिक्षा और मीडिया के माध्यम से लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि अपनी भाषा का सम्मान करना और अपनी संस्कृति और अपनी पहचान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। प्रवीण कुमार जगनाथ की टीम की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री आज सोमवार सुबह लाइन बैरक्स के सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CCID नहीं जा रहे हैं। उनके वकील दूसरे मामलों में व्यस्त हैं, इसलिए वे उनके साथ CCID नहीं जा सकेंगे। CCID ने नई तारीख तय करने पर सहमति जताई है, इससे उनके वकीलों को भी आवश्यक तैयारियां करने का समय मिल जाएगा। प्रवीण कुमार जगनाथ ने शुक्रवार 11 सितंबर को घोंबुआ में MSM की एक सभा के दौरान बताया था कि उन्हें CCID में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें ये समन पार्टी के सम्मेलन से एक दिन पहले मिला था। याद रहे कि प्रवीण कुमार जगनाथ को इससे पहले मंगलवार 1 सितंबर को भी CCID में बुलाया गया था। ये जांच फोन टैपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की खरीद और उनके इस्तेमाल से जुड़ी है। ये जांच मुस्तासलीक मामले के बाद शुरू हुई थी, जो अक्टूबर 2024 में चुनावी अभियान के दौरान सामने आया था। विदेश में यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास एक ट्रेन को रूसी ड्रोन ने निशाना बनाया। याहूदीन में हुए इस हमले में ट्रेन के इंजन को निशाना बनाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शुभ समाचारों की ओर। पावे रोड पिचिराफ्रे में 65 साल की 65 years old श्रीमती धनमती रंगलोल जिन्हें लोग सुचिता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे यूपी रंगलोल के मकान पावे रोड पिचिराफ्रे से उठाकर दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मुसलमान UAS घोंबुआ में 78 साल की 78 years old श्रीमती जगवंती सिबरत पैदाशी नाम उस्मान और जिन्हें लोग सोनी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 3:30 इनके बेटे गौतम सिबरत के मकान मुसलमान UAS घोंबुआ से उठाकर मारी जानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोज़ा।

मुझे बचा या रब, करता हूँ मैं सदा दुआ या रब, आफतों से मुझे बचा या रब, है यकीन तू ज़रूर बख्शेगा मुझसे जो हो गई खता या रब, मेरी तुझसे है इल्तिजा या रब, गमों आलाम से बचा या रब, है तमन्ना यही मेरे दिल की, है तमन्ना मेरे यही दिल की, नात लिखता रहूं सदा या रब। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। माह रबीउल सानी शुरू हो चुका है, आप तमाम सुनने वालों को ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस उर्दू मजलिस में मौज़ सामईन आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक मुबल्लिग़े दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब का बयान नातु सलाम और आपके पैगाम 5251700 के ज़रिए आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सौद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने, और वो छुटकारे का वक्त नहीं था।

और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया और काफिर कहने लगे कि यह तो जादूगर है झूठा। क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद करार दे दिया? यह तो बड़ी अजीब बात है।

और उनमें जो मुअज्जिज थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलो और अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहो, बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई खास गरज है। ये बात किसी दूसरे मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं, ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा।

क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं जो गालिब है सब कुछ अता करने वाला है, या आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है, तो चाहिए कि रस्सियां तान कर आसमानों पर चढ़ जाएं।

यहां शिकस्त खाए हुए गिरोहों में से यह भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी, यही वो शिकस्त खुर्दा गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पर आ वाक़े हुआ।

और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का, जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा, इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे।

और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए।

बात यह है कि यह मेरा भाई है, इसके हां 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। यह कहता है कि यह भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर हावी हो रहा है।

उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुझ पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाके से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मगफरत मांगी और झुक कर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो हमने उनको बख्श दिया, और बेशक उनके लिए हमारे यहां कुर्ब और उम्दा मकाम है।

और हमने आसमान और जमीन को और जो कायनात इनमें है उसको बेमकसद नहीं पैदा किया, ये उनका गुमान है जो काफिर हैं। सो काफिरों के लिए दोजख का अजाब है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे?

और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, बहुत खूब बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को असील घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहां तक कि आफताब पर्दे में छुप गया। बोले कि इनको मेरे पास वापस लाओ। फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ सा डाल दिया। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया।

और दुआ की कि ऐ परवरदिगार मुझे मुआफ फरमा और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शाया न हो, बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है।

0: फिर हमने हवा को उनके जेरे फरमान कर दिया कि जहां वो पहुंचना चाहते उनके हुक्म से नर्म नर्म चलने लगती, और जिन्नों को भी उनके जेरे फरमान किया। ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो या रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है, और बेशक उनके लिए हमारे यहां कुर्ब और उम्दा ठिकाना है।
1: सदक़ल्लाहु अज़ीम। दिलों के जंग को धोता है कलाम रब करीम, दिलों के जंग को धोता है कलाम रब करीम। ये वो चिराग है जिससे है ज़िंदगी रोशन, ये वो चिराग है जिससे है ज़िंदगी रोशन। मौज़ सामीन, क़ुरान करीम वो कलाम इलाही है जो दिलों को सुकून, रूह को ताज़गी और ज़िंदगी को सही सिमत अता करता है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सुनने, समझने और उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

0: मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:29 हो चुके हैं। पीर का दिन है, सितंबर की 14 तारीख है और माह रबीउस्सानी की आज 2 तारीख है। आप अपने पैगाम हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005। ताखिर ना करते हुए अब आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। फरमान आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به

आशिकान रसूल, हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से बहुत ज़्यादा बेरगबती रखने वाले हैं। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि गैर मुस्लिमों को दिए गए माल व असबाब की तरफ निगाह मत उठाइए। बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं यह हुक्म असल में हम गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए है, यानी हम मुसलमानों को फरमाया गया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, तुम्हें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कैसी कैसी नेमतें अता हुईं, तुम्हें ईमान मिला, इस्लाम अता हुआ, क़ुरान दिया गया, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से तुम्हें वाबस्ता किया गया, तुम्हें नवाजा गया, फिर प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंशाअल्लाहुल करीम तुम्हें जन्नत की हमेशा रहने वाली नेमतें भी अता की जाएंगी। ये सब कुछ गैर मुस्लिमों को कहाँ नसीब, इसीलिए दुनियावी फ़ानी माल व असबाब की तरफ निगाह मत उठाओ, इसे हरगिज ललचाई हुई नज़रों से ना देखा करो। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, अल्लाह पाक के फजल व करम से रहमत दो जहां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक कौनैन हैं, रब्बे कायनात ने दुनिया और आखिरत के ख़जाने आपको अता फरमा दिए हैं। गर्ज़ जो कुछ अल्लाह पाक का है सब सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में दिया गया। इसके बावजूद हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की आयश व इशरत यहाँ की फ़ानी नेमतों में दिन नहीं लगाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिदों के भी सरदार हैं, आप दुनिया से कमाल बेरगबती रखते और हमेशा दुनिया की निस्बत आखिरत को ही पसंद फरमाया करते थे। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत की बात है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक रोज़ हम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला के साथ थे, आपने पीने के लिए पानी तलब फरमाया तो आपकी खिदमत में शहद मिला, पानी पेश किया गया। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो शरबत हाथ में लिया तो आप पर रिक्क़त तारी हो गई और सिसकियाँ लेकर यानी बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगे। काफ़ी देर बाद जब आपकी कैफियत नॉर्मल हुई, कुछ संभली, तो हमने अर्ज़ किया ए खलीफ़ा रसूल, किस बात ने आपको रुला दिया? इस पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़रमाया, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मैंने देखा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को धुतकार रहे हैं, यानी दूर कर रहे हैं अपने आप से। मैंने देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार रहे हैं, हालांकि कोई वहाँ नज़र नहीं आ रहा, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि किसी को किस चीज़ को हटा रहे हैं अपने करीब से, अपने पास से। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज़ को धुतकार रहे हैं? मालिक जन्नत साहिब कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मेरे सामने आई, मैंने इससे कहा इलैका अन्नी, यानी ये दुनिया मुझसे दूर हो जा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने मज़ीद फरमाया, आज जब पानी की जगह मुझे शरबत पेश किया गया तो मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेरगबती याद आ गई और मुझे खौफ हुआ कि कहीं मैं दुनियावी आसाइशों का शिकार ना हो जाऊं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए, देखा एक चमड़े का तकिया है जिसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई है, यानी पत्ते कह लीजिए। जब सरकार अली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकिए पर टेक लगाए, खुरदुरे बांस से बुनी हुई चारपाई पर लेटे हुए हैं, चारपाई पर कोई बिस्तर या कपड़ा भी नहीं था। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई से उठे तो आपके जिस्म मुबारक पर बान के निशानात पड़े हुए थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेरगबती का ये मंज़र देखकर आशिक़ सादिक हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हों का दिल भर आया, आँखों से आंसू बहने लगे। सरकार आलम सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आशिक़ ज़ार को रोते हुए देखा तो फरमाया, ए उमर क्यों रोते हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मैं जानता हूँ कि आप अल्लाह पाक के रसूल हैं, बारगाह इलाही में आपका बड़ा ऊँचा मकाम है,

0: आप कैसर व किसरा रूम व ईरान के बादशाहों से बहुत ज़्यादा इज्जत वाले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रोना इस बात पर आया है कि कैसर व किसरा तो दुनियावी नेमतों में ऐसी ज़िंदगी गुजारें और आप अल्लाह पाक के रसूल होने के बावजूद अपनी सादा ज़िंदगी बसर फरमाते हैं। आशिक़े ज़ार की तशवीश सुनकर सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि उन गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से किस कदर बेरग़बती रखते थे, यहाँ तक के फ़ानी नेमतों और ऐशो इशरत से दूर रहते हुए कैसी सादा ज़िंदगी यहाँ की फ़ानी नेमतों और ऐशो इशरत से दूर रहते हुए कैसी सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे। इस हदीस पाक में ये कैसा प्यारा और नसीहत भरा मदनी पूल है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया और हमारे लिए आखिरत है? मालूम हुआ आकाए नेमत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर आखिरत को तरजीह दिया करते थे। काश हम भी ये जहन अपनाएं, दुनिया छूटती है छूट जाए मगर किसी सूरत भी आखिरत हाथ से ना जाए। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, जो आखिरत की खेती चाहता है तो हम उसके लिए इस खेती में इजाफा कर देते हैं और जो दुनिया की खेती चाहता है तो हम इसे इसमें से कुछ देते हैं और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं। यानी जैसे अपने आमाल से आखिरत का नफ़ा मकसूद हो, जो दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की फ़िक्र करे, अल्लाह पाक ऐसे नेकियों की तौफीक अता करे, उसके लिए नेक आमाल की राहें आसान फरमा कर उसकी नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा कर उसके उखरवी नफ़े में इजाफ़ा फरमा देता है। और जिसका अमल सिर्फ़ दुनिया हासिल करने के लिए हो, वो आखिरत पर ईमान ना रखता हो, तो अल्लाह पाक उसे दुनिया से सिर्फ़ इतना ही देता है जितना उसकी किस्मत में है और आखिरत की नेमतों में उसका कुछ हिस्सा नहीं कि उसने आखिरत के लिए अमल किया ही नहीं। ए आशिकान रसूल, ये हकीकत है, दुनिया फ़ानी है, ये जल्द ही फना हो जाएगी। यहाँ जितना भी ऐश कर लें, जितना भी माल जमा कर लें, आखिर फना के घाट उतरना ही होगा, दुनिया से खाली हाथ जाना होगा। हम सब ये बात जानते हैं मगर अफसोस, दुनिया माल और दौलत यहाँ की फ़ानी नेमतों की महब्बत हमारे दिलों में घर कर गई है। आह, काश हम दुनिया के बजाय आखिरत के तलबगार बन जाएं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हकीकत है कि हम सब मुसाफिर हैं। ये दुनिया गोया बीच सहरा में एक दरख्त है, मुसाफिर आते हैं, कुछ देर यहाँ ठहरते हैं और आखिरत की तरफ चले जाते हैं। क्या कोई मुसाफिर रास्ते में किसी मकाम पर दिल लगाता है? हम भी ज़िंदगी में सफ़र करते रहते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हम सफ़र पर हों, रास्ते में कोई बहुत खूबसूरत मकाम आए तो हमने वहीं दिल लगा लिया हो कि बस अब घर नहीं जाना, अब ज़िंदगी यहीं गुजारनी है, या रास्ते में खाना वगैरह खाने के लिए किसी होटल पर रुके हों तो वहीं दिल लगा बैठे हों। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुसाफिर दौरान सफ़र बीसियों खूबसूरत मकाम देखता है, बाज़ दफ़ा होटलों वगैरह में रुकता है तो घर की बनिस्बत ज़्यादा आराम महसूस करता है, इसके बावजूद वो वहाँ दिल नहीं लगाता, वहाँ की नेमतों में गुम नहीं हो जाता, जल्दी अपने घर लौट जाता है। ये दुनिया भी ऐसी ही है, हम सब मुसाफिर हैं, कुछ अरसे के लिए हम यहाँ ठहरे हैं, जल्द ही आखिरत पर रवाना हो जाएंगे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सदक़े हमें दुनिया से बेरग़बती नसीब फरमाए। काश हम आखिरत की फ़िक्र करने वाले बन जाएँ। आमीन आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम।
1: موجود سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مبلغ انداب

दावत-ए इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आपको समात फरमाइए चंद ऐलानात। कल मंगल 15 सितंबर, जी हाँ कल मंगल 15 सितंबर सुबह 10 बजे बैतुल नूर सिद्ध मौशाल में ख़वातीन के लिए आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में एक रूहानी महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उर्स गौसे आज़म के मौके पर, जी हाँ रोज़ाना सुबह 10 बजे मजलिसे गौसे पाक का खुसूसी इनेकाद किया जा रहा है। दारुल उलूम मजलिसे रज़ा की ब्रांच आबेद गुलित पोर्ट लुइस में मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में। इसके अलावा रोज़ाना बाद नमाज़े ज़ोहर दारुल उलूम मजलिसे रज़ा प्लेंदे पपाई में उस्ताज़ा यास्मीन अज़िया साहिबा की सरपरस्ती में मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को उस शिरकत की दावत है। और आपको एक बार फिर याद दहानी कराते चलें कि महफिल नात एसोसिएशन ऑफ क्यूपिप की जानिब से मशहूर व मारूफ सना ख्वान मुस्तफ़ा इस इशरत तस्नीम, जो कि तशरीफ़ लाई हैं कराची पाकिस्तान से, उनकी सरपरस्ती में महफिल नात का अहतमाम किया जा रहा है कल मंगल 15 सितंबर। जी हाँ कल मंगल 15 सितंबर आफ्ताब इस्लाम हॉल सैंपिया में सुबह 10 बजे, कल मंगल 15 सितंबर नूरे मदीना हॉल नोवेल फॉन्स में दिन के 1:30 बजे, और जुमेरात 17 सितंबर, जी हाँ जुमेरात 17 सितंबर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हॉल फिनिक्स में दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज़े ज़ोहर। इसके अलावा सनीचर 19 सितंबर सुन्नी सेंटर हॉल कास्टल में बाद नमाज़े ज़ोहर यानी दिन के 1:30 बजे, और इतवार 20 सितंबर, जी हाँ इतवार 20 सितंबर मुस्लिम म्यूचुअल एड एसोसिएशन हॉल ग्लैन पॉक वाकवा में भी बाद नमाज़े ज़ोहर यानी दिन के 1:30 बजे मोहतरमा मशहूर मारूफ सना ख्वान मुस्तफ़ा मोहतरमा इशरत तस्नीम की सरपरस्ती में महफिल नात का अहतमाम किया जा रहा है।

0: मौजूद सामीन, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, आइए बढ़ते हैं आपके पैगाम की तरफ। जी हाँ, वालदा सफूरा हुलाश, जो कि माशाल्लाह आज 93 ईयर्स की हो रही हैं, उनके लिए उनकी बेटी दुआगू है कि अल्लाह पाक उनकी अम्मी को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियां अता फरमाएं। और वो गुजारिश कर रही हैं कि सब उनकी वालदा सफूरा हुलाश के लिए दुआ करें। जी हाँ इसके अलावा शबनम और वकील के लिए उनकी फैमिली ने ढेरों दुआएं भेजी हैं कि अल्लाह पाक दोनों को हमेशा खुश रखे, सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। इसके अलावा ये बढ़ते हैं चंद और पैगामात की तरफ। जी हाँ, काथोबोन से यास्मीन माह मुबारक रबीउस सानी की मुबारकबाद दे रही हैं और मरहूम कारी फकी अली के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूम की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। जी हाँ, हम भी दुआगो हैं मरहूम कारी फकी अली के लिए, जिन्होंने मॉरिशस में बच्चों को बहुत ज़्यादा दीन के बारे में मालूमात दी, हमेशा सिखाया। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और उन्हें उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इसके अलावा न्यूकोफ की फ़ातिमा भी माहे रबीउसानी की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और एक मनखबत की फरमाइश भी की है। ये थे चंद पैगामात। इसी के साथ समाप्त फरमाइए ये कलाम जिसकी गुजारिश हमसे की गई है।
1: दोस्तों, ये कलाम मैं अपनी वालदा की नज़र कर रहा हूँ।

मौजूद सामीन, इसी के साथ क्यूपिप से, जी हाँ क्यूपिप से बैन मोहंग अपनी वालदा ताहिरुन रुसाई, मरहुमा कज़न रुखसाना रुसाई, मरहुमा बहन शीरीन मोहंग और भाई मरहूम भाई साले मोहंग के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं। और सकीना वालिद फैत से अपने भाई अशरफ कलीम के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए। इसके अलावा दुआओं में शामिल हैं बहन अमीरा, सकीना, बीवी ज़ैनब, बेटी अलीज़ा, बहनोई नाजिया और सफ़ीक, भांजी शहाना और रुकैया। और इन्होंने अपने भाई, जी हाँ भाई अशरफ कलीम के लिए कलाम की फरमाइश भी की है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
2: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

घड़ी मिलाते चलिए, स्टूडियो के घड़ी में 2:30 बज चुके हैं। आपके पसंद कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। सभी को नमस्कार और प्रणाम। आपके ही पसंद के गीत हम चलाएंगे और नंबर तो वही है 4028085 पर। और कहते हैं ना, जब भी दिल चाहे या फिर कोई जन्मदिन हो या किसी खास के लिए अगर कोई लिरिक्स अगर आप उन तक पहुंचाना चाहते हो तो बेझिझक आप हमें आपके पसंद कार्यक्रम में फ़ोन कर सकते हैं। और आप सभी को गणपति पप्पा मोरया और गणेश चतुर्थी की हार्दिक मंगल कामनाएं आप सभी को। और आइए, आप सभी के नाम और जो भी लोग जो हैं गणपति पप्पा को अपने घर लाए हैं, तो चलिए उन सभी के नाम ये प्यारा सा गीत। और नंबर तो वही है 4028085 पर, नहीं तो 5251700 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं।

श्रोताओं कहते हैं जब भी पापा आते हैं तो अपने साथ ढेर सारा प्यार और खुशियां लेकर आते हैं और आपके सभी विघ्न हर लेते हैं। प्रेम से जो भी पापा को बुलाता है पापा अवश्य आते हैं। तो चलिए अभी के लिए नुवेल फ्रांस से कुणाल जी ने हमें याद किया है और कुणाल जी अपने सारे दोस्तों के लिए और परिवार के लिए गीत की मांग की है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से रोते हुए आते हैं सब। तो चलिए इस गीत को हम सुनते हैं किशोर कुमार जी की आवाज़ में।

जी हैं नोत्रदाम से और माला फाउदा जी और सुरेखा जी के लिए गीत की मांग की है, फिल्म है मैं चुप रहूंगी और गीत के बोल लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ों में। आइए इस गीत को हम सुनते हैं। आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम और 402-808-5 पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर 5251700 पर मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलिए इस गीत को हम सुनते हैं।

आपकी पसंद कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और 4024085 पर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। यूं ही साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। और 5251705 पर भी मैसेजेस आ रहे हैं, आप सभी से धैर्य की मांग है, मैं सभी का जो फरमाइश है मैं पूरा करूंगी। आइए अभी आफेज जी जो हैं लावीनिया सैंपिया से हमें सुन रही हैं और अपने पूरे परिवार बाबा साहेब परिवार और अपने दोस्तों के लिए गीत की मांग की है। तो चलिए इस गीत को हम सुनते हैं और फिल्म है कयामत से कयामत तक, अलका जी उदित नारायण जी की आवाज़ों में, ऐ मेरे हमसफ़र।

बहुत कुछ कहना चाहते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कह पाते। इसीलिए तो ये गीत हैं, और गीतों के माध्यम से ही अपनों से हम बहुत कुछ कह जाते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं सुनीता जी घोंगुब से, प्यारी बहन नवी मला जी के लिए गीत की मांग की है। आइए इस गीत को हम सुनते हैं।

हर क्षण हम सभी आप लोगों के दिल के पास ही रहते हैं। और साथ रहिए, दोपहर के 3 बजे आप पूरा समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार हम फिर से मिलेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए इस गीत को हम सुनते हैं सुनीता जी की ओर से।

चलिए कुछ ही क्षण में हम भरेंगे समाचार की ओर और साथ दे रही हैं ज्योति जी यूनियन पार्क से, प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और किनेता के लिए।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार रादाब। आज सिंगापुर की फौज ताकत के पुराने जनरल ओंग बुंग हुई ने प्रधानमंत्री से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पहल के संदर्भ में सिंगापुर की महारत के अलावा नौजवानों में अंकित वतन परस्ती के जज्बात, मजबूती और मानसिक तैयारी पर जोर दिया गया। पढ़ने लिखने, गिनती करने और रोज़मर्रा ज़िंदगी का गुजारा करने में आत्मनिर्भरता। 1986 से नेशनल वीमेंस काउंसिल महिलाओं का समर्थन करती आ रही है। आज से परिषद ने कैथबोन में एक नए प्रोग्राम की शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर मलागासी उद्योगपति मामी खवातुमांग से जुड़ी बातों के पोस्ट के बारे में जानकर जॉन कॉल एरिजे आज सेंट्रल सीआईडी गए ताकि इस मामले में जांच शुरू की जाए। उनके वकील अकील बिसेसो के मुताबिक प्रधानमंत्री दफ्तर के पुराने सलाहकार ने जांचकर्ताओं को अपना मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव दिए जिनमें उनकी शिकायत से जुड़े पहलू सेव्ड हैं। आज सुबह सुप्रीम अदालत के FC डिवीजन में पहले मुकदमे शुरू हुए। 3 मुख्य मामलों पर बहसें शुरू हो गई हैं। रिवॉर्ड मनी, इकोडिया पॉक एसोसिएशन और ईडीबी की सतह पर पक्षपात के मामले जज लक्ष्मी प्रसाद जायब के सामने किए जा रहे हैं। सुखकर्ता दुखहर्ता विघ्नेश्वर भगवान का गुणगान विश्व भर में है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। देश में उत्साह की अलग लहर है। आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ जश्न का माहौल है। गणेश जी की मूर्तियों की आरती की जा रही है। वे भक्तों के यहाँ पधारकर उनकी सारी मनोकामनाएं सुनने आए हैं। आज रात भर देश के सभी इलाकों, मंदिरों और सभा समाजों में आरती की जाएगी। विदेश में यूक्रेन और पोलैंड की सरहद के पास एक रूसी ड्रोन हमला किया गया है। इससे कुछ देर पहले यूके के पुराने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय सुरक्षा अफसर वहां से गुजरे थे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। लीबेटो पांडामानिकम लेन वाकुआ में 75 साल के 75 years old श्री विजय रामा जो जयसन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके पति इंदिरा रामा के घर लीबेटो पांडामानिकम लेन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट टू पी एम। रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज में 52 साल की 52 years old श्रीमती अंजानी गनू पैदाइशी नाम सिनानन जो अंजानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौत एम्बुलेंस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: गणपति बाप्पा मोरिया. जी हाँ, आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम 4028085 पर. बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और आप सभी के फरमाइशों को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी. तो चलिए अभी के लिए सुनीता जी हैं, साथ निभा रही हैं और कति पतंग फिल्म से गीत की मांग की है. और आप लोग भी अगर चाहे 4028085 पर 402-80-85 पर, नहीं तो 5251-7005 पर मैसेजेस भी भेज सकते हैं. तो चलिए कार्यक्रम 4 बजे तक का चलेगी. अभी के लिए चलिए सुनते हैं लता जी की आवाज़ में.

उमंग हो या ना हो, परंतु ये सारे जो गीत है ना, हमें खींच कर अवश्य ले आता है। आइए अभी कार्यक्रम को जारी रखते हैं। 4028088 पर आप सभी का इंतज़ार है। और अभी के लिए मधुमती फिल्म से गीत की मांग की है हमारी प्यारी शोभा जी पॉम्पलीमूस से। सुन रही है हमें, अपने खास दोस्त के लिए कुछ ना कुछ जो है संदेश भेजना चाहती है, तो चलिए गीत के जरिए ही के माध्यम से ही बहुत कुछ कहना चाहती है। तो चलिए इस गीत को हम सुनते हैं लता जी के आवाज़ में, आजारे परदेसी शोभा जी पॉम्पलीमूस के लिए।

सिलसिला है गीतों का और प्रोग्राम है आपकी पसंद। चलिए अभी जो है कहते हैं कि जो लब नहीं कह पाते ये गीत कहे जाते हैं और गीतों के माध्यम से बहुत सारी यादें भी जुड़े हुए होते हैं। और अभी के लिए श्यामा रघुनंदन जी साथ निभा रही हैं, ख़ास तौर पर अपने भाई जयप्रकाश जी के लिए भाभी है नम्रता, युधीश केशव और ख़ास तौर पर वीना जी के लिए वीना रामफुल जी, विश्वानी दुखी और नंदिनी ओकलू जी के लिए इस गीत की मांग की है काली टोपी। अब चलिए इस फिल्म से हम गीत सुनते हैं, काली टोपी लाल रुमाल, और ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में।

0: एमपीसीच्यावतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

किसी को प्यार भेजना है, किसी को कोई भी तोहफा भेजना है, तो गीत से सबसे बढ़िया और कुछ भी नहीं। कहते हैं गीत अपने आप में ही किसी को आनंद दे ही देते हैं। और अभी साथ निभा रहे हैं हरीश जी बुबासन से, और ये खास तौर पर मधुमति फिल्म से गीत की मांग की है दिल तरफ तरफ के, और खास तौर पर ये शोभा जी के लिए हैं। और उसने कहा कि चलो परदेसी आ गया, अब दिल तरफ तरफ के आ गए मुकेश जी और लता जी के आवाज़ों में। आइए इस गीत को हम सुनते हैं हरीश जी की ओर से और खास तौर पर शोभा जी के लिए। गीतों के माध्यम से ही यहाँ पर परिवार मिल जाते हैं।

ये गीत खास तौर पर रानी अनीता जी त्रियोले की हैं और बहू पूजा, बेटी अंजू, दामाद वेद और बेटा सचिन और उनके पूरे परिवार, खास तौर पर सिया के लिए।

कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति है, इसीलिए काजल जी बड़े प्यार से और बहुत दिनों से चाह रहे थे कि उनके घर एक राम आए, छोटा सा नन्हा सा, और उनके घर फाइनली आ ही गए। तो चलिए उनके पूरे परिवार और ख़ास तौर पर उनके छोटे बेटे के लिए जुबिन नौटियाल जी के आवाज़ में आइए इस गीत को हम सुनते हैं, मेरे घर राम आए।

तो चलिए इस गीत को हम सुनते हैं विश्वानी दुमन जी जो वाकवा की हैं, और ये गीत गणराज फिल्म से, और ये गीत खास तौर पर इंदिरा शारदा और सहेलियां हैं नीला प्रतिभा और शोभा और गीता गजादर जी के लिए, और सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रही हैं, आपको भी विश्वानी जी। तो चलिए आपको और आपके पूरे परिवार के नाम ये प्यारा सा गीत।

कहते हैं कि जहाँ प्यार है वहाँ अपनापन भी है और दोस्ती भी है। रेहाना जी साथ निभा रही है फिनिक्स से और अपने पूरे परिवार के नाम ये गीत की मांग की है। आदाब आपको रेहाना जी, आशा है आप ठीक हैं और ये प्यारा सा गीत आपके और आपके पूरे परिवार के लिए।

ये गीत खास तौर पर जैबून जी की ओर से शोहर कासम और चार बेटे चार बहुएं हैं और उर्फा फैजुला हिदायत नगमा जहरा भी असगर के लिए इस गीत की मांग की है और उनके पूरे परिवार के।

ये गीत खास तौर पर आशा जानू जी की ओर से कोटेज की है और सभी भक्तों को गणपति पप्पा मोरया गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं भेज रही हैं। आपको भी आशा जी और आपके पूरे परिवार पर बप्पा की कृपा बनी रहे और नेफ्यू जो हैं भांजे शुभम की जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना कर रही हैं। और नानी माँ कुमारी, भाई ऋषभ, मौसी आशा, मामा आरती, पापा राज और सभी जानू परिवार और किस्तमा परिवारों की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। शुभम को हैप्पी बर्थडे और गणपति पापा की कृपा बनी रहे आप पर।

तो चलिए ये श्रोता गण, इसी के साथ हम आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अंतिम गीत हम चलाएंगे उदय जी रविया जुपर्स की हैं। कीर्ति कुहक अपने परिवार पूरे परिवार के साथ गणपति मना रहे हैं और कुहक परिवार के लिए इस गीत की मांग की है, खास तौर पर निरूपा जी और अपने पति पवन सिंह जी के लिए हाईलैंड से हैं, और अपनी बहनों के नाम मधुली चिंतामणि और कीर्तिलाल चिंतामणि जी और उनके पूरे चिंतामणि परिवार के नाम साथ में हैं, सुनीता उदित और उदित परिवार के नाम, और साथ में हैं सुनीता मतादिन जी, उनके भी परिवार गणपति मना रहे हैं। तो चलिए उनके नाम और आप सभी पर गणपति जी की कृपा बनी रहे, इसी के साथ पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस
3: हिंदी माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी. सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की.
4: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रकाश कार्यक्रम का समय हुआ है. श्रोताओं, आज 14 सितंबर है और हम मना रहे हैं हिंदी दिवस. तो हिंदी हम सबको जोड़ती है. 24 घंटे सातों दिन एमबीसी पे आप गीत सुनते हैं. हिंदी के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं. हिंदी एक बहुत सहज माध्यम है, पूरे विश्व को जोड़ रहा है. और आज तो गीता रामायण के कारण लोग हिंदी सीख रहे हैं. अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अमेरिका से लोग हिंदी सीखने भारत जा रहे हैं. तो इसका महत्व भी कितना बढ़ रहा है. आज हमारे साथ समय निकालकर, अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान प्रोफेसर राजशेखर जी, जो कि महात्मा गांधी संस्थान में ICCR चेयर पर हैं हिंदी की. तो इनसे हम बहुत सारी जानकारियां आप तक साझा करवाते हैं, क्योंकि आज हिंदी दिवस है. बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं राजशेखर जी, आज के हमारे प्रकाश कार्यक्रम में.
5: आपका हार्दिक आभार मैम.
4: हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को और 14 सितंबर को. बहुत लंबे समय से बैठकाओं में हर जगह हिंदी का महोत्सव मनाया जाता है, कहीं पर पर्व के रूप में मनाया जाता है, ऐसा क्यों?
5: नमस्ते प्रिय श्रोतागण, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं. आज हम एक ऐसा पर्व मना रहे हैं जो हमारी पहचान, हमारी मिट्टी और हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ा है. हिंदी दिवस, जैसा कि आपने अभी अभी मुझसे पूछा कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, इसकी जड़ें हमारे भारतीय संविधान निर्माण के इतिहास में छुपी हुई है. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मत निर्णय लिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की राजभाषा होगी. इस महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को रेखांकित करने और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया. तब से हम लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं.
4: अब हम आते हैं कि जैसे हम 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं भारत में, पर मॉरिशियस में भी बैठकाओं में और संस्थानों में तिरंगा फहराया जाता है. आज की तिथि में भी आप जाएंगे स्वराज भवन लाल माटी में, 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है. उसी प्रकार हम हिंदी उत्सव भी, चाहे वो राजभाषा भारत की है, पर यहाँ पर भी बैठकाओं में हिंदी का

0: प्रचार प्रसार होता है, और भारत मॉरिशस में हिंदी की आप भूमिका कहाँ पाते हैं, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन हुए यहाँ पर और भारत में भी, उसमें इसकी भूमिका आप कहाँ पाते हैं?
1: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। हिंदी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वह हमारी पहचान भी है
0: जी।
1: और जब ब्रिटिश हम पर शासन कर रहे थे तो उन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हम किस भाषा के माध्यम से उनसे मुकाबला करें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब हम किसी सत्ता जो हम मेरा हमारा शोषण कर रही है तो उसके विरुद्ध जब हम जाते हैं तो अपनी एक भाषा, अपनी संस्कृति, इसके साथ अपने आप को जो है उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। यही कारण था कि अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वह भारत की आज़ादी की बात हो या मॉरिशस की बात हो, तो भारत में आप देखेंगे कि लोकमान्य तिलक, भारतेंदु हरिश्चंद, महात्मा गांधी ने इसे जन जन की भाषा बनाकर राष्ट्रीय एकता का अस्त्र बनाया।
0: बिल्कुल।
1: और बात जब हिंद महासागर के बीच स्थित छोटा भारत मॉरिशस की जाती है तो वहाँ हिंदी गिरमिटिया लोगों के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एकमात्र सहारा थी,
0: अपनी संस्कृति का निर्वाह करना।
1: जी
0: था।
1: जी
0: जी बिल्कुल।
1: गन्ने के खेतों में काम करने वाले इन प्रवासियों ने अपनी भाषा, रामायण और लोकगीतों को अपनी अस्मिता का कवच बनाया, जिससे मॉरिशस में हिंदी आज भी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवित है। और कहीं न कहीं हमने इसे एक आज़ादी का माध्यम बनाया और इस भाषा के माध्यम से हम आज़ाद भी हुए, अपने आप को हमने अभिव्यक्त किया।
0: बिल्कुल, जहाँ शुरुआती दिन थे वहाँ पर हस्ताक्षर आंदोलन चला यहाँ पर।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो हिंदी में था।
1: जी जी,
0: पूर्णतः। तो वो एक बहुत बड़ा माध्यम बना।
1: जी जी जी।
0: आपने गांधी जी की बात की तो महात्मा गांधी जी और यहाँ के उस समय सर शिव सागर राम गुलाम जी पर जब हम बात करते हैं तो उनका क्या विचार रहा होगा हिंदी के बारे में?
1: महात्मा गांधी जी तो गुजराती थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने महसूस किया कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें हम अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए 1918 में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने जो है हिंदी को जनमानस की भाषा बताया और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की पैरवी की थी गांधी जी ने। उनका मानना था कि विदेशी भाषा देश को मानसिक रूप से गुलाम रखती है, वहीं दूसरी ओर मॉरिशस के राष्ट्रपिता और पहले प्रधानमंत्री सर शिव सागर राम गुलाम ने भी मॉरिशस में हिंदी और भारतीय संस्कृति के संरक्षण को अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक लड़ाई का अहम हिस्सा बनाया। उनका दृढ़ विश्वास था कि भाषा के बिना संस्कृति जीवित नहीं रह सकती और संस्कृति के बिना देश की आत्मा सुरक्षित नहीं रहेगी।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत आवश्यक है।
1: जी,
0: अपने जीवन में हिंदी भाषा को, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में कहा कि व्यापार के लिए आज पूरी दुनिया में हिंदी का प्रयोग हो रहा है और बॉलीवुड हिंदी सिनेमा जो है घर घर तक पहुंचा हुआ है, चाहे वे हिंदी बोल नहीं पाते पर पूर्णतः हिंदी सिनेमा को समझते हैं, पूरी कहानी पूरी कथा जो भी है वो समझ लेते हैं। तो हिंदी को समझने वालों की संख्या बहुत ऊपर जाती है जब हम उसमें डायलेक्ट्स बोलियों को भी जोड़ें। भोजपुरी है, कितनी अन्य भाषाएं हैं, अवधी है, कैथी है, बहुत सारी भाषाएं
1: हिंदी की बोलियां हैं,
0: हिंदी की ही बोलियां हैं और वो बढ़ाती हैं, पर हिंदी को हमें क्यों अपनाना है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
1: हाँ।
0: क्योंकि जहाँ पर देखिए भारत में तो हिंदी अपनाना, एक सूत्र में बांधना बहुत सहज कि वो वहाँ की राजभाषा है, पर मॉरिशस में अंग्रेजी, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु और इतनी मंडारिन, इतनी भाषाएं हैं, पर उसमें हिंदी को अपनाना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि MBC में हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो 2400 घंटे सातों दिन हिंदी का बोलबाला है, पर इसे हम क्यों अपनाएं, क्यों ये आवश्यक है हमारे लिए?
1: देखिए, आज हिंदी जो है केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि यह दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो है भाषा बन चुकी है।
0: जी।
1: इसलिए मेरी दृष्टि में हिंदी जो है पूरे विश्व को प्रेम से जोड़ने वाली भाषा है।
0: बिल्कुल।
1: और उस प्रेम में आप देखेंगे क्या नहीं है, योग है, दर्शन है, वसुधैव कुटुंबकम है,
0: पूर्णतः पूरे विश्व ने अपनाया है,
1: जी, तो शांति का मार्ग है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमें हमारे जीवन को एक अच्छे स्तर पर ले जाती हैं, वे सारी चीज़ें हिंदी साहित्य में और हिंदी की जो ज्ञान परंपरा है उसमें मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं,

0: कि हिंदी जो है पूरे विश्व को जोड़ने वाली भाषा है, और भारत आज जहां चौथी पांचवीं और तृतीय अर्थव्यवस्था के आसपास स्थिर है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हिंदी का भी महत्व बढ़ेगा और इसमें तमाम रोजगार की संभावनाएँ भी आएंगी। तो हमारी जो भाषा है वो बहुत ही प्राचीन भाषा है और उसमें हमारे जीवन के विभिन्न रंग हैं, पर्व हैं, त्यौहार हैं, नृत्य है, संगीत है, बॉलीवुड है, मनोरंजन है, क्या नहीं है हिंदी में, इसलिए हिंदी को हम नमन करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उदाहरण देकर हमें समझाया, हमारे श्रोताओं तक बात पहुंचाई। हिंदी भाषा की वैश्विक पहचान आज के संदर्भ में आप कहाँ पाते हैं, क्या है?
0: जी, आप देखेंगे कि मैंने जैसा कहा कि दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है।
1: बिल्कुल।
0: और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारत के लोग गए, चाहे वो गिरमिटिया गए या अन्य भारतीय, जी अभी भी जा रहे हैं हाँ। या हिंदी जो है आप देखेंगे कि फिल्मों के माध्यम से वैसे भी देश गए हैं, हिंदी भाषा गई है जहाँ के हिंदी लोग नहीं बोलते लेकिन फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, उनके गाने को गुनगुनाते हैं। मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रॉड्रिक्स में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो कि हिंदी गीत गुनगुनाते हैं लेकिन उनको उनका अर्थ नहीं मालूम है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर चाहे फिजी हो, मॉरिशस तो है ही, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टेबेगो जैसे देशों में तो हिंदी सांस्कृतिक स्तर पर गहरी बसी हुई है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, चीन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जारी है और विदेशी छात्र इसमें गहरी रुचि ले रहे हैं क्योंकि इसमें परंपरा है, रीति रिवाज है, रंग है, त्यौहार है, दर्शन है, वसुदेव कुटुम्बकम वाली सोच
1: है
0: और पूरे विश्व के हित के कल्याण की बात है, इसीलिए हिंदी सर्वोपरि है।
1: अच्छा, आप महात्मा गांधी संस्थान से जुड़े हुए हैं, बहुत से कार्यक्रम वहाँ पर हुए, अभी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक सप्ताह भर आपने हिंदी को रचा बसाकर उस पर कार्यक्रम बच्चों ने किए, बहुत अच्छा लगता है। पर आज हम पूरे समाज को, मैं युवा पीढ़ी की बात नहीं करती, हम एक दूसरे से हिंदी भाषा के माध्यम से जुड़े। आपका अंतिम समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अंतिम विचार आपका आज की हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज 14 सितंबर है।
0: जी बिल्कुल, मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है, मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिन्होंने कभी हिंदी ना पढ़ी है ना वो लिखना जानते हैं,
1: लिपि नहीं आती
0: लेकिन वे बोलते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बोलते हैं तो वे कहते हैं कि मैं फिल्म देखता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ और इसके मार्फत जो है वे हिंदी जानते हैं। तो जो हमारे हिंदी भाषा के लोग नहीं हैं वे हिंदी बोलते हैं, और यदि हम खुद हिंदी भाषी हैं और उस क्षेत्र से आते हैं तो हमें तो और भी अच्छी हिंदी बोलनी चाहिए,
1: क्योंकि हमारी तो मातृभाषा है।
0: मातृभाषा
1: जी।
0: देखिए, जब तक समाज में या पूरे देश में, विश्व में हमारी कोई पहचान नहीं होती, यदि हमारी अपनी कोई भाषा ना हो, अपनी कोई संस्कृति नहीं हो
1: और हम उस पर गर्व ना करें बिल्कुल,
0: तो हमारी जो सनातन परंपरा है वो हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा है और उसी से हिंदी भाषा निकली है, तो हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, बोलचाल करनी चाहिए और उस भाषा को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए।
1: बहुत अच्छे विचार आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बांटा और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आपने आज हिंदी दिवस की शान और बढ़ा दी। यज हमारा टेक्निकल सहयोग दे रहे हैं और आप सब श्रोतागण जो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हमें सुन रहे हैं, आप सबको आभार प्रकट करते हुए हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। और साथ ही कल हम गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं, इसके लिए भी आपको गणेश वंदना के साथ साथ आपको हम गणपति की आने की शुभकामनाएं देते हैं। और आज के लिए श्रोताओं इतना ही, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या।
2: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, श्रीमती अंजु गर्बरन की प्रस्तुति में। ఎనిమిది వందల పంతొమ్మిది కిలోహెర్ట్జ్ రేడియో మారిషస్ ఛానల్ మీద సాంస్కృతి

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
2: नमस्ते दोस्तों, बचपन ऐसा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का प्यार से हम स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत ही प्यार से बहुत ही खास दिन है। आज है गणेश चतुर्थी का पावन पर्व और इस समय सभी ओर गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज आप सुन सकते हैं। तो चलिए आज के इस बचपन ऐसा कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि त्यौहार का समय है। और पहले के त्यौहार में और आज के त्यौहार में क्या अंतर आया है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो बचपन ऐसा कार्यक्रम के साथ बिल्कुल आप प्यार से जुड़ जाइए। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ करेंगे, माई फ्रेंड गणेशा से लिया हुआ ये प्यारा सा गीत।

सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और मैं हूं रत्ना। आज के इस आधे घंटे के सफ़र में मैं आपका साथ देने आई हूं। तो बिल्कुल आज त्यौहार का दिन है तो त्यौहार की बात करेंगे और बचपन के त्यौहार में और आज के समय के त्यौहार में कितना बड़ा बदलाव आया है आज इस पर हम बस आपकी नज़र दौड़ाएंगे। और बिल्कुल पहले जहाँ त्योहारों का मतलब अपनों के साथ खुशियाँ मनाना, खुशियाँ मिलकर बांटना, इस पर हम मानते थे और आज के समय में भाई डिजिटलाइज हो चुका है ज़माना और डिजिटल के साथ साथ दिखावे से भरपूर ये है ज़माना आज का। तो हम तो भाई पहले के ज़माने में पोस्ट कार्ड भेजा करते थे, जब भी कोई ऐसा त्यौहार आता था अपनों के नाम इतना प्यार से बाज़ार में जाकर खरीदते थे प्यारे प्यारे पोस्ट कार्ड, और इसी के साथ अपनों को भेजने का एक अलग ही मज़ा हुआ करता था। पर आज के ज़माने में सुबह सवेरे से आना शुरू हो जाते हैं आपके पिक्चर मैसेजेस व्हाट्सएप या फिर ऐसे सोशल मीडिया पेजेस पर, तो बिल्कुल ज़माना तो बदला है। और इसी के साथ बचपन का जो ज़माना था बचपन के समय में त्यौहार आने के कई दिनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी, घर परिवार साथ मिलकर बैठकर बातें किया करते थे कैसे मनाना है इस पर्व को, इस पर चर्चाएं होती थी और साथ ही साथ कितने प्यार से हम इस पर्व को किस प्रकार से सुंदर रीत से मना सकते हैं, इस पर कितना हम अपना खुद का इनपुट डालते थे। पर आज के ज़माने में बस कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का बोलबाला है, सुबह सवेरे से ही आपको हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली वाले मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आज औपचारिकता जो है वो बस ये मैसेजेस द्वारा पूरी हो जाती है, सही कहा ना।

बचपन ऐसा प्रोग्राम और बचपन में जिस तरह का हुआ करता था टाइम और आज का टाइम जिस तरह से बदला है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और बचपन में जब कोई त्योहार आता था तो घर की सफाई, पकवान बनाना, मिठाइयाँ बनाना और साथ सजावट के साथ साथ बच्चों का जो उत्साह होता था वो कितना दुगना होता था। बच्चे खुद रंगोली बनाते थे, बच्चे खुद साज सजावट में साथ देते थे, उनका जो समावेश था, उनका जिस तरह से वो खुद अपने आप को इन सारी चीज़ों के साथ उलझाते थे, वो एक अलग ही खुशी हमें देता था। परंतु आज के समय में सारा कुछ हमें रेडीमेड मिल जाता है। अब मिठाइयों की ही बात कर लो तो आज घरों में भाई साज सजावट की जो चीज़ें हैं वो बाज़ार से खरीद कर हम लाते हैं, मिठाइयाँ जो हैं वो भी बाज़ार से हम यूं ही रेडीमेड बनाई हुई, या तो फिर आज ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं तो घर पर मिठाइयाँ भी

तुरंत आ जाती है और इसी के साथ साथ वो जो उत्साह है, वो जो उमंग है, वो कहीं पर गायब होती हुई नजर आ रही है, कम होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि पहले के समय में सभी का उसमें समावेश होता था और आज के समय में बस एक बटन दबाया और सारी चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। यही फर्क है पहले के समय के त्योहारों में और आज के समय के त्योहारों में, है ना।

श्रोताओं, पहले के समय में बच्चों में वो सादगी हुआ करती थी, सच्ची भावनाएं हुआ करती थी, नए कपड़े और छोटी सी मिठाई के साथ भी वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। पर आज के समय में तो भाई महंगे महंगे तोहफों के साथ महंगे कपड़ों का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ने लगा है। लोग खुशियाँ महसूस करने से ज़्यादा उसे कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं। मतलब सेल्फी निकाली, फोटो पोस्ट कर दी, स्टेटस डाल दिया, बात खत्म। बाद में किसी

किसी को वो खुशी का एहसास तक नहीं होता। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बस वो फोटो डाल लेने के बाद कितने लोगों ने उस पर लाइक्स दिए, कितने लोगों ने हमारे चेहरे को, हमारे फोटो को देखा, बस इसी में हम खुशी अनुभव कर लेते हैं। पर मेरे दोस्त, खुशी ये थोड़ी है। खुशी का मतलब है कि हर त्यौहार के साथ हम प्यार, भाईचारा और बुराई पर अच्छाई की जीत पाना, इस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। आज भी वही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम तकनीक के इस दौर में भी त्योहारों को उस पुरानी आत्मा और अपनों के साथ ज़िंदा रखने की कोशिश करें। बिल्कुल, जो समय आपको मिला है परिवार के साथ, अपनों के साथ, मिठाइयों के साथ, साथ सजावट के साथ, अपने सहयोग के साथ, परिवार के साथ मिलकर मनाएं। और बिल्कुल गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भगवान श्री गणेश सभी के विघ्नों को दूर करे, मनोकामना पूर्ण करे। और बच्चों, एग्जाम्स की तैयारी में पूरी तरह से मन लगाकर आप पढ़ें, आगे बढ़ें, यही प्रार्थना भगवान श्री गणेश से करें। चलिए, इसी के साथ बचपन ऐसा कार्यक्रम को यहाँ पर देंगे एक पूर्ण विराम। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह बचपन ऐसा कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: गणेश चतुर्थी के संदर्भ में द मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, द मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, द मराठी स्पीकिंग यूनियन कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में सोमवार 14 सितंबर को शाम 4 बजे बुआशेरी ग्रां बुआ मराठी मंडली श्री गणेश मंदिर में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। सोमवार 14 सितंबर को शाम 6:30 बजे लवांचुआ जरनाथ शिवालय द्वारा श्री

0: नमस्कार, आदाब। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के का समाचार बुलेटिन पेश है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विघ्नों का नाश करने वाले देवता गणेश जी पधार चुके हैं। मुर्शिद में आज उत्साह का माहौल छाया हुआ है। प्रार्थनाएं, आरतियां, विधियां और मनोकामनाएं, आज बप्पा का गुणगान जगह जगह पर। आज हिंदी भाषा के प्रेमियों के लिए प्रतीकात्मक दिन हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी संस्थान मोका में गतिविधियां। आज सिंगापुर की फौज ताकत के पुराने जनरल ओंग बुंग हुई ने प्रधानमंत्री से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के सिलसिले में हुई बातचीत। आज ही सऊदी अरब में हज और उमरा अदा करने का मुद्दा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सऊदी हज और उमरा मंत्री के दरमियानी गुफ्तगू का मरकज रहा। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अराबिया मुर्शिद के औपचारिक दौरे पर। सोशल मीडिया पर मलागासी उद्योगपति मामी गवातुमांग से जुड़ी बातों के पोस्ट के बारे में जानकर जॉन कॉलेरीजे आज सेंट्रल सीआईडी गए ताकि इस मामले में एक जांच शुरू की जाए। और सीरिया में ईंधन की कीमत 40% से बढ़ाई गई है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नमस्कार और आदाब। गजानन भगवान का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हिंदू धर्म में गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, जिनके पधारने से ढेर सारी खुशियां आती हैं। वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं, समस्याएं, दुख दर्द ले जाने के लिए आए हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज विनायक देवता की आराधना और आरती की जा रही है। आज पारंपरिक नृत्य झांकरी की जा रही है। समस्त हिंदू परिवार, खासतौर पर मराठी समुदाय के लोग पारंपरिक लिबासों में मलबूस होकर महाराष्ट्र की परंपराएं और विधियां निभा रहे हैं। विधिमा सिबुरन दागोसिया के रावजी परिवार के यहाँ है।
1: जय श्री गणेशा, हे रक्षण करता।
2: गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, उल्लास और नई शुरुआत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इन 10 दिनों के लिए बप्पा अपने भक्तों के घर पधारते हैं और उनके सारे संकट, बाधाएं और दुख हट देते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों और मोदक की मीठी खुशबू से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। और ऐसा ही वातावरण रावजी परिवार के यहाँ छाया हुआ है, जो आज 50वें साल के लिए ये पर्व पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मना रहा है। और अभी हमारे साथ लक्ष्मण रावजी हैं, जो हमें बताएंगे कि इन 50 सालों में क्या क्या बदलाव नजर आया और वो कैसे गणेश चतुर्थी मना रहे हैं।
3: जब वे लोग अपनी मूर्ति को बना रहे थे, जब ज्यादा लोग बना रहे थे तो किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को देखने नहीं देते थे। जब तक की स्थापना नहीं होगी तो किसी को देखना नहीं है, वहाँ पर जाना मना है। जहाँ पर दादा मूर्ति बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं कि अब बच्चे लोग और लोग बनाने लगे। पहले मैं कहूँगा कि सिर्फ एक गांव में हो सकता एक व्यक्ति गणपति बना रहे थे, अब नहीं, अब घर घर में कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है, घर में यह विधि होने लगी है। पहले मैं कहूँगा कि जब भी झांकरी की नृत्य होती थी तो अपने सब लोग जो है, दादा दादी बुजुर्ग छोटा बड़े, सब मिल करके वह नृत्य करते थे, सीख रहे थे, सिखा रहे थे बच्चों को। अब जो है जवान लोग जब हो ही गए हैं तो फिर को अलग करके अपना ग्रुप बना लेते हैं।
2: तो आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और बहुत से परिवार कल विसर्जन विधि में भाग लेंगे।
0: सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मुंबई भारत में भी 11 दिनों के जश्न शुरू हो गए हैं। आज गणेश जी की मूर्तियों का की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न की गई। लाल बोगचा राजा और अन्य स्थलों पर विशाल पंडाल लगाए गए हैं। भारत में ये पर्व कई दिनों तक चलता है। आस्था को बिंचितामन।
4: भारत में आज से गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया है। भगवान गणेश के स्वागत में शहरों से लेकर गांवों तक भक्ति और उल्लास का वातावरण है। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख की पवित्र ध्वनि और गणपति बप्पा मोरिया के

0: जयघोष के बीच श्रद्धालु विघ्नहर्ता का अभिनंदन कर रहे हैं। गणेश उत्सव का सबसे भव्य दृश्य लालबाग चौराहा के दरबार में दिखाई दे रहा है। इस प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेश उत्सव का ये 93वां वर्ष है। भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा के दर्शन के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लालबाग चौराहा को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले गणपति के रूप में पूजा जाता है। भारत के अलग अलग भागों में भी गणेश उत्सव के अनेक मनमोहक रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं भव्य मंडपों में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमाएं विराजमान हैं, तो कहीं फूलों, दीपों और रंगोली से उनका श्रृंगार किया गया है। मंदिरों और सार्वजनिक मंडपों में भी आरती, भजन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भगवान गणेश ज्ञान, विवेक और शुभ आरंभ के प्रतीक है। उनका ये उत्सव केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि परिवारों और समाज को जोड़ने वाला पर्व भी है। आने वाले दिनों में भक्ति का ये क्रम जारी रहेगा और अनंत चतुर्दशी पर श्रद्धालु नम आंखों से बप्पा को विदाई देंगे, इस प्रार्थना के साथ कि वे अगले वर्ष फिर आएं।
1: मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मॉरिशस मराठी स्पीकिंग यूनियन, मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट और बुआशेरी घोंबुआ मराठी मंडली के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम मुख्य मेहमान की हैसियत से विधियों में भाग ले रहे हैं। वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और कल राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ गणेश उत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर्व के संदर्भ में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने कई जगहों में कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस पर ज्यादा जानकारी फेडरेशन के सचिव नवीन मंतादीन दे रहे हैं।
2: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन सभी हिंदू परिवारों को सूचित करना चाहता है कि हमारे रजिस्टर्ड मंदिरों में गणेश स्थापना और पूजा सोमवार 14 सितंबर को शुरू हो चुकी है और विसर्जन कल मंगलवार 15 सितंबर को किया जाएगा। तो गणेश चतुर्थी विसर्जन के लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन ने कुछ गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की टीम 7 जगहों में यानी कि 7 समुद्र तटों पर उपस्थित होंगे। बेलमा पब्लिक बीच, फिकाफ्लाक नियर शिव सागर मंदिर, ऑसलारे नियर यूथ सेंटर, मोशवाजी पब्लिक बीच, लुबुशों पब्लिक बीच, रोशनो पब्लिक बीच, बैदेदाम। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन सभी हिंदू परिवारों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो भी विघ्न हैं, जो भी संकट दुविधाएं हैं, वो सब दूर हों। गणेश भगवान समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य दें, यही हम आशा करते हैं।
1: हिंदी केवल शब्दों की भाषा नहीं बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। आज 14 सितंबर को देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व, उसकी समृद्ध विरासत और वैश्विक अस्तित्व को याद करने का अवसर है। भारत से लेकर मॉरिशस और दुनिया के कई देशों तक हिंदी ने अपनी जड़ों को संभालते हुए बदलते समय के साथ खुद को नई पहचान दी। महात्मा गांधी संस्थान मोका के तृतीय शिक्षा विभाग के छात्र भी हिंदी सप्ताह के दौरान कई गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जिनमें आशुवाक प्रतियोगिता शामिल है। पूजा सुकालू।
3: हिंदी मात्र एक भाषा ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, विचारों और संस्कृति को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी का अस्तित्व उसकी किताबों में ही नहीं बल्कि लोगों की बातचीत, गीतों, कहानियों, साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी में है। यही वजह है कि हिंदी को केवल एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, भावनाओं और सामाजिक पहचान से जुड़ी एक जीवंत परंपरा के रूप में देखा जाता है। हिंदी हमारी आवाज, हमारी विरासत और हमारी पहचान है।
4: हम विकल्पों की एक लंबी सूची दे देते हैं। मैं PGCE करूंगी, मैं AI में कोर्स करूंगी, मैं ग्राफिक डिजाइन करूंगी, या फिर सब कुछ छोड़कर अपने लिए YouTube चैनल खोलूंगी।
3: श्रुतलेख, वाग्मिता, कविता, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, यहाँ तक कि अंताक्षरी,
5: हिंदी सप्ताह हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ मनाया जाता है और प्रतियोगिता के माध्यम से मुझे मंच पर बोलना थोड़ा डर जो होता है वो भागा और हिंदी

0: भाषा में हम और भी संलग्न होते हैं। संलग्न होने के साथ साथ हमारी भाषा में जो त्रुटि या फिर गलतियां होती हैं वो भी कम होते जाते हैं।
1: हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है।
2: आशुवाक प्रतियोगिता के माध्यम से हम बच्चों के वाचन कौशल का पता लगाते हैं और हमें पता चलता है कि वे हिंदी में कहाँ तक बोल सकते हैं। इन्हीं प्रतियोगिताओं के माध्यम से पता चलता है कि भाषा का प्रयोग कहाँ तक हो रहा है। अगर प्रतियोगिता नहीं होगी तो बहुत कम पता चलेगा कि विद्यार्थी जो हैं कहाँ तक हिंदी बोल पा रहे हैं, कहाँ तक अच्छी हिंदी का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो उनका प्रतियोगिताओं में भाग लेना और मंच पर आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अपनी भाषा को उत्कृष्ट हिंदी भाषा बनाते हुए उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा करके हमें गर्व दिलाते हैं।
1: हिंदी भाषा को जीवित रखने के उद्देश्य से ही हिंदी सप्ताह के आखिरी दिन युवाज नामक विशेष पत्रिका के लोकार्पण का आयोजन होता है। इसके लिए इस पत्रिका की तैयारी में न केवल वर्तमान बल्कि पूर्व छात्र व छात्राओं की भागीदारी भी होती है।
3: युवाज एक ऐसी टोली है जो हिंदी सप्ताह के दौरान किए जा रहे गतिविधियों को कवर करके उसको शब्दबद्ध बना के एक पत्रिका युवाज पत्रिका में प्रकाशित करता है। इससे न केवल आपके व्यक्तित्व में बल्कि आपके भाषा कौशल में और आपके रचनात्मकता में बहुत विकास आता है।
1: हिंदी को शिक्षा में अपनाने से छात्र अपनी जड़ों से जुड़ सकते हैं, पारंपरिक साहित्य, लोक कथाएं और इतिहास को समझ सकते हैं जो हिंदी में लिखे गए हैं और अपने धरोहर के प्रति गहरी सराहना कर सकते हैं।
4: आज सिंगापुर की फौज ताकत के पुराने जनरल ओंग बुंग हुई ने प्रधानमंत्री से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पहल के सिलसिले में सिंगापुर की महारत के अलावा नौजवानों में अंकित वतन परस्ती के जज्बात, मजबूती और मानसिक तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। अनाबेल वुल्बेयर, गीता सुनारान।
5: 12 साल बाद सिंगापुर के पूर्व ब्रिगेडियर ओंग बुंग हुई ने एक बार फिर डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। ये रस्मी मुलाकात नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन परियोजना के तहत की गई। इसका मकसद युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी और अच्छे मूल्यों को मजबूत करना और उन्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
6: आई फील दैट आई वेरी मच वुड लाइक टू फुलफिल द रोल ऑफ बीइंग एन एनकरेजर।
5: मैं सबसे पहले प्रोत्साहन देने वाले की भूमिका निभा रहा हूं, विचारों और अमूर्त मूल्यों को आगे रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला जो बहुत ही आदरणीय है, उनसे बहुत कुछ सीखा। वे नौजवान मॉरिशनों को जागरूक करना, उनमें देशभक्ति और मानसिक शक्ति को मजबूत करना चाहती हैं। इस सप्ताह ओंग बुंग हुई चुने गए लगभग 20 लीडरों के साथ एक ट्रेनिंग सेशन में भाग लेंगे। इसके बाद ये लीडर्स इस पहल के तहत युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे।
4: आज सुबह सऊदी अरब में हज और उमरा अदा करने का मुद्दा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और सऊदी हज और उमरा मंत्री के दरमियानी गुफ्तगु का मरकज रहा। डॉक्टर तौफीक बिन फौजान राबिया मुर्शिद के औपचारिक दौरे पर हैं। उन्होंने मुर्शिदों के लिए हज की अदायगी को आसान बनाने की बात भी की। सरकार ने वीज़ा की तादाद को बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी 1500 से बढ़ाकर 2500 तक करना। मजहबी सतह पर मुर्शिद और सऊदी अरब के बीच सहयोग पर भी बात की गई। मुर्शिद की मस्जिदों के लिए सऊदी सुल्तनत $6 मिलियन की फिनांसिंग देगी बहुत जल्द। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान एक समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी हज मंत्री ने एबन में मंत्री शकील मोहम्मद से भी रस्मी मुलाकात की। इसके बाद इस्लामी सकाफती सेंटर पोर्ट लुई में एक समारोह लगाया गया। हज के अहतमाम और मुर्शिद हाजियों को दी जा रही सहूलतों पर बात हुई। डॉक्टर तौफीक अल राबिया ने ऐलान किया कि आईसीसी को उमरा की सेवाएं देने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अब्दुल्ला की असीता रघु।
7: मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा की शुरुआत करते हुए सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने एबन में मंत्री शकील मोहम्मद के साथ मुलाकात की। बैठक में हज यात्रा मुख्य मुद्दा रहा, खासतौर पर मॉरिशस के हज यात्रियों की तैयारी और उनकी बेहतर

0: देखभाल के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा हुई। इसके बाद दोनों मंत्री पोर्टली स्थित इस्लामिक कल्चर सेंटर पहुंचे। वहां सऊदी मंत्री ने संबोधन दिया और संस्थान के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। सऊदी अरब के हज मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया कहते हैं, हमारा मॉरिशस आने का एक मकसद है आपको सुनना। हम जानना चाहते हैं क्या बेहतर चल रहा है और कितना और बेहतर कर सकती हैं। मुझे खुशी हो रहा है ये ऐलान करते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने इस्लामिक कल्चर सेंटर द्वारा अन्य सेवाएं प्रदान करने पर मंजूरी दे दी है। सऊदी मंत्री की इस यात्रा का स्वागत करते हुए मंत्री शकील मोहम्मद ने मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मॉरिशस में हज के आयोजन में किए जा रहे नए बदलावों का भी जिक्र किया। मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं, कई परियोजनाओं पर चर्चा करने का मौका मिला हज के मुद्दे पर, तथा भविष्य में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी तथा डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हाजियों की सेवा कर पाएंगे। ये मॉरिशस और इलाके के हाजियों सभी के लिए होगा। मैंने ये भी ऐलान किया है कि जल्द ही हम हमारे नई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल को अंतिम रूप देने वाले हैं, जिससे हज के दस्तावेजों का देखरेख कर पाएंगे। सऊदी मंत्री की ये यात्रा मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम है, खास तौर पर हज के क्षेत्र में, जिसका मकसद मॉरिशस के यात्रियों के लिए हज यात्रा के अनुभव और उनकी बेहतर देखभाल को लगातार बेहतर बनाना है।
1: स्टेट हाउस रेजवी में सोमदत्त सुबुरन ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन के सदस्य की हैसियत से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और ईओसी की अध्यक्षा कारोलिन देवू दुमारिनी के सामने शपथ ली। सोमदत्त सुबुरन की कार्यावधि 4 सालों की रहेगी। सोशल मीडिया पर मलागासी उद्योगपति मामी गवातुमांग से जुड़ी बातों के एक पोस्ट के बारे में जानकर जॉन कॉल एलिजे आज सेंट्रल सीआईडी गए ताकि इस मामले में एक जांच शुरू की जाए। उनके वकील अकील बिसेसो के मुताबिक प्रधानमंत्री दफ्तर के पुराने सलाहकार ने जांचकर्ताओं को अपना मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक पेन ड्राइव दिया जिनमें उनकी शिकायत से जुड़े पहलू शामिल हैं। आज सुबह सुप्रीम अदालत के एफसी डिवीजन में पहले मुकदमे शुरू हो गए हैं। 3 मुख्य मामलों पर बहसें शुरू हुई। रिवॉर्ड मनी इकोडिया पर्क एसोसिएशन और ईडीबी के स्तर पर पक्षपात के मामले जज लक्ष्मी प्रसाद ओजायब के सामने किए जा रहे हैं। गए वीकेंड के दौरान सीरिया भर में प्रदर्शन किए गए ईंधन की कीमतों में लाई गई बढ़ोतरी की वजह से लोगों में गुस्सा पैदा हो गया है। डीजल का दाम 40% से बढ़ा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मैक्रोन ने कहा कि वे अपने पड़ोसी देश पर निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा ईयू का सदस्य देश बनना चाहता है।

और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत मॉरिशस में कल सुबह 4 बजे से ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी होगी और पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को आज रात से प्रभावित करेंगे। एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से ठंड भी महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। कल हवाई ढलानों पर हल्की वर्षा होगी और आमतौर पर घने बादल होंगे और जहां तक तापमान की बात है तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। हवा दक्षिण की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16 अधिकतम 17 से 20, साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 21 अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। याद रहे ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की जाएगी और इसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के उतरने का खतरा है। इसी वजह से सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। कल सुबह 6:06 पर सूरज उगेगा।

0: ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नुरताली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शुभ समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: निशान एवेन्यू सर्कमस्टेंस सेंट पियर में 67 साल के 67 इयर्स ओल्ड श्री मोहित गुदौ जो फीस चिपेया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल ढाई बजे इनकी पत्नी निर्मला गुदौ के घर निशान एवेन्यू सर्कमस्टेंस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सर्कमस्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रेब्यूशे में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रागामा वेंकटासामी पैदाइशी नाम वेंकामा जोगियाना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल डेढ़ बजे के घर रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रेब्यूशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। चुकोलिन लारू कुवन क्यूपिक में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बागमत उकोई जो चिफिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके बेटे विकास मंगल के घर टुकोलेन लारू कुवन क्यूपिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। रॉयल रोड विचियम मिल ट्रियोले में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड मोहतरमा बीबी हुसैन भी सदाली जो जवानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सवा छः बजे इनकी बेटी सबरुन जाफर के घर रॉयल रोड विचियम मिल ट्रियोले से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंदे पापा का कब्रस्तान ले जाया जा रहा है। रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अंजानी गनू पैदाइशी नाम सिनानन जो अंजानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके घर रामफल लेन गेंदा रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। लिंगबेयाटू पंदामनिकम लेन वाकुआ में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री विजय रामा जो जेसन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दो बजे इनकी पत्नी इंदिरा रामा के घर लिबेटू पंदमनिकम लेन बाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। रॉयल रोड बुआरूज पंपलमूस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री बिदी नन हरदयाल जी तोरा जो सुखदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सपहर तीन बजे के घर रॉयल रोड बुआरूज पंपलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंपलमूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
4: गणेश चतुर्थी के संदर्भ में द मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, द मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, द मराठी स्पीकिंग यूनियन कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में सोमवार 14 सितंबर को शाम 4 बजे बुआशेरी ग्रांबुआ मराठी मंडली श्री गणेश मंदिर में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। सोमवार 14 सितंबर को शाम 6:30 बजे लवांचुआ जरनाथ शिवालय द्वारा श्री गणेश जयंती का आयोजन किया जा रहा है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन

फेडरेशन द्वारा 14 सितंबर को इन स्थानों में गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया है। श्री मराठी धार्मिक सभा वाक्वा में विसर्जन 20 सितंबर को लावानी वाक्वा में किया जाएगा। मराठी उकारी सभा क्यूपिप में विसर्जन 15 सितंबर को लावानी वाक्वा में किया जाएगा। मराठी साहित्य परिषद वाक्वा में विसर्जन 15 सितंबर को लावानी लाजिग में किया जाएगा। दागोचिया मराठी शिव मंदिर दागोचिया में विसर्जन 20 सितंबर को डिक्सन लेक में किया जाएगा। मेलरोज श्री गजानन सरस्वती मंदिर में विसर्जन 15 सितंबर को ग्रैंड पॉन्ट रिवर मोंटाई ब्लांश में किया जाएगा। क्लूनी मराठी श्री कृष्ण मंदिर क्लूनी में विसर्जन 15 सितंबर को क्लूनी रिवर में किया जाएगा। मराठी कैलाशनाथ मंदिर बेजुकाप में विसर्जन 15 सितंबर को बेजुकाप बीच में किया जाएगा। विनायक मंदिर बोबासा में विसर्जन 15 सितंबर को आल्बियों बीच में किया जाएगा। शामुनी मराठी विश्वनाथ मंदिर विसर्जन 15 सितंबर को रिविया डे गाले बीच में किया जाएगा। सेंचुबिया दास अवतार मंदिर सेंचुबिया में विसर्जन 15 सितंबर को लुवाल में किया जाएगा। लागोलेट मराठी आलंदी मंदिर लागोलेट में विसर्जन 15 सितंबर को लागोलेट बीच में किया जाएगा। जुब्रय मराठी श्री गणेश मंदिर में विसर्जन 15 सितंबर को पोंसाली मिडलैंड्स में किया जाएगा। गणेश गौरी मंदिर कॉम्बिनुआ में विसर्जन 20 सितंबर को ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट न्यू ब्रिज में किया जाएगा। मिडलैंड्स मराठी सभा मिडलैंड्स में विसर्जन 15 सितंबर को ओ ब्लू रिवर बुलाकी रोड मिडलैंड्स में किया जाएगा। मराठी सूर्योदय सभा प्लेनमायों में विसर्जन 15 सितंबर को बासे पावे प्लेनमायों में किया जाएगा। पाल्मा मराठी सभा पाल्मा में विसर्जन 15 सितंबर को पियाफो रिवर में किया जाएगा। ब्लैक रिवर मराठी पावन गणेश मंदिर में विसर्जन 20 सितंबर को ब्लैक रिवर बीच में किया जाएगा। प्रोविडेंस मराठी मित्र मंडल प्रोविडेंस में विसर्जन 15 सितंबर को बनवेन रिवर में किया जाएगा। ग्लेन पार्क विघ्नेश्वर मंदिर ग्लेन पार्क में विसर्जन 15 सितंबर को विघ्नेश्वर तीर्थ स्थान बयानिका में किया जाएगा। काशी मराठी मंडली काशी में विसर्जन 15 सितंबर को बैंडेडाम बीच काशी में किया जाएगा। काशी मराठी मंडली काशी में विसर्जन 15 सितंबर को बैंडेडाम बीच काशी में किया जाएगा। लाफ्लोरा मराठी मंडली लाफ्लोरा में विसर्जन 15 सितंबर को लाफ्लोरा रिवर में किया जाएगा। मोंटाई ब्लांश मराठी मंडली मोंटाई ब्लांश में विसर्जन 15 सितंबर को ग्रैंड पॉन्ट रिवर मोंटाई ब्लांश में किया जाएगा। बेल्टेया जागृति मंडली बेल्टेया में विसर्जन 15 सितंबर को रिविया तेरूज बेल्टेया में किया जाएगा। लेस्कालिये मराठी सभा लेस्कालिये में विसर्जन 15 सितंबर को पोंट जामिन में किया जाएगा। मोंचिडा श्री गणेश मंदिर मोंचिडा में विसर्जन 15 सितंबर को बेल एटोंग रिवर में किया जाएगा। नवीन मराठी मंडली बेलेया में विसर्जन 15 सितंबर को पोंट लाउजिए में किया जाएगा। बॉम्बू मराठी मित्र मंडल बॉम्बू में विसर्जन 20 सितंबर को लाजिग मोसलमान ओबोन बॉम्बू में किया जाएगा। सेबास्टोपोल पेलरिन मराठी मंडली सेबास्टोपोल में विसर्जन 20 सितंबर को ला रिविया पेलरिन सेबास्टोपोल में किया जाएगा। ला मारी मराठी गणेश मंदिर ला मारी में विसर्जन 20 सितंबर को ट्रॉय पॉन्ट रिवर मोसलमान पुसों में किया जाएगा। नेशनल लेवल सेलिब्रेशन बोआ शेरी ग्रैंड बोआ मराठी मंडली नेशनल लेवल इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन द मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट और मराठी स्पीकिंग यूनियन में विसर्जन 15 तारीख को गुली रिवर रिविया डे जांगी बोआशेरी निया अवालोन में किया जाएगा। ओम परसमाई मराठी मंडली तेरूज में विसर्जन 15 सितंबर को बैंडेडाम काशी में किया जाएगा। सेंट जुलियन डोटमो मराठी एसोसिएशन सेंट जुलियन में विसर्जन 15 सितंबर को गणेश्वरी तालाव एक्स बासिन लुलू में किया जाएगा। लेस्पेरांस मराठी गनोबा मंदिर लेस्पेरांस में विसर्जन 15 सितंबर को रिविया गनू में किया जाएगा। मराठी मंडल कैथरबोन कैथरबोन में विसर्जन 15
15 सितंबर को पियाफो रिवर में किया जाएगा। क्वीन विक्टोरिया मराठी एसोसिएशन क्वीन विक्टोरिया में विसर्जन 15 सितंबर को रिवर नियर बाय नियर विलेज हॉल में किया जाएगा। काचे मिलितिया मराठी एसोसिएशन काचे मिलितिया में विसर्जन 15 सितंबर को बन वेन रिवर में किया जाएगा। फ्लाक मराठी विघ्नेश्वर मंडली फ्लाक में विसर्जन 15 सितंबर को

एर्मिटेज रिवर नियर दुर्गा मंदिर में किया जाएगा। आल्मा मराठी मंडली आल्मा में विसर्जन 15 सितंबर को डिक्सन लेक दागुचिया में किया जाएगा। यूनियन पार्क मराठी मंडली यूनियन पार्क में विसर्जन 15 सितंबर को बेयमानिक रिवर क्लीनी रोड में किया जाएगा। सिद्धि विनायक मित्र मंडल टायक में विसर्जन 15 सितंबर को रिविया डेजोंगी ब्रिज में किया जाएगा। मराठी उपकारी सभा बेलगोज में विसर्जन 20 सितंबर को रिविया सैंडवी में किया जाएगा। मराठी उपकारी सभा मौडालबिया में विसर्जन 15 सितंबर को अस्ट्रोया रिवर दुब्रा में किया जाएगा। मराठी उपकारी सभा शाखा नंबर 5 मो फैचियो न्यू ग्रोव में विसर्जन 15 सितंबर को अस्ट्रोया रिवर दुब्रा में किया जाएगा।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। सादर प्रणाम, स्नेह भरा स्वागत है आप सभी का भज प्रभु का नाम कार्यक्रम में। मैं हूँ दीविना और आज फिर हम जुड़े हैं कुछ सुंदर आध्यात्मिक विचारों तक, कुछ मधुर भजनों तथा प्रभु के स्मरण के साथ। दिन भर की भागदौर के बाद यह रात्रि हमें एक छोटा सा अवसर देती है अपने मन को शांत करने का, अपने विचारों को सुंदर बनाने का तथा कुछ पल अपने प्रभु के चरणों में बिताने का। तो आइए कुछ देर के लिए संसार की चिंताओं को किनारे रखते हैं, आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हैं तथा मन में कहते हैं, हे प्रभु, जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि शायद उसमें भी आपकी कोई सुंदर योजना छिपी है। पहले भजन की ओर बढ़ते हैं।

श्रोताओ, गणपति बाबा बुद्धि के दाता हैं, सुख तथा समृद्धि के दाता। आप हमारे जीवन के हर विघ्न को दूर करने वाले हैं। आज के इस पावन अवसर पर हमारी यही प्रार्थना है, हे गणेश जी, हमारे घर आंगन में सुख शांति तथा प्रेम बनाए रखना, हमारे परिवार को स्वस्थ तथा खुश रखना, हमारे मन से चिंता तथा भय दूर करना तथा हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना।

जहाँ श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम और आज विशेष गणेश पूजा। वैसे गणेश जी को दुर्वा अर्पित की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है, लड्डू दिया जाता है तथा प्रेम से उनकी आराधना की जाती है। परंतु याद रखिए, भगवान को सबसे प्रिय है सच्चा मन तथा सच्ची श्रद्धा। बड़ा प्रसाद हो या छोटा सा फूल, यदि उसमें प्रेम है तो वही प्रभु के लिए सबसे अनमोल है। तो इसी श्रद्धा के साथ सुनते हैं एक सुंदर भक्तिमय प्रस्तुति।

श्रोतागण, गणेश चतुर्थी हमें केवल उत्सव मनाना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है बुद्धि से निर्णय लेना, विनम्रता से जीवन जीना तथा हर शुरुआत प्रभु के स्मरण से करना। गणेश जी का बड़ा सिर हमें विशाल सोच की प्रेरणा देता है, उनके बड़े कान हमें अधिक सुनने की सीख देते हैं तथा उनका छोटा मुंह हमें कम बोलने का संदेश देता है। कितनी सुंदर सीख है हमारे विघ्नहर्ता।

श्रोताओं, देखते ही देखते हमारी यह भक्तिमय रात्रि अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रोताओं के लिए हमारे मन से यही शुभकामना है, गणपति पापा आपके जीवन से हर विघ्न दूर करें, हर घर में सुख तथा समृद्धि भरें, हर मन में प्रेम जगाएं तथा हर नई शुरुआत को शुभ बनाएं। अपने घर में दीप जलाइए, मन में श्रद्धा जगाइए तथा प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इसी प्रार्थना तथा विश्वास के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। पुनः मिलते हैं एक और भक्तिमय मिलन में। तब तक प्रभु का नाम लेते रहिए, मन को मुस्कुराते रहिए तथा जीवन की हर शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से कीजिएगा। शुभरात्रि, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना।

मौज़े सामीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है आसमाने दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, एक कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूँ। बहवाला सही बुखारी शरीफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। सोने से पहले वुज़ू, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाने लगो तो नमाज के वुज़ू की तरह वुज़ू करो, फिर अपनी दाएं करवट पर लेटो। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ।

सामीन, रात सिर्फ आराम और नींद का नाम नहीं बल्कि ये अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का एक खूबसूरत वक्त भी है। दिन की मसरूफियात जब ख़त्म हो जाएं, दुनिया की आवाज़ें मधम पड़ जाएं, तो इंसान चंद लम्हे अपने परवरदिगार के हुजूर गुजारे, दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और आने वाले दिन के लिए खैर बरकत तलब करे। अल्लाह ताला हमें रातों को अपने जिक्र से आबाद करने और सुकून के साथ उसकी याद में सोने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
4: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

रात के 9:11 होलबा और आप लोग बहुत प्यार के साथ साथ देवत हो जा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज है लेंदी के दिन, लेंदी 14 सितंबर 2026। आज है गणपति जी के जन्मदिन और आज की रात सब कोई गणेश जी के पूजा वंदना आराधना में लगल हो जा, और कुछ नहीं तो कम से कम उनकर ध्यान में बैठल हो जा। और आप सब कोई के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत शुभकामना। जितना कोई तैयारी कर ले हो जा और तैयारी कर ले हो जा काल पूजा में जाए के विसर्जन देखे के जाए के, तो आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आज के दिन आपके अच्छा से गुजरल हो, आपके सप्ताहांत भी अच्छा से गुजरल बा, ये बात के हमके पूरा विश्वास बा। और ये विश्वास के साथ आज के इस शाम, आज के इस रात के शुरुआत करी जा। अयोध्या के राज आप सब कोई के नसीब होई, अभिमन्यु जी के आवाज़ में अयोध्या के राज सिया मांगे आप सब कोई के नाम।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ. भोजपुरी तड़का किरण संगे.
4: रात के 9:21 होल बा और आप लोग सुनत हव जा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब कोई के जन मनोकामना बा आज के रात और काल गणेश जी के विसर्जन के दिन सब पूरा हो ऐसा हमने के शुभकामना बा. और गणेश वंदना भी स्वानी दीपवा की आवाज़ में आप सब गणेश गणपति भगत लोग खातिर ई गीत के मांग खास तौर पर शीला जी करत हवन. और ई गीत आप खास तौर पर अपन नाती रुद्राक्ष के नाम करत हव जे काल गृह प्रवेश करता अपन और अपन नवा घर में जाता. और साथ में आपके जितना भी बेटा बेटी नाती पोता सोनम

और यौवन और आपके पति सुरेन और आपके पूरा परिवार के नाम ई गणेश वंदना। जितना कोई आप में से सुने चाहत हो जा एगो गणेश जी के सुमिरन, तो चला ई गीत सुनी जा विश्वानी दीपक के आवाज़ में।

गणेश वंदना से जे लोग के सबसे जस्ती खुशी मिलल होई उ लोग के नाम है वंदना। ये गीत आप वंदना लोग खातिर नहीं रहल बल्कि एगो गणेश पूजा वाला गीत रहल। आज के जोन चतुर्थी के चांद निकलेला आँख के सामने सामने वो लौकेला बोलल जला ई चांद के नहीं चाहिए दिखेगी। और देखा आज के रात आसमान कितना साफ बा,

चांद अच्छा से नजर आवा था, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि आज आप लोग इस चांद के नहीं देखले हुई बजा और जे देख भी ले हुई बजा था आप लोग तो जन्मे करेला जा कि कितने टोटका बा वो सब टोटका के चाहेला अब अपन जीवन में आने के ताकि सक बजा ये चांद के शराब से बचे। ये सब कहानी ये सब खिस्सा हमने के धर्म में हमने के संस्कृति में बाटे जोन बहुत दिलचस्प है। जीवन में ऐसा ऐसा बात नहीं रही तो बहुत नीरस जीवन चली। तो आशा करत है जा कि आज के जोन सुंदर चांद बा वो अब नहीं दिखला। काहे कि बोलल चला गणेश भगवान के वो चूहा पर सफ़र करते हुए देख के हंसले रहा गणेश पर चांद। तो चांद उनकरा जब हंसलन तो गणेश श्राप देलन चांद के कि तोर चेहरा जिन सब कोई खुशी रहला देखे कि चांद सा चेहरा आज के दिन कोई तोर चेहरा नहीं देखी और जे देखी तो ओकर पर कोनो न कोनो कलंक लग जाई। अब ई बात के जे मानी त मानी जे नहीं मानी त नहीं मानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ न मानो तो बहता पानी। और बस ई सब तो होल खिस्सा कहानी के बात टोटका के बात। लेकिन आज के रात जोन बा बहुत शुभ रात है बोलल जला गणेश विघ्नहर्ता हवन जोन कुछ भी उनकर से मंगब तो वो पूरा होवेला। वो खाली मन में एगो संकल्प कर गणेश बाबा वो कोनो भी उपाय करके कोनो भी विधि विधान करके वो चीज आपके मिला दे। और यही खातिर बोलल जला कि जोन कुछ भी मंगब तो सोच समझ के मंगिया कहीं आपके जोन मांग बा आपके जोन इच्छा बा आपके जोन सपना बा उपा के आप परेशान नहीं हो जाएबा। तो चाहे मांगे के भी जाने के चाहे सपना भी साकार होवत देखे के जाने के। और हम आशा करते हैं कि आप सब कोई के अच्छा अच्छा संकल्प बा अच्छा अच्छा सोच बा और वो सब सोच के गणेश बाबा पूरा करियन। और काल के विसर्जन के तैयारी भी होवत हुई पूजा में भजर के बुनेरे जाए के होई। तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। अभी हमने के ढेर कोई सुनत हवा जा खोंगोप से सुनीता जी हवन अपन बहिन विमाला के नाम अगला गीत करत हवन जी कोंगोमा से हवन बेलिया से आत्माराम जी आप हमने के सुनत हवा। आपके चारों बहिन ललिता सुदेवी प्रभावती और छोटी के नाम अगला गीत। उधर ललिता जी भी सुनत हवन आपके ओर से आत्माराम भैया आपके सब बहिन लोग सुदेवी छोटी माला राम जावन आपके मौसी आपके बहिन भाई लोग सब कोई के नाम ई अगला गीत राधा के सोभेला।

रात के 9:36 होलबा अगला जो गीत चली उ आजकल के जो पकवान पकता ये पूजा पाठ के वातावरण में गरम गरम दाल कच्चू कुच्चा पीमा ये गीत संतोष महादेव के आवाज़ में आप सब कोई के नाम जे लोग व्रत के ये जो मौसम चलेला एकर पूरा आनंद उठावे ला जा कहे कि ये व्रत के समय वो सब बढ़िया बढ़िया पकवान पकेला जेके ऐसन साधारण दिन में खाए में उतना वो नहीं रहेला मतलब कि जब व्रत चलेला तभी वो बनेला और साथ साथ हम ये भी बताते जाते कि गणेश भगवान जे है उनकर पेट काफ़ी बड़ा बा मोदक उनकर हाथ में हमेशा रहेला लड्डू के थाल भी उनकर सामने रहेला लेकिन गणेश भगवान के जब

उजागर बात पेट से जस्ती ध्यान दिमाग पर दिया, कहे कि भगवान गणेश ज्ञान के देवता मानल जालन। भगवान गणेश बुद्धि के तेज करे होला होवन। त आज के रात और काल के दिन विशेष प्रार्थना करी जा कि हमने सब कोई के सद्बुद्धि मिली, हमने सब कोई के मेधा बुद्धि मिली, तेज बुद्धि मिली, जेकर से जो न अच्छा और बुरा बा ओकर बीच फर्क सकब जा करे और ई जो न दुनिया बा ओके बेहतर बनावब जा और अपन जीवन के संगे संगे सबके जीवन के सुलभ बनावब जा। संतोष महादेव की आवाज़ में अगला गीत आप सब कोई के नाम।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

रात के 10 बजे होला बा और 8 मिनट बाकी बा और आपके जोन सुंदर सुंदर गणेश जी के मूर्ति बा वो सोशल मीडिया में एगो बहुत ही अलग माहौल पैदा कर दिले बा। सुंदर सुंदर मूर्ति और सजावट साथ में आप लोग में से कितने जना अपन जोन गणेश जी के भोग तैयार कर रहा वजह ओकर भी नुस्खा देवा था वजह कैसे भोग तैयार करे के कैसे मोदक बनावे के और ई सब देख के भले ही कोई नहीं जाए विसर्जन देखे भले ही कोई नहीं जाए मंदिर लेकिन पूछा था कि ई सब जो नजारा

बा बा ये सब जो भक्तिमय वातावरण बा हमने जिया थी जा यही है आजकल के टेक्नोलॉजी के कमाल। बोलल जला कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल चाहे जाने के करे के जे अच्छा से करबा तो आपके कल्याण होई, अच्छा से नहीं करबा तो आप ही के नुकसान होई। तो आप सबको के बहुत बहुत बधाई जे इतना सुंदर माहौल सोशल मीडिया में पैदा कर दे रहे हो वजह। और जो मौसम बाहर में बा आज उतना पानी तो नहीं बा लेकिन ठंडा हवा चलता और ये भी बोलल जाता कि ठंडा के जो लहर बा वो और तेज होई होला बा। तो अपन ख्याल रखे जा काल जब निकल बजा जुलूस में तब भी अपन ख्याल रखे जा। अभी सब कोई अपन कपड़ा के तैयारी में लगल हुई बजा काल का पहन बजा। स्त्री लोग काष्टी खरीद के सुंदर से सजा के रखले हुई बजा। नाक में सुंदर नथ पहने के भी प्रथा है ये महाराष्ट्रन त्यौहार में। त्यौहार तो नाम के है महाराष्ट्र से शुरू हो बा लेकिन देखा मॉरिशस भर में कितना धूम से मनावल जाला भारत में भी। और लेकिन हमने रखी ला जा ये जो महाराष्ट्रन लुक बा जो नज़ारा बा ओके हमें बरकरार रखी ला जा। औरत लोग बहुत सुंदर रूप से काष्टी पहन के नाक में नथ लगा के हाथ और पैर में महावर लगा के बाल में गजरा पहन के गणपति बप्पा के नाम जपते हुए निकले ला जा। और पुरुष लोग सुंदर कुर्ता जहाँ पर गणेश जी के सुंदर चित्र बा ये सब पहन के जब निकले ला जा तो सच में बुझाला देश भर में एगो उत्सव बा। काहे नहीं गणेश के ये जो त्यौहार है एगो उत्सव ही तो है। आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। अपन तैयारी जारी रखा जा और हमनी आपके साथ देवत है जा। अगला गीत पहले मैं सुमेरिला आप सब कोई के नाम।

रात के 10:04 हो गल बा और अभी से 11 तक हमने के साथ रही, जबकि RM3 पर हमने के जो अभी साथ बा वो 10:30 तक चली। और फिर एक बाद स्पेशल गणेश चतुर्थी प्रोग्राम चली, लेकिन रेडियो मॉरिशस पर 11 तक आपके भोजपुरी तर का प्रोग्राम चले होला बा। आप लोग साथ देवत हवा जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर गणेश चतुर्थी के आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। हमने के देश में एगो बहुत बड़ा ई पर्व मनाए के प्रथा स्थापित हो गल बा। काल देश भर में जुलूस निकली, देश भर में आप सब कोई व्यस्त रह बचा, वो चाहे घाम रही चाहे पानी रही, ये गणेश जुलूस के कोई नहीं सकी थामे। और गणेश पूजा काल ही नहीं, कितने जगह पर अभी वीकेंड तक चली, सप्ताहांत तक चली। आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना। अगला जोन गीत बा वो ई परब के जोन व्रत चलता ओकर से बहुत मेल खाई, बड़की मसाला पीसेला, कृष हृदय के आवाज़ में आप सब कोई के नाम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक बार आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, आज फिर लेकर आई है वो नगमे जो सिर्फ कानों को नहीं दिल को भी सुकून देते हैं। तो चलिए मिलकर गुजारते हैं उन हसीन यादों के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

हर पुराना गीत अपने साथ एक कहानी लेकर आता है दोस्तों। शायद आपकी पहली मोहब्बत बचपन की यादें या किसी अपने की मुस्कुराहट के साथ, इसी एहसास के साथ शुरू करते हैं सुनहरे पल। हाँ जी, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहाँ पे गिने चुने नगमे हम लेकर आते हैं खासकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हर एक गाना आपके दिल को छू जाए।

0: जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकाल लेना चाहिए और सुनिए वो गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। बिल्कुल सुनहरे पल में लेकर आते हैं ऐसे कुछ प्यारे प्यारे गाने जो सीधे आपकी यादों को छू जाते हैं। तो यादों को ताज़ा करने के लिए बस तैयार हो जाइए मेरी जान, अगला गाना आपके नाम।
1: खत्म हो गया,

0: सुना था हसीनों के गुस्से से लोगों को होश आवाज उड़ जाती, लेकिन आपके गुस्से से तो गाड़ी का पेट्रोल उड़ गया। देखिए उधर मत जाइए, रास्ता बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर बहुत मिलते हैं।
1: हुआ करे, तुमसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं होगा।
2: आ गए आपके कदमों पे उतर कर बादल।
1: जाओ जाओ, मुझे न

0: वालेकुम सलाम।
1: पुराने गाने कभी पुराने नहीं होते हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि उनमें बसी होती हैं यादें और जज्बात। आइए उन लम्हों को फिर से जी लेते हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। तो दोस्तों, म्यूजिक सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, महसूस भी किए जाते हैं, हमेशा हम आपको कहते हैं। और आज के ये गीत आपके दिल की हर धड़कन को एक नई मुस्कान देंगे।
0: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हम हमेशा दिल के करीब रखते हैं, और कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो हर उम्र के लोगों को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। आज हम वही अनमोल गीत लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। यादों की डायरी खोलिए और पुराने बॉलीवुड के उन गीतों के साथ वक्त को थोड़ा सा पीछे ले चलिए। स्वागत तो बड़े प्यार से हमने कर लिया है जी, और ये शो बहुत ही प्यार से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि बस आप रिलैक्स होके हमारे साथ एंजॉय कीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू. बस अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से शो में जिसका नाम है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस.

0: सोना
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन, थोड़ी देर है
0: कब आएगा।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज
1: है। आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो